0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी। 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को

0: सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent, which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. India has urged Sri Lanka to cooperate in the early release of Indian fishermen and their boats detained by its authorities, while reiterating that a humanitarian approach should guide the handling of the long-pending issue. The matter figured prominently during Foreign Secretary Vikram Misri's discussions with the Sri Lankan leadership during his official visit to Colombo. Mr. Misri arrived in Colombo yesterday for a day-long visit. He held separate meetings with the President Anura Kumara Dissanayake, Prime Minister Harini Amarasurya, Foreign Minister Vijitha Herath and Foreign Secretary Aruni Ranaraj. During the talks, Mr. Misri discussed issues pertaining to fishermen and requested Sri Lanka's cooperation for the early release of fishermen and boats detained in the island nation. The fishermen issue is a contentious one in the ties between India and Sri Lanka, with Lankan Navy personnel even firing at Indian fishermen in the Park Strait and seizing their boats in several alleged incidents of illegally entering Sri Lankan territorial waters. India has advised Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. In response to media queries regarding comments made by Pakistan Foreign Minister on the so-called Yom-e-Istiqlal

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार। श्रोताओं नमस्कार। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु वार्ता जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीना।
1: मैं अपनी राह जा रहा हूं, रास्ता मैं जानता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं दुख के इस दलदल से बाहर निकलने में लोगों की मदद कर सकूं। नहीं, यह पलायन नहीं है। यह कहना था विश्व प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति का। जिद्दू कृष्णा मूर्ति का जन्म 11 मई 1895 आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदन पल्लई में हुआ था। उनके पिता जिद्दू नारायणिया ब्रिटिश प्रशासन में सरकारी कर्मचारी थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति केवल 10 साल के ही थे, तभी उनकी माता संजीव वामा का निधन हो गया। उनकी और उनके भाई को युवावस्था में ही थियोसोफिकल सोसाइटी की तात्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट ने गोद ले लिया था। डॉक्टर बेसेंट और अन्य लोगों ने घोषणा की कि कृष्णमूर्ति एक विश्वगुरु होंगे। इस आगमन के लिए दुनिया को तैयार करने हेतु ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक एक विश्वव्यापी संगठन का गठन किया गया और युवा कृष्णमूर्ति को इसका प्रमुख बनाया गया। लेकिन 1929 में कृष्णमूर्ति ने अपनी अपेक्षित भूमिका त्याग दी। संगठन जिसके विशाल अनुयायी थे उसे भंग कर दिया। तब से लेकर 17 फरवरी 1986 को मृत्यु तक लगभग 60 वर्षों तक उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की और बड़ी संख्या में लोगों को मानव जाति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बताया। कृष्णमूर्ति के अनुसार मनुष्य हिंसक है, आत्म केंद्रित है, सुख की तलाश में है, डरा हुआ है, असुरक्षित है, अपने आप में वह भ्रष्ट है और अपने संबंधों में चाहे अंतरतरंग हो या न हो उसने एक तथाकथित समाज का निर्माण किया है। कृष्णमूर्ति ने ईश्वर की अवधारणा को खारिज नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी भी धार्मिक या पारंपरिक ईश्वर की अवधारणा पर विश्वास करने से इनकार किया। उनका मानना था कि ईश्वर एक असीम और कालातीत शक्ति है जिसे किसी इमारत या प्रतीक में कैद नहीं किया जा सकता। कृष्णमूर्ति ने किसी गुरु या शिक्षक के मार्गदर्शन में विश्वास करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि सत्य को किसी दूसरे के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं की जागरूकता और अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य एक पथहीन भूमि है। दुख

0: और अभाव में किसी चीज का स्पष्ट बोध नहीं होता है। वास्तविक ज्ञान चेतना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और सत्य तक पहुंचने के लिए कोई राजमार्ग नहीं है। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी का संचार करना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करना है, बल्कि उन्हें आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने, समस्याओं का समाधान करने और एक स्वतंत्र, जिम्मेदार और नैतिक व्यक्ति बनाने में मदद करना है। कृष्णमूर्ति ने राष्ट्रीयता और जाति जैसे सामाजिक विभाजनों को भी खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये विभाजन मनुष्य को एक दूसरे से अलग करते हैं और उनमें भेदभाव पैदा करते हैं। कृष्णमूर्ति ने सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं और अंधविश्वासों से भी इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ये रीति रिवाज अक्सर तर्कहीन होते हैं और मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने से रोकते हैं। वे किसी भी स्थापित प्रणाली या विचारधारा का पालन करने के विरुद्ध थे। उनके भाषणों और संवादों को 60 से ज़्यादा किताबों में संकलित और प्रकाशित किया गया है और अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
1: अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रामचरितमानस अयोध्या कांड।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततोगत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूँगी। मंथरा अपनी स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आँखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

0: समर्थयति। यत् स्थानीय सामर्थ्यं सुदृढ़ीकृत्य राष्ट्रीय प्राथमिकतानां पूर्तौ सहायकं भवति। ह्यः नवदिल्ल्यां अफ्रीका दिवसावसरे अवदत् यत् अफ्रीका देशानां प्रमुख व्यापार निवेश सहभागीषु भारतमपि अन्यतममस्ति इति गौरवस्य विषयो वर्तते। गतवर्षे उभयोरपि मध्ये 93 अर्बुद डॉलर मितः द्विपक्षीय व्यापारः जातः। सः एतदपि अवदत् यत् अफ्रीका देशेषु भारतस्य निवेशः आहत्य 80 अर्बुद डॉलर मिताधिकः जातः, येन भारतं तत्रत्य प्रमुख निवेशक देशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां षोडश भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिविजन ए इत्यस्य उपांत्य चरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्यप्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयम्बतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपांत्य चक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, उड़ीसा दलेन हरियाणा दलं 5-1, झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूटआउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलं अथ मध्य प्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन दीव दलं च 7-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। श्री मोदी ने श्री टेड के साथ मीडिया और मनोरंजन केंद्र पर चर्चा की। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की गई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिल्क्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों को जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सत्यम वर्मा के गाए भजन।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सत्यम वर्मा के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। दोस्तों, हम में से कुछ लोग सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करते हैं और कुछ चाय से, और कुछ जिम या योगा ज्वाइन करके करते हैं, और कुछ प्रभु सिमरन से। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह सुबह उठकर बुक्स भी पढ़ते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो आप बताइए कि आप सबसे पहले अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ।

दोस्तों, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है खुद को बेहतर बनाने का या फिर बेफिक्र होकर मुस्कुराने का।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों के मोहताज नहीं होते, बस केवल दिल में महसूस किए जाते हैं, बिल्कुल इस गीत की तरह।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना।

तेरा साथ है तो हर लम्हा सुहाना लगता है, तेरा साथ है तो हर लम्हा सुहाना लगता है, वरना अकेले तो ये शहर भी वीराना लगता है। हंसते मुस्कुराते कट जाए ये ज़िंदगी अपनी, जब तुम पास हो तो हर गम पुराना लगता है।

दोस्तों, गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को इजाजत दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। नमस्कार।

0: अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में आप सुन।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
6: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
5: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
7: India is proud to be one of Africa's।
8: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
5: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद

0: की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत @2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हॉर्मुज जलडमरुमध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हॉर्मुज जलडमरुमध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हॉर्मुज जलडमरुमध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज जलडमरुमध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से PM मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा, पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों

0: और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली ज़खीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक मरकज़ के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में मुतालिका एजेंसियों से सख्त चौकसी बरतने को कहा है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुस से 60 बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की किस्सा गोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तख्लीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक CEO टेड सेरेंटोस से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि मज़कूरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की ज़बरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरका विजन पर तबादला ख्याल किया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस्सा गोई से मुतालिक पहल के आगाज का भी ऐलान किया। इस पहल में सरमायाकारी का मकसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT और नेशनल फिल्म डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के साथ शराकतदारी और सलाहियत साजी के जरिए भारत की तख्लीकी सलाहियत वाले अफराद की अगली नस्ल को फरोग देना है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। तकर्रुरी से मुतालिक काबीना कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। इस तरह वो इस महीने की 30 तारीख से मजीद एक साल तक काबीना सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगे। काबीना कमेटी ने दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में भी एक साल की तौसी की मंजूरी दी है। लोकसभा में ऐवान के आज के कामकाज में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मज़कूरा बिल का मकसद अदायगियों और तस्वीये के 2007 के एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में अखराजात से मुतालिक बिल नंबर 3 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। झारखंड असेंबली के आज से शुरू होने वाले मानसून इजलास से कबल दो खवातीन समेत एहतजाज करने वाले 5 अफराद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे के लीडर देवेंद्रनाथ महतो के साथ शामिल हो गए हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। महतो की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर काफी कम होने के तनाजुर में उनकी सेहत तशवीश का मामला बन गई है। रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार तलबा के मसाइल हल करने की पाबंद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी

0: सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस मामले पर काम कर रही है। जनाब सोरेन ने यह भी कहा कि मुतालिका एजेंसियां दिन रात तफ्तीश का काम कर रही हैं और कसूरवार अफराद को जेलों में भेजा जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC इस्लाहात मंच के परचम तले एहतजाज 25 जुलाई को शुरू हुआ था। मुजाहिरीन का कहना है कि बार बार की अपीलों के बावजूद किसी तरह की ठोस कार्रवाई करने में सरकार के नाकाम रहने के बाद उन्हें एजिटेशन करने का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये मुजाहिरीन 14वें झारखंड PSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान मनसूख किए जाने और भर्ती के इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग के मद्देनज़र देहरादून और कुछ दीगर जिलों में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली इंतजामिया और बाज़ाबादकारी महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो लगातार बारिश होने और रियासत के बाज हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनज़र सख्त चौकसी बरतें। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला इंतजामिया और दीगर एजेंसियों से कहा है कि वो करीबी तालमेल कायम रखें और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्रवाई को यकीनी बनाएं। वहां के बाशिंदों और सयाहों को ये सलाह दी गई है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और किसी भी तरह के सफर पर बाहर निकलने से पहले मौसम और सड़क रास्तों के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करें। हमने रियासत में हाई अलर्ट जारी किए जाने के बारे में कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटने और बाज़ाबादकारी महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन से बात की।
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। 3 जनपद जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली के बाज हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन में भी कुछ मकामात पर औसत बारिश होने का इम्कान है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने ये बात दोहराई है कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निमटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के तबादले ख्याल के दौरान ये मामला खासतौर पर जेर गौर आया। जनाब मिस्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके, वजीर आजम हरिनी अमरसूरिया, वजीर खारिजा और खारिजा सेक्रेटरी के साथ अलग अलग मुलाकात की। माहीगीरों का मामला भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मामला रहा है। सरकार ने कहा है कि मगरबी एशिया के खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल कशीदा होने के बावजूद आबनाए हुरमुस से 60 माल बरदार बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खलीज के खित्ते से 3,972 भारतीय मल्लाहों को वापस लाया गया। साथ ही बहरान से निमटने से मुतालिक दिन रात काम करने वाले निज़ाम के जरिए लोगों के मुश्किल में घिरे हुए हालात के ताल्लुक से फोन कॉल्स और ईमेल्स पर कार्रवाई की गई। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुस के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते समझौते का ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होने पर अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह फिर से खुल जाएगी, आलमी मईशत पर दबाव कम हो जाएगा और जंग के खात्मे में मदद मिलेगी, लेकिन ईरान की बंदरगाहों पर अमरीका की नाकाबंदी हटाने के ताल्लुक से इसमें गैर यकीनी की कैफियत का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया ने इससे कबल ऐसे किसी भी मुआहिदे के इम्कान को रद्द कर दिया था जिससे आबनाए हुरमुस पर ईरान की गिरफ्त मजबूत हो सकती हो, जो अमरीका के लिए एक बड़े नुकसान के मुतरादिफ होगा और आलमी जाब्तों से भी इन्हिराफ होगा। ईरान ने आबनाए हुरमुस के मामले पर कंट्रोल के कुछ इकदाम

0: बुनियाद पर ये कहते हुए इसरार किया है कि वो एक खुली बैनुल अक्वामी आबी गुजरगाह के ताल्लुक से पीछे नहीं हटेगा जैसा कि ये जंग से पहले थी। अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात से कबल जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ओमान के साथ समझौता तय करने का काम आखिरी मरहले में है और बज़ाहिर अमरीका की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाज़ फरीक इस अमल में रुकावट नहीं डालते तो एक मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को ये सलाह दी है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और अपनी सरजमीन पर काम करने वाले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ठोस मोतबर और पुख्ता कार्रवाई करे। नीज उन सभी भारतीय इलाकों को फौरी तौर पर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। नाम निहाद योम इस्तेसाल के ताल्लुक से पाकिस्तान के वजीर खारजा के तबसरे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ढोंग दिखावे और बनावटी इकदाम से दुनिया को गुमराह नहीं किया जा सकता। भारत ने नाम निहाद योम इस्तेसाल मनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को वाज तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं और रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त को 2019 को जो आईनी तब्दीलियां की गई थीं वो भारत का पूरी तरह अंदरूनी मामला है। आज दुनिया भर में हिरोशिमा जापान में किए गए एटमी बम हमले के मुतासरीन को याद किया जा रहा है। इस हमले के नतीजे में हज़ारों की तादाद में अफराद फौरी तौर से हलाक हो गए थे और साल 1945 के आखिर तक 1,40,000 हलाकतें हुई थीं। आज सुबह पीस मेमोरियल पार्क में मुनक़िद एक तकरीब में एक सानेह को याद किया गया और इसकी याद में थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की गई। इस यादगारी मकाम पर एक दस्तावेज़ को भी रखा गया जिसमें 353,639 मुतासरीन के नाम दर्ज हैं। इस तकरीब में शामिल रहनुमाओं ने न्यूक्लियाई हथियारों को ख़त्म करने की अपील की जिसकी इस हमले में बच जाने वाले अफराद पुरजोर वकालत करते आए हैं। इन अफराद को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। इस हमले के 3 दिन बाद नागासाकी पर एटमी हमला किया गया था जिसके बाद दूसरी जंगे अजीम खत्म हो गई थी। हॉकी में कल तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में जारी 16वीं भारतीय जूनियर मर्दों की कौमी चैंपियनशिप के डिवीजन ए मुकाबलों में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमें अपने क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया जबकि झारखंड ने उत्तर प्रदेश को 3-3 से बराबरी के बाद शूटआउट में शिकस्त दी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने साबिक वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, चाहे जो भी हो जाए अपने लोगों के पास जाऊंगी, ये वो बांग्लादेश नहीं है जो हमने बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटाने के मामले में मार्क जुकरबर्ग ने हुकूमत से मुआफ़ी मांगी, ये खबर भी अखबारात पे नुमाया है। यूपी असम्बली का मानसूनी इजलास कबल अज वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, हुकूमत ने अपोजिशन पर अवामी फलाही उमूर पर बहस रोकने का इल्ज़ाम आयद किया है। इनकलाब ने इस खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं। अबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी रास्ते पर ईरान और ओमान मुत्तफिक।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली ज़खीरा मौजूद है जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक आलमी मरकज़ के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से 60 बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत बाहर निकाला है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 8:45 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आज आप सुनेंगे रित्विम सानियाल के गायन राग जौनपुरी में। पखावज पर संगत की है श्रीकांत मिश्रा ने।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप रित्विम सान्याल का गायन सुन रहे थे राग जौनपुरी में। पखावज पर थे श्रीकांत मिश्रा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो समस्याओं को हल करने, पैटर्न पहचानने और फैसले लेने के लिए इंसानी बुद्धिमत्ता की नकल करता है। पहले से तय और सख्त नियमों का पालन करने के बजाय AI सिस्टम बहुत सारे डेटा से सीखते हैं और समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाकर, कामकाज को आसान बनाकर और अकेले या छोटे बिजनेस को बड़ा करके एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देता है। ये बाजार में उतरने की पारंपरिक रुकावटों को कम करता है, जिससे छोटी टीमें भी वैसे ही ग्रोथ और क्षमता हासिल कर पाती है जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए मुमकिन थी। स्टार्टअप, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता समन्वय, इसके बारे में जानने के लिए सुनते हैं नागेंद्र रॉय और दिलीप झा की ये बातचीत।
3: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इस पत्रिका कार्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई बातें, नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों द्वारा पहुंचाते रहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि वे उन जानकारियों से लाभान्वित हों और अपने आसपास के लोगों को भी उसका लाभ दें। आज हम जिस विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं वो हमारी पत्रिका का बहुत ही रिलीवेंट विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहां पिछले 10 साल से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी ध्यान दिया गया है, इसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप विकसित हुए हैं। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में जो उपस्थित विशेषज्ञ हैं, वे बैंकिंग, फिनटेक, सरकारी संस्थानों, शिक्षा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं इसमें इनका एक विस्तृत अनुभव है, नेतृत्व का भी अनुभव रहा है और उन्होंने अपने नेतृत्व से डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या भविष्य की जो तकनीक है किस तरह से उसका लाभ उठाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अन्य लोग कैसे उठा सकते हैं, उनके क्या सुझाव होंगे, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नागेंद्र राय जी। नागेंद्र राय जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप आफ्टर एजुकेशन जो एक प्रोफेशन में आए और अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं अमेरिका में, तो ये परिवर्तन आपने कैसे किया, ये विचार इस यात्रा के लिए कैसे आया आपके मन में?
4: बहुत सेंसिटिव प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है मेरी। मैंने जब हमारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मैंने उदयपुर में ली और कॉलेज भी वहीं से पढ़ाई की है। जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो उस समय इंटरनेट की उपलब्धता नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब हम IT फील्ड में आए तो हमारे को उसकी एक्सप्लोरेशन भी करना पड़ा, उसमें जाना भी पड़ा, समझना भी पड़ा, वो सब हमने काम किया। लेकिन तब तक हमारे दिमाग में ये भी बात नहीं थी कि हम ऐसा कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे या स्टार्टअप खोलेंगे। लेकिन जब इस दौरान हमने कई संस्थाओं में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम किया, तो इंस्पिरेशन आया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं जो कि दुनिया में वैल्यूएबल होगा, जिससे हम कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकेंगे। वो दिमाग में रखते हुए एक कंपनी की स्थापना की हमने 2019 में, और उसी वर्ष कोविड भी आ गए थे, कोरोना काल चालू हो गया था। लेकिन हमारे जो सहकार्यकर्ता हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन सब ने मिलकर उस पे विचार किया, उसको इस तरीके से चलाया कि हम हार ना माने और आगे बढ़ते रहे। तो एक जो सजेशंस या रिकमेंडेशन जो होगी कि एंटरप्रेन्योर्स शुरू के 3 साल तक अगर उनको कोई सफलता नहीं मिल जाती है तो वो हार मान लेते हैं। नेवर गिव अप वाला माइंडसेट हमेशा होना चाहिए किसी भी स्टार्टअप को जो रखते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल चैलेंज हो सकते हैं, बिजनेस चैलेंज हो सकते हैं, एक्सटर्नल जो आपके फैक्टर्स हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वॉर सिचुएशंस हो, उनमें ये चैलेंजेस आते हैं। लेकिन उनसे ऊपर निकलना और आगे बढ़ना, वही एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी भी होती है और स्किल भी होती है।
3: बहुत अच्छा, आपने एक स्किल की चर्चा की। स्किल डेवलपमेंट जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा मिशन है भारत सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं युवाओं को जब भी संबोधित करते हैं कि आप रोजगार ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनिए। निश्चित रूप से वो तभी हो सकता है जब लोग अपना एक कंपनी चलाएं, अपना स्टार्टअप शुरू करें। इसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो है कई तरह के आर्थिक सहयोग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। आजकल जो है विश्वविद्यालयों में भी इसकी सुविधा दी गई है कि पढ़ते हुए वो

0: इस तरह से एक बिजनेस मैनेजमेंट की ओर जाएं, तभी जो है हमारा विकसित भारत का जो स्वप्न है 2047 का वो पूरा होगा, जब आर्थिक रूप से ये समृद्ध होगा। आपने बताया कि आप किस तरह से कंपनी फाउंडर के रूप में आगे आए, तो आपकी जो ये कंपनी है क्या है, और ये अन्य तरह की कई सारी कंपनियां कार्य करती हैं, चाहे कंसल्टिंग हो या किसी और क्षेत्र में, तो ये किस तरह अन्य से अलग है?
1: ग्लोबल विजन को लेकर हम 2019 में चालू हुए थे और आज 4 देशों में अपना काम कर रहे हैं। जिस समय हमने कंपनी की स्थापना की उस समय थोड़ा ग्लोबल अनस्टेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल, लेकिन नेवर गिव अप, जो हम कभी हार नहीं मानेंगे, वो मानसिकता हमने रखी। दूसरा, हमने शुरू से एक पार्टनर जो कोलैबोरेशन वाली जो मानसिकता होती है, जो बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ के या जो पहले से मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके साथ बात करके अपना वैल्यू कहाँ हम दिखा सकते हैं, कैसे वो जो काम जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर सकें और क्वालिटी के साथ कर सकें, वो एक सक्सेस मंत्र आप बोल सकते हैं कि हम उस मानसिकता को लेकर आगे चले और हमने अपनी निरंतरता को बनाए रखा, प्रयासों में कभी कमी नहीं की और सही टैलेंट है उसको हमने अवसर दिया। और जैसा मोदी जी ने भी कहा है कि इंडिया इज अ टैलेंट फैक्ट्री, तो उस टैलेंट फैक्ट्री को समझना और उसको अपने परिवेश में लेके आना और काम करना, वो एक चीज है जो हम सबको समझनी चाहिए, जो धीरे धीरे आती है, समय पर ही आती है।
0: निश्चित रूप से, और ये जो टैलेंट फैक्ट्री है वो निश्चित रूप से इसीलिए कहा गया होगा कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों ने इस देश से बाहर जाके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, और हम कह सकते हैं कि आप एक वैश्विक बिजनेस और टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में आपने स्थापित किया है अपनी मेहनत से। एक हम इसमें ये जानना चाहेंगे, आप अपनी कंपनी के संस्थापक CEO हैं, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं बिजनेस के लिए, प्रोजेक्ट होता है, फिर उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, फिर उसके लिए जो ऑफिस होता है प्राय वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का होता है
1: जी।
0: लेकिन उससे आगे फील्ड पे जाकर इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर जाए, ग्राउंड टू वर्क काम करे, इसको लेके आप किस तरह की अपनी नीति बनाते हैं या किस तरह की नीति बनानी चाहिए?
1: मेरा जो मुख्य रोल है मेरी कंपनी में वो वही है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को अगर चालू करूं या मैं किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूं हमारे क्लाइंट के लिए, तो उसका जो प्रभाव है वो एक एक उसका जो यूजर है, जो उसको प्रयोग में लेके आएगा उस प्रोजेक्ट का या उस प्रोडक्ट का, उसके पास क्या इम्पैक्ट जा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारी गणित वहां से चालू करेंगे और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझेंगे तो हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाने की डेफिनेशन प्रोजेक्ट को खत्म करना नहीं है, उस प्रोजेक्ट के प्रभाव कहाँ कहाँ पहुंचा और वो किस रूप में पहुंचा, अगर उसका मेजरमेंट हम कर पाए तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल मान सकते हैं। हमारे टर्म में बोलते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स,
0: PMO यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस
1: जी,
0: उसका किस तरह से सक्रिय रोल होना चाहिए और हो रहा है, ये आपने बताया। आजकल तकनीक बदल रही है, खास करके हर जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है
1: जी।
0: भारत सरकार ने भी इनोवेशन पे ज्यादा फोकस किया है, तकनीक और नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, ये सारी चीजें किस तरह से एक प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, हेल्प भी कर रहे हैं और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं, उसकी स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें उसी समय में एक बात और ध्यान रखना है कि ये उस चीज का नेगेटिव इफेक्ट भी आपके प्रोजेक्ट पे आ सकता है, वो आपके टैलेंट पे भी आ सकता है। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको कोई भय तो नहीं है कि भाई नवाचार हो जाएगा या कुछ इनोवेशन हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी या हमारा काम कोई और करने लग जाएगा, ये भय निकालना पड़ेगा। बनिस्पत इसके हमारे को क्या करना चाहिए कि हमको सीखना चाहिए, अगर हम उस चीज को सीख लेंगे तो हम उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और हमारी रिलीवेंस बढ़ जाएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम इनोवेशन और एक्सीलेंस लेके आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छी बात है पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वहीं से इनोवेशन का प्रादुर्भाव होगा।
0: उद्यमिता को बढ़ाने के लिए या युवाओं को और से और अधिक अवसर मिलने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है भविष्य की और तकनीक क्या आ सकती है इस क्षेत्र में मदद करने के लिए?
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा एक काल चालू हुआ है, ये काफी समय से चल रहा है। 2017 में मैंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इसको डेमो किया था कि इसको हम कैसे यूज में लेके आ सकते हैं, लेकिन जहां तक इसका प्रभाव है या आगे की इसकी जो नई टेक्नोलॉजी आ सकती है वो बहुत काफी विस्तृत है, इसका स्वरूप बहुत विशाल है, विराट है, और वो पूरे विश्व में एक समान रूप से बढ़ रहा है। और जहाँ टैलेंट है वहाँ पे ये बहुत त्वरित गति से बढ़ रहा है, क्योंकि उसको यूज करने वाला ज्यादा है, उनको प्रयोग में लाने वाले ज्यादा है। तो उस सारी डायनेमिक्स को समझने के लिए या समझते हुए हमें अपने आप को उससे एक्वेंटेड करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में इसको डालना पड़ेगा कि

0: ये एक कोई ऑप्शनल विषय नहीं रह गया है, ये हमारे को छोटी कक्षाओं से लेके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस सब में इसको पढ़ाना पड़ेगा, जो आज चालू हो गया है। अभी मैं IIM में भी पढ़ा के आया ये बात, और सारी जो इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इस तरीके के कोर्सेज प्रारंभ कर दिए गए हैं।
1: आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता है, बहुत सारी चीजें जो है वो शुरुआती दौर के बाद आगे नहीं बढ़ पाती है। आपको क्या लगता है कि असफलता को किस तरह से सफलता में बदला जा सकता है? उस असफलता के कारण क्या है? क्या आर्थिक कारण होते हैं, तकनीकी कारण होते हैं, या व्यक्ति जिसने शुरू किया है संस्था ने उसमें विल की कमी हो जाती है?
0: जब मैंने अपना करियर चालू किया था तब से ही एक बात सीखी थी, वो मैं बार बार बोलता भी हूँ और उसको अपने जीवन में उतारा भी है। वो ये है, इंग्लिश में उसका कोटेशन है कि यू डोंट वॉन्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स, यू वॉन्ट टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। नए नए तरीके के कार्य करने की जरूरत भी नहीं होती, हमें उसी कार्य को नए तरीके से करने की आवश्यकता है। अगर किसी को सफलता नहीं मिली है तो धैर्य की परम आवश्यकता रहती है, और जो हम काम नहीं मिल रहे हैं उस असफलता के पीछे कारण क्या है, अगर उनको हम जान पाएंगे तो फिर हम उसके हिसाब से अपना प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसको हम असफलता को सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। और उसके लिए एक प्रमुख, और जो अभी गुरु पूर्णिमा थी 2 दिवस पहले, तो विश्व में उसकी बहुत महत्ता है। मेरे जीवन में प्रमुख रूप से मैं बहुत मानता हूँ कि हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं, और वो गुरु आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं और कहीं भी मिल सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप गुरु बनाओगे तभी वो गुरु बनेंगे, आपके लिए मेंटर कोई भी हो सकता है, और मेंटर होना अच्छी बात है। और अलग अलग क्षेत्रों में आपके एक साथ 10 मेंटर भी हो सकते हैं जिनके पास आप जाके बात करो, तो मेंटरशिप मिलेगी, आपका माइंडसेट चलेगा, आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होगा, आप अपने कार्य में बदलाव लाएंगे, तो असफलता को सफलता में लाया जा सकता है।
1: किसी संगठन के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नीतियों के सहयोग की या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, गवर्नेंस की जिसको हम बात करते
0: जी
1: हैं। तो आपको क्या लगता है, नवाचार के साथ कंपनियों के विस्तार के लिए गुड गवर्नेंस कितना महत्वपूर्ण होता है, और आपने जहाँ ये एस्टेब्लिश किया है उसका अनुभव कैसा है?
0: बिना गवर्नेंस के कोई भी आप प्रोजेक्ट या एक्टिविटी या इनिशिएटिव आप चलाते हैं वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और अगर हम उस गवर्नेंस को सही तरीके से उस इकोसिस्टम में फॉलो कर पाएँ तो उसकी सफलता सिद्ध होती है। तो नीतियाँ होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, और वो अपने एक अनुशासन लेके आता है। वही चीज़ें हमारे जीवन में अनुशासन लेके आती है, और वो प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो नीति का होना, पॉलिसीज़ का होना, गवर्नेंस का होना, डिसिप्लिन का होना, स्टैंडर्ड्स का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने शरीर में विटामिन का होना आवश्यक है।
1: आप टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ भी हैं और बिजनेस में भी विशेषज्ञ हैं। 2019 में बताया कि
0: जी
1: आपने कंपनी एस्टेब्लिश किया है। आपने एक किताब लिखी है, PMO रिवाइड,
0: जी
1: यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को किस तरह से आप नए सिरे से एक विस्तार दे सकते हैं या आपस में जोड़ के रख सकते हैं,
0: जी
1: ये इसका शाब्दिक अर्थ है।
0: जी
1: इसके बारे में हमें बताइए कि इसकी मूल भावना क्या है और कैसे आपको ये प्रेरणा मिली लिखने की?
0: तो अगर मैं उसको एक उदाहरण के द्वारा अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता था तो हम किस तरीके से सोचते थे कि उसका जो नींव रखी जाएगी उसके ऊपर कैसे आर्किटेक्चर बनेगा, वो सारी चीज़ें। अब आज के परिवेश में अगर आप टेक्नोलॉजी को उसके अंदर मिक्स करके देखते हैं तो हमारे को कई तरीके की संभावनाएं नज़र आती है कि मैं इस बिल्डिंग को इस छोटी सी जगह में इस तरीके से भी बना सकता हूँ या अलग तरीके से भी बना सकता हूँ। तो वो जो इनोवेशन है, वो जो रिवायर अपन जो सोच रहे हैं, वो सिमिलरली वो अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में। पहले ऐसे होता था कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, 10 प्रोजेक्ट मैनेजर एक PMO डिपार्टमेंट में हैं, वो अपना अपना काम करेंगे, इस तरीके से करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन उसी PMO ऑफिस को अगर हम मॉडर्न बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करना चाहते हैं, जो लीगेसी सिस्टम है उसके ऊपर हम एडवांसमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे को उसको रिवायर करना पड़ेगा। और वो रिवायर करने के लिए ही मैंने ये PMO रिवायर्ड किताब लिखी है, जिसमें मैंने दुनिया के 28 विशेषज्ञों को शामिल किया है, उनके जो पर्सपेक्टिव हैं, उनके जो विचार हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को मैंने उसमें अंदर डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, जो पूरी दुनिया में अच्छी तरह से प्राप्त हुई है।
1: बहुत अच्छा, आपने PMO रिवायर्ड की चर्चा की कि किस तरह से वो आपके प्रोजेक्ट को, मैनेजमेंट के ऑफिस को रिवायर्ड किया जा सकता है। नागेंद्र राय जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने उद्यमिता, विकास, जो वर्तमान की तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन और जो इनोवेशन है, वो किस तरह से इस क्षेत्र में कंपनियों के विस्तार में, रोजगार के अवसरों में बढ़ावा दे रहा है। आकाशवाणी आने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्टार्टअप, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता समन्वय। अभी आप इस विषय पर नागेंद्र रॉय और दिलीप झा की ये बातचीत सुन रहे थे और इसी के साथ

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हाँ मैं बलविंदर। दिन की शुरुआत एक वधिया विचार दे नाल। किसे ने कहा है कि जिंदगी सब नू इको जेही मिलती है, बस जीवन की समझ हर एक नू आप सीखनी पैंदी है। आओ जानते हाँ अज दे प्रोग्राम की तफसील। अज तुसी सुनोगे सेहत संभाल लड़ी हेठ रेबीज कारण इलाज अते बचाव विषय ते डॉक्टर नवनीत सिंह गिल तो खास जानकारी। उन्हां नाल गलबात करनगे बलविंदर सिंह। इस तो इलावा गीत भी सुनवाए जाणगे, पर सब तो पहला एक जरूरी विषय ते कुछ खास गल्लां। भारत एक अजिहा देश है जिथे भूगोलिक, भाषाई, धार्मिक ते सभ्याचारक विभिन्नता दे बावजूद एक गहरी राष्ट्रीय एकता कायम है। अनेकता विच एकता सिर्फ एक नारा नहीं, सगो भारतीय समाज की मूल आत्मा अते इस दी सब तो वड्डी ताकत है। भारत विच लगभग सारे प्रमुख धर्म हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ते होर शांति नाल रहिंदे ने। इत्थे 1000 तो वध भाषावां ते बोलियां बोलियां जांदियां ने। उत्तरी भारत दे ठंडे पहाड़ी इलाकियां तो लैके दक्षणी भारत दे गर्म तटी खेतरां तक, पूर्वी भारत दी हरियाली तो लैके पछमी राजस्थान दे रेतले मारुथला तक रहन सहन, खान पीन, पहरावे ते रीति रिवाजां विच बहुत अंतर है। फिर भी ये सारी विभिन्नता एक सांझी राष्ट्रीय एकता विच घुल मिल जांदी है। एक झंडा, एक संविधान, एक राष्ट्रीय गीत ते एक सांझा इतिहास सानू एक राष्ट्र बनाउंदे ने। इस एकता दियां जड़ां बहुत डूंघियां ने। प्राचीन काल तो ही भारतीय चिंतकां ने वासुदेव कुटुंबकम ते सर्वधर्म संभाव दे आदर्शां नू अपनाया। मध्यकाल विच भगती ते सूफी लहरां ने धार्मिक भेदभाव नू घटाउण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक युग विच सुतंत्रता संघर्ष ने सारियां भाषावां, धर्मां ते खेतरां दे लोकां नू इक मंच ते लियांदा। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ते होर अनेकां आगुआं ने राष्ट्रीय एकता नू ही अपनी लड़ाई दा आधार बनाया। स्वतंत्र भारत दे संविधान ने इस एकता नू संस्थागत रूप दिता ते धर्म निरपक्षता, लोकतंत्र ते समानता दे सिद्धांता राही इस नू मजबूत किता। फिर भी अज दे युग विच इस एकता नू कई चुनौतियां दा सामना है। खेतरीवाद, भाषावाद, धार्मिक कट्टरता ते राजनीतिक ध्रुवीकरण, इन्हां चुनौतियां दा सामना करन लई सिक्ख्या, सहनशीलता ते संवाद दी लोड़ है। नौजवान पीढ़ी नू ए समझना चाहिदा है कि विभिन्नता कमजोरी नहीं, सगो राष्ट्र दी असली ताकत है। इस एकता नू सुरक्षित ते मजबूत रखना हर भारतीय नागरिक दी समूहिक जिम्मेवारी है। ते आओ हुण सुनदे हां सेहत संभाल लड़ी हेठ रेबीज कारण इलाज अते बचाव विषय ते डॉक्टर नवनीत सिंह गिल तो खास जानकारी। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।
1: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰੈਬੀਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਬੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਬੀਜ਼ ਰੋਗ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਬੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
2: ਰੈਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ

0: उसकी डेंसिटी उसका घनत्व जिहड़ा नसां दा ज़्यादा है तो वायरस उन्ना ज़्यादा जल्दी फैलेगा ब्रेन दे।
1: इस तो पहले कि आप किस तरह बचना या सावधानियां की गल करिए, सब तो पहले ऐसे बीमारी के लक्षण की ने, की मतलब निशानियां ने, किवें पता लगेगा कि इस व्यक्ति नूं जिहड़ा है रैबीज होण जा रहा है या होण वाला है।
0: जे आप गल करिए भी उहदे लक्षण लक्षण जिहड़े हैगे इहनूं वी आपां तीन हिस्सों च वंडांगे। एक तो होंदे कि जिहड़ा लक्षणां तो बिना वाला पीरियड हुंदा हैगा, उस स्टार्टिंग वाला पीरियड हुंदा है उहनूं ए सिम्पटम यानी कि बिना लक्षण वाला पीरियड भी कहिंदे आ। उस तो बाद जिहड़े अर्ली लक्षण आउंदे जदों जदों लक्षण शुरू हुंदे उह होएगी पहलां तां इंसान नूं सुस्त रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, हल्का हल्का जिहा उहदे विच सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, गले विच खराश हो जाएगी, उहनूं फीवर आ जाएगा, उहनूं बुखार आना शुरू हो जाएगा लो ग्रेड दा, जिहड़ी अपनी दंदियां वाली थां हुंदी है इहदे उपर झरनाहट शुरू हो जाती है, सेंसेशनस जिहड़ी हैगी घट जाती हैं, कई बार बच जाती हैगियां, सलाइवेशन जिहनूं की है कि जिहड़ा अपना जिहड़ा थुक्क है उह ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, तो निगलण दे विच प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये जिहड़ी हैगी है सैकेंड स्टेज हुंदी है जिहनूं आपां कहिंदे जे अर्ली सिमटम्स आते हैं, जदों निगलण विच प्रॉब्लम आ जाए तो वह थोड़ा जा रोग वो थोड़े जे घातक हो रहे हैंगे। ये जिहड़े लक्षण हैगे है ये हौली हौली वधदे जाते हैं। उस तो बाद की लगता है कि जिवें पानी तो डर लगना शुरू हो जाता है जिहनूं आपां हाइड्रोफोबिया कहिंदे आ, ये सब तो मतलब कि घातक लक्षण हैगा। इस स्टेज पर पहुँचने तक तो बहुत ही जिहड़ी हालात है वो खराब हो जाते हैं, उलझण वर्गे लक्षण होने शुरू होते, कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, इनसोमनिया नींद नहीं आती, पेशेंट जागता रहता है, एजिटेट हो जाता है, तड़पता है, ये सारे लक्षण जिहड़े जो आ जाते हैं तुरंत हॉस्पिटल नूं कंटैक्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल की एमरजेंसी में जाना चाहिए क्योंकि इहदा इलाज बिल्कुल ही अलग तरीके का है। उस तो बाद जदों ये लक्षण आ जाते हैं ट्रीटमेंट ना हो पावे तो पेशेंट कोमा विच भी जा सकता है, तो कोमा विच जाने तो बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिन्हों कहो कि इहदा अजे तक इहदा कोई इलाज मिलिया नहीं गया, कोमा तो बाद जिहड़ा है कि फिर डैथ होने के चांसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, तुसीं इस बीमारी दे लक्षण दस्से, ये लक्षण तो उदों आउणगे जदों किसी नूं मतलब ये बीमारी जिहड़ी है उहदे विच आ चुकी है, पर इत्थे जिहड़ी मुख गल सी कुत्ते दे कट्टण दी, तां उहदे लई इलाज करन लई डॉक्टर कोल जाण तों पहलां जिस दौरान मतलब किसी नूं मान लो कि कुत्ता कट गया तो उस वक्त जिहड़ा है व्यक्ति नूं सब तों पहलां की करना चाहीदा है, फिर डॉक्टरी सहायता तो लैनी है पर डॉक्टर को पहुँचने तो पहला उन्होंने अपने आप किस तरह अपने आप को मतलब संभालना चाहिए।
0: बिल्कुल तुम बहुत वधिया गल की जी कि डॉक्टर दे कोल जाने तो पहला तो समझ लो कि जे आप कुत्ते ने कटिया सब तो पहला की करना चाहिए, किसी आप गली के कुत्ते ने कटिया तो आप मन के चलना चाहिए भी उन्होंने रेबीज हो सकता है। डॉक्टर को जाने तो पहला सब तो पहला जी मुढ़ली सहायता अपने आप को देनी है वह है जख्म को साबण के नाल 15 मिनट तक धोना, इस दे नाल आपां काफ़ी हद तक जिहड़ा वायरस की इनफेक्शन घटा देवांगे। उस तो बाद आपां जे तो उस ब्लीडिंग हो रही है जां ब्लड आ रहा है फिर आपां बंद करके उत्ते लगा के फिर डॉक्टर दे कोल जाना है।
1: अच्छा जो डॉक्टर कोल चले जाते तो डॉक्टर फिर किस तरीके नाल जांच करता है, तो कोई टेस्ट वगैरह होंगे ने उहदे जां उह सीधा मतलब ट्रीटमेंट करता है?
0: वैसे जे आपां गल करी वी उहनूं पता किवें लगे कि जानवर नूं रेबीज है कि नहीं तां उहदे कुछ टेस्ट होंदे है जिन्हों आपां रेबीज दे एंटीजन नूं चमड़ी तो जिथे कटिया है उस तो लैके उह टिशू की वरतों करते हुए इम्यूनोफ्लोरोसेंस तरीके दे नाल विधि द्वारा उन्हें खोजा जा सकता है। तो जे किसी मरीज़ नूं इहनूं कटिया हैगा जानवर ने तो जे आपां नूं लगता है कि उन्हें रेबीज हो सकता है तो उहदे सलेवा तो यानी कि उहदे थुक तो भी इस रेबीज़ के वायरस नूं आइसोलेट या उन्हें किया जाँच की जा सकती है। प्रैक्टिकल जे आपां गल करिए तुरंत टैसट करना बहुत ही पॉसीबल नहीं है, जिहड़ा अपना हिंदुस्तान का जिहड़ा सैटअप है कोई पिंड दे विच किसी नूं कटिया किसी नूं अपना की कहिंदे है शहर दे विच भी कटिया, सब तो पहला तो जिवें गल की डॉक्टर को गए तेरे डॉक्टर है वो पहला उसनों देखता है उन्होंने जिहड़ा कुत्ते ने कटिया उन्होंने कैटेगराइज करता है, जिवें आपां हुणे गल की भी बाइट कित्थे हैगी है ते बाइट किन्नी है, इहनूं असीं मोटा मोटी गल करिए तां तीन कैटेगरी दे विच डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 उहदे हिसाब नाल ट्रीटमेंट हुंदा है। जिहड़ी कैटेगरी 1 हुंदी है उहदे विच कुछ नहीं करना हुंदा, हुण तुसीं समझ लो भी जिवें कुत्ते ने किसी नूं जीभ लगा दित्ती ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੋਈ,
1: ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
0: ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ 1 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
1: ਮਤਲਬ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ
0: ਹੋਣਾ, ਜ਼ਖਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ 1 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਝਰੀਟ ਵੱਜ ਗਈ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਰੀਟ ਮਾਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ 'ਚ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਝਰੀਟਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਸਲੇਵਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ 2 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ

0: नहीं है कि जिन्ना मर्जी हो सकता है थोड़ा असी केस देखे है कि अभी जेडे अपने जू के काम करते हैं जो खाना खवाते जानवरों को उन्होंने पूरा पूरा हाथ भी निकल जाता है तो वो जी वो कैटेगरी 3 के आ जाता है वो हिसाब न फिर इलाज किया जाता है वह हुण इलाज के की होंगे है इलाज के दो तरह का इलाज होंगे है एक होंगे है प्री एक्सपोजर एक होंगे पोस्ट एक्सपोजर हूँ जो आप गल करा मतलब कि कुत्ते दे कट्टन तो बाद एक इलाज होंगे है इस लैवल से वो इलाज शुरू होएगा भी जो आप कुत्ते ने कट्टा है तो हूँ आप इलाज कर रहा है तो सब तो पहला जिम्मे मैं गल किया कि जख्म जो बहुत ज़्यादा है फिर तो उन्होंने डॉक्टरी सहायता दे के उन्होंने साफ किया जाता है पहला फिर वो इंजैक्शन दिए जाते हैं इंजैक्शन जोड़े होंगे है इंजैक्शन का कोर्स थोड़ा जहा लंबा होंगे है ठीक है 14 दिन तक होंगे है तो 28 दिन तक भी चलता है 28 दिन के पांच इंजैक्शन दिने हैं फिर आप लोकल जिन्होंने कहते इम्यूनोग्लोबुलिन इंजैक्शन भी दिने हैं आप लोकल साइड से दे वो एक अलग सहायता मतलब एक डॉक्टरी तौर पर ट्रीटमेंट हो जाता है कई बार जख्म बहुत व्डा है वह ऑपरेशन भी करना पैदा है ठीक है कोई होर नुकसान हो गया तो फिर ये चीज़ों के नाल फिर इलाज कैटेगरी के हिसाब न फिर वो रेबीज़ का फिर इलाज किया जाता है कुत्ते के कट्टन तो या किसी भी जानवर के कट्टन तो बाद
1: अच्छा डॉक्टर साहब तुसीं कहा कि जदों कोई जानवर कट जाता उस तो बाद जिहड़ा इलाज हुंदा इंजैक्शन लगाए जाते हैं वो जख्म की मतलब ट्रीटमेंट की जाती है एक तुसीं कहा सी प्री एक्सपोजर जदों मतलब मान लो किसी व्यक्ति नूं नहीं कट्टिया तो वो चाहुंदा है कि उन्होंने कोई इस तरह का जे कदे जानवर कोई कट भी जाता तो उन्होंने ना हो रैबीज़ वगैरह ना हो तो कि इस तरह के मतलब इलाज करवा सकता ज कोई वैक्सीन वगैरह है वो तो बारे भी सानू
0: बिल्कुल
1: जानकारी
0: जी
1: दो।
0: बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिमें कि आम आपां अपने इंजैक्शन्स लगाने हैं जिन्होंने इम्यूनाइजेशन कहने हैं जिमें कि पोलियो की वैक्सीन बच्चे ने पवाने हैं BCG का टीका लगाने हैं तो रेबीज़ वास्ते भी आप होने तो पहला भी यदा इलाज कर सकते हैं क्योंकि रेबीज़ के होने तो बाद इलाज हजे बहुत वधिया इलाज नहीं आया है क्योंकि वह वायरस जो ब्रेन में चला गया वह अल्टीमेटली मौत ही होंगी है रेबीज़ के तो ये जो इलाज है वो बचाव है आप वैक्सीन जो पहला ले लेने हैं तो आप इस तो बचा जा सकता है उस तो पहला आप दो इंजैक्शन जो लगवा लेने हैं जिमें एक अज इंजैक्शन लगाया एक 7 दिन बाद लगाया दो इंजैक्शन लैन आप इस चीज़ तो रेबीज़ तो आप बच सकते हैं।
1: ते ये इंजैक्शन किनू लेने जरूरी है जिवें कोई बंदा कुत्ता पालदा है जां उन्हां
0: हाँ
1: दे
0: जी
1: है किहड़े किहड़े व्यक्ति
0: देखो
1: मतलब इहदे विच जां
0: बिल्कुल ये हूँ कि वैसे तो सबनों लगवाने चाहिए ये वो आ जाते बंदे जेडे कि जिहड़े
1: जी
0: रिसर्चर होंगे है जिवें तो सो जे गुफावों के रिसर्च करने वाले जे साइंटिस्ट है जाते हैं रिसर्चर उन्होंने वास्ते हो गया जिहड़ियां रेबीज़ दियां जिहड़ियां जिते वैक्सीन बनती है जेडे उस वायरस के नाल काम करते हैं वो वाले बंदे हो गए ठीक है जंगल के घूमने वाले एडवेंचर करने वाले जे बंदे घूमन जाने आप दूजे कंट्री जाने हैं जंगल से जा रहे हैं जू के जा रहे हैं ठीक है जी सफारी कर जा रहे हैं जी आप ये सारे रिस्क फैक्टर है ये अपन इन सारू रेबीज़ का जो प्री एक्सपोजर लगवा लेना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: तो बच्चों नू
0: दूसरी गल हुण जे आपां गल करी सब तो ज़्यादा जे आपां एक स्टडी हुई हैगी है देखा जाए तो 50% जिहड़ियां बाइट्स है जिहड़ा रेबीज़ जिहड़े हैगे कुत्ते है जिहड़े कटदे है वो बच्चों नूं कटदे है ये इंडिया की एक स्टडी है भी 50% तो ज़्यादा 15 साल तो घट बच्चों जिहड़े कुत्ते कटदे हैगे है इसलिए बच्चों नूं तो बहुत जरूरी है लगाउण वो उन्हां नूं लगाउणी वैक्सीन बहुत जरूरी है।
1: अच्छा जिहड़े मतलब इस तरह के जानवरों को पालते हैं चाहे कुत्ता पालते हो तुसीं बिल्ली पालते हो या दूसरे जानवर पालते हो उन्होंने खुद भी लगवाना चाहिए तो उन्होंने उस जानवर के भी कुत्ते भी मतलब
0: बिल्कुल जी हुण जिहड़े जानवरों के डॉक्टर है उन्होंने संपर्क करके पहले तो जानवर नूं वो इंजैक्शन लगवाने चाहिए ताकि वो ना फैले ताकि उन्होंने रेबीज़ होवे ना क्योंकि उन्होंने भी जो रेबीज़ होना है किसी जानवर के कट्ट नाल होना है उन्होंने किसी रेबीज़ तो इसलिए वो इंजैक्शन लगने जरूरी है फिर जिहड़ा मालिक है जिहड़ा रख रहा है ऐसा नहीं कि वो ही कुत्ता है कदे वो भी तो बाहर जा सकता है उनको होर जानवर भी कट सकता है वो ज़्यादा रिस्क तो है तो उन्होंने भी पूरा पूरा जो प्री एक्सपोजर वाला जो है इम्यूनाइजेशन जो इंजैक्शन उन्होंने लेने चाहिए है इसलिए यह बहुत ही जरूरी है भी उस परिवारक मैंबर जिहड़े आसे पासे जे कुत्ते तुहाडे सोसाइटी च तां भी तुसीं लै लो क्योंकि पता नहीं कुत्ते ने किवें कट जाना है भला उहने मजाक मजाक च ही कटना है तो वह कट सकता है इसलिए वो ज़्यादा रिस्क है उन्होंने।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक आम तौर पर जी पिंडां दे विच एक गल आउंदी है क्योंकि पिंडां दे विच लोग जानवर पालदे आ गावां मझां पालदे आ कई बार इस तरह के जिहड़े कुत्ते जिहड़े रैबीज़ का शिकार होए हुंदे ने पहले रैबीज़ दे अफेक्टड हुंदे ने वो कुत्ते मतलब जानवरों नूं भी कट जांदे ने किसी गां नूं मझ नूं बकरी नूं भेड़ नूं किसी नूं उहनूं भी कट जांदे आ ते फिर उस हालात दे विच उस जानवर का भी ट्रीटमेंट करवाउणा जरूरी है उहदे बारे
0: बिल्कुल बहुत वधिया सवाल है तुसीं हुण जिवें आपां गल कीती जिहड़ा ये रेबीज़ है ये जानवर दे कट्ट नाल ही हुंदा हैगा जिवें आपां हुण पिंडां दी गल करिए वी कुत्ते ने मझ नूं कट लिया तो उहनूं रेबीज़ हो सकदा हैगा इस मौके ते उही चीज़ है भी जे तां वो जानवर अपना पालतू है कुत्ता उहनूं इंजैक्शन लगाओ जे आपां श्योर नहीं हैगे जां किसी होर जानवर ने उहनूं कट लिया होर कुत्ते ने कट लिया तां जिहड़े जानवरां दे डाक्टर की सहायता तुरंत लैनी चाहिए है उहनां नूं संपर्क करना चाहिए क्योंकि जिहड़ा वो जानवर है वो आपां नूं दुध दे रहा है

डाची वालिया मोड़ मोहार वे, सोनी वालिया लै चल नाल वे। सुरिंदर कौर की आवाज़ विच हुणे तुसी ए लोक गीत सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हाँ पुष्पा हंस की आवाज़ विच ए लोक गीत।

0: पुष्पा हंस दी आवाज विच हुणे तुसी ए लोक गीत सुन रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत देओ।
1: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सैंड्रोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट

0: में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा भी की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर परिचर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। यह विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्माण एजेंसी और इंजीनियरों तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रभावित सड़क खंड को ठीक करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं। सड़क मार्ग के पूरी तरह ठीक होने तक टोल को स्थगित रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के 64 किलोमीटर सड़क खंड पर पिछले महीने की 26 तारीख को फिसलन महसूस की गई थी। सभी दोषियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके अंतर्गत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दे दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे ने बताया कि 32 मेडिकल कॉलेज और मुंबई नगर पालिका के अस्पतालों में हड़ताल चल रही है। उन्होंने आगाह किया कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर आशुतोष आदि ने कहा कि बेहद गंभीर मामलों का इलाज जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट पर गंभीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि रंगों, पाउडरों और धान की भूसी के तेल की मिलावट मसालों में की जा रही है ताकि उनके रंग बेहतर दिखें और वजन तथा बाजार भाव बढ़ जाएं। श्री रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर तुरंत और सख्त कदम उठाए क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर से जुड़ा मुद्दा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister said in a social media post that India has a rich

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, और शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। मैं हूं आपके साथ अल्पना। जुड़िए और बहुत सारे संदेश हमें भेजिए, जल्दी से आपके संदेशों पर भी आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ,

0: में आवाज है लता मंगेशकर एस बी बाला सुब्रमण्यम की।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम है ये, आपकी पसंद। और देखिए, बहुत सारे संदेश मेरे पास आ चुके हैं और ये जो पहला संदेश है वो हम ले रहे हैं, ये है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभेंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छावड़ा। और इसके अलावा लिख रहे हैं, ये आपकी बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं, गुजारिश है आपसे अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और इस तरह से अपनी बातें साझा करते हैं, तो हम तो अभी आपको याद रखते ही हैं। और अगला जो संदेश है वो है मरहरा दरवाज़ा ईटा से, संदेश है नबी हसन अब्बासी, सहन शहनाज, नावेद हसन, सुहेल, अनम और रसीद का। इसके अलावा किदवई नगर सिद्धपुरा से टाउन से ज़ुबैर अली ख़ान, सबिया अंजुम खान हमें संदेश भेज रही हैं। और शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार हमें धन्यवाद भेज रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से राज पैलेस मऊ, नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा गीत है, फिल्म हीरो से हमने ये चुना है और अनुराधा पौडवाल और मनोहर की आवाज़ में।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, अगला संदेश जो हमें मिला है वो है छत्तीसगढ़ से, लिवई से। ये संदेश है गुलाब दास मणिकपुरी का, राजा दास और राजा रानी मलिकपुरी का, और आप नमस्कार भेज रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और ये अगला जो संदेश है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी का है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं छोटी बलिया करजन मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले दुकनी सदना, जूही इकबाल, इमरान, बिटिया आमना, आसमा, राबिया, आशु और समझ फूलवाले परिवार। और लिख रहे हैं, हमें निराश और नज़रअंदाज मत करिए, मेल ज़रूर पढ़िए। देखिए, अब आपकी सारी निराशा दूर हो गई होगी, हमने आपका मेल ले लिया है। और इसके अलावा महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जय जिनेन श्रोता संघ के रूपेश संघाई, मय संघाई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघाई परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और गुड मॉर्निंग हमें लिख के भेज रहे हैं करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी और जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और शशि बाला जग्गू जग्गी दाऊजी। और नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, फिर से संदेश रिपीट हो गया है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदी, रोहित।

अमित, ऋतु और मुकेश जागता। और इसके अलावा हमारे कार्यक्रम में से जुड़े हैं सनावत से शेख मूसा, अशोक वर्मा और राजकुमार। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, ये है फिल्म मोहरा से हमने ये चुना है, आवाज़ अलका याग्निक की है और उदित नारायण की।

0: गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आपके साथ अल्पना। और अगला जो संदेश हमें मिला है वो है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलेज शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और केशव रिदान खुराना। और आप लिख रहे हैं, हम सुबह से रेगुलर कनेक्ट हैं, किसी भी प्यारे से रोमांटिक गीत में हमें शामिल करें। ज़रूर शामिल करेंगे और कोशिश तो हम यही करेंगे, आपको प्यारे प्यारे रोमांटिक गीत सुनवाते रहें। इसके अलावा अली का डब वाली से बसंत सिंह, राजकुमार और कुलदीप गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गांव लोग ठाकुर वाला से स्वर्ण गिल, दलजीत, राजदीप और गुनूर और गुलनार और अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डाका से जो है राजेश जैन, बिट्टू और संजीव जैन गुटाना हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशन विंजानी, जो कि हमें भेज रहे हैं। इन्होंने कहीं से अपना कहाँ से संदेश भेजा ये नहीं लिखा हुआ है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से, बिलईगढ़ से हमारे पास है रोशनलाल देवगन, कौशल्या देवगन, हेमलता डिम्पल देवगन लिख रहे हैं कि इन्होंने कुछ लाइंस भी हमें लिखकर भेजी हैं। आशाओं के सावन में सपनों की बरसात रहे, गीतों की महफिल में हर पल नई बात रहे। हमारी बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप लिख रहे हैं, आपकी आवाज़ के संग दिलों में मिठास रहे। क्या बात है, धन्यवाद है आपका इतनी अच्छी अच्छी लाइन पंक्तियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूर नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी जी, इनको हमने पहले भी पढ़ा था। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय और गाज़ीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल और जो और बलिया से भी इन्होंने हमें संदेश भेजा है। और चलिए, ये तो संदेशों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, फ़िलहाल एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं।

और साथियों देखिए हमें नमस्कार भेज रहे हैं, ये हैं श्री करण राजस्थान से, राजू, खुशदिल उर्मिला और गुड्डू, जीनू, मनु और करणपुरी और इस्माइल हमें संदेश भेज रहे हैं और लिख रहे हैं, नमस्कार नमस्कार आपको भी। और हमारे यहाँ बरसात हुई है और मौसम थोड़ा ख़राब बना हुआ है, इसलिए गीत सुनवा दें। जी बिल्कुल, हम आपको प्यारे प्यारे गीत तो सुनवा ही रहे, इसके अलावा भी गीत सुनवाएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं सतप्रकाश सोनिठिया, प्रकाश प्रेम मनोहर, और ये हमारे साथ मनोहर लाल गांधी जुड़े हुए हैं। और ये अपनी कहाँ से जुड़े हैं इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास देखिए फिर से सेम लोग आप भेज देते हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से थरमेन चीपा, कपिल चीपा, ईशानी और पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं शानदार प्रस्तुति हो रही है, आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हम बस कोशिश तो यही करते हैं कि आप सभी को हमारे कार्यक्रम पसंद आए। और कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बबलू डब्बू, राजू और बबीता मिगलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित बेबी गर्वी और हिमांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमें जो संदेश भेजा है ये मनाली हिमाचल से हमारे पास संदेश है हर्ष, विनय, विनीत और रोजस का। इसके अलावा चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा भी हमें संदेश भेज रहे हैं। रामपुर, इसके अलावा पानीपत से खैल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष, लाडो, कोयल, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और लिख रहे हैं कि जान पहचान वालों को शामिल करते हैं, गैरों को शामिल नहीं करते। दीदी देखिए बिल्कुल भी नहीं, आप देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संदेश ले सकें और आप सबको शामिल कर सकें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कई सारे संदेश आप लोग रिपीट कर देते हैं जिससे आपके भाई बंधुओं के संदेश छूट जाते हैं। तो चलिए अगला संदेश है ज़िला मुरादाबाद से, ये उत्तर प्रदेश दुल्हापुर का संदेश है। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य और मोहनी और बलवीर सिंह जी का। तो चलिए आगे एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं और संदेश फिर हम लेंगे इसके बाद। तो ये गीत हमने सुना चुना है द ग्रेट गैम्बलर मूवी से, आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की।

और ये जो अगला संदेश है वो है हमारे पास मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का। और आप लिख रहे हैं कि लाइव आप सुन रहे हैं और उम्मीद है हमें भी आप शामिल करेंगे। जी बिल्कुल, आपको देखिए शामिल कर लिया है। मनाली हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी और डेविड, विमला, सतीश, अनेजा। और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया बक्सर बिहार से शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून का, सुमित्र, रमेश साहू का, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम, दानिश अंसारी का, और बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभयनंद और परमानंद, सारिमा बक्सर से एक और संदेश है राजस डी अंसारी का, आसमा खातून और इकबाल मस्तान का। जी हाँ, इसके अलावा हमारे पास छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद जुड़े हुए हैं, इकबाल और अखलाक, आमना, राबिया, आशु, जूही, सदर और आरजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और बेरड़ी मध्य प्रदेश से ये हमारे साथ जुड़े हैं हुकुम, सुनीता और हार्दिक, प्राची और तनु। इसके अलावा हमारे पास संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल साहनी और पिंगा जुड़े हुए हैं जालंधर से। और इसके अलावा हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा जी, जो कि बहुत बार इससे पहले भी इनका हम संदेश ले चुके हैं। और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशानी छिपा और पूजा परिहार लिख रहे हैं, क्या हमारा नंबर भी आएगा, हम प्रोग्राम सुन रहे हैं और आनंद भी उठा रहे हैं। जी देखिए, आपका नंबर आ गया है, ऐसे तो पहले भी आ सकता था क्योंकि आपके भाई बंधु बहुत सारे संदेश एक साथ भेज देते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम और विशाल और दिशानी और निमित आहूजा जी हमें संदेश भेज रहे हैं। और इसके अलावा शिशपाल वरदान हमें संदेश भेज रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तम कुमार बागेल, रुखमणी बागेल, साहिल और ये हमें संदेश भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ से। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा गीत है, फिल्म है लव स्टोरी।

जी हाँ, जो अगला संदेश है इस गाने से बहुत सूट करता है, क्योंकि सभी आप लोग बहुत सारी प्यार तो देते ही हैं, साथ में नाराजगी भी दिखाते रहते हैं अपनी, जैसे कि हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया लिख रहे हैं जमशेदपुर से कि हमारा आप मेल शामिल नहीं करते, बहुत अफसोस की बात है। देखिए, आपने आपका मेल शामिल कर लिया, आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी। इसके अलावा हमारे साथ संदेश भेजा है हमें उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज जी, कमला और भानु जी ने ये संदेश भेजा है। और इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आया फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से, उत्तर प्रदेश से संदेश है सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला और पवन और योगेंद्र जी का संदेश है। इसके अलावा बालकिश्वर कॉलोनी आगरा से ही संदेश हमें मिला है सरिता चौरसिया, सुमित, वीर और अबीर का। कानपुर से हमारे साथ नवाबगंज से जुड़े हुए श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज पीहू और दिया चौरसिया जी। देखिए, आपका भी हमने संदेश शामिल कर लिया है और अच्छी प्रस्तुति और नमस्कार लिखकर भेज रहे हैं ये हमें। आप धन्यवाद है आपका कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से ये संदेश है बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्बी, तनुश्री गुप्ता और अंबिका तनुश्री भेज रही हैं, अभय कुमार, सनातवी, शिवानी और रिया, टीशु, यायुषी और अनिरुद्ध भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धन्यवाद भेज रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है बुलंदशहर से, ये संदेश है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना, अरबान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार का। और बहुत सारे संदेश हमने लेने की कोशिश की है, जिसका छूट गया उसके लिए नाराज़गी के लिए हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि कोशिश हमारी यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा संदेश हम ले सकें। ये हमारे पास जो अगला संदेश है ये देवेंद्र प्रताप साहू का और रुद्रांश साहू और नेहा का, ये हमें संदेश भेज रहे हैं। इनके साथ जुड़े प्रणय और सोमाली ज़िला राजनंदगांव से ये संदेश हमें मिला है। तो

चाहती हूँ। बहुत सारे संदेश हमने लेने की कोशिश की है, और अब समय भी की सीमा भी समाप्त हो रही है, क्योंकि समय अब हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है कि हम आपके साथ और मुखातिब हो सकें। तो अल्पना को इजाज़त दीजिए इस कार्यक्रम से, लेकिन आपको छोड़ जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म बेताब से ये गीत सुना है, चुना है हमने, जो कुछ हमारे श्रोता ने इसकी फरमाइश भी की थी, और लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में ये अगला गीत है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 11 बजने को है, आप समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
2: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
1: श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने श्री टेड के साथ भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 24 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजिता हेरात और विदेश सचिव अरुणी राजा से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट पर गंभीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि रंगों, पाउडरों और धान की भूसी के तेल की मिलावट मसालों में की जा रही है ताकि उनके रंग बेहतर दिखें और वजन तथा बाजार भाव बढ़ सकें। श्री रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर तुरंत और सख्त कदम उठाए क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज कक्षा 12 तक के स्कूल बंद हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister said in a social media post that India has a rich tradition of storytelling, an extraordinary pool of creative talent, which can be leveraged to strengthen the country's position as a global hub for content creation. Mr. Modi said that they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector.
2: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें, हम भारत की अपनी स्टोरीज सबको सुनाएं।

थे। कम उम्र से ही जनाब फैयाज वासुफुद्दीन डागर ने पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा में प्रशिक्षित होकर न केवल बंदिशें और तकनीक सीखी बल्कि इस कला रूप के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी आत्मसात किया है। 1989 में अपने पिताजी के निधन के बाद आपने डागर ड्यूओ के रूप में अपने ताऊ जी के साथ देश विदेश में प्रमुख मंचों पर व्यापक प्रस्तुतियां दी हैं और रिकॉर्डिंग्स की हैं। 1994 में अपने ताऊ जी के देहावसान के बाद आप एकल कलाकार के रूप में डागर परंपरा के दायित्व को पूरी गरिमा और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2010 में आपको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री अलंकरण प्रदान किया गया। भारत और विदेशों के प्रमुख संगीत उत्सवों, सभाओं, अकादमिक संस्थानों और सांस्कृतिक निकायों द्वारा नियमित रूप से आपको प्रस्तुतियों के लिए और अन्य अवसरों पर आमंत्रित किया जाता है। एक बार पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, हमारे कलाकार का अभिनंदन करें। करतल ध्वनि से आप कलाकार का स्वागत करें। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित मोहन श्याम शर्मा, तानपुरे पर हैं अरविंदन श्रीनिवासन और अपराजिता चक्रवर्ती। आज की प्रथम प्रस्तुति है राग कोमल ऋषभ आसावरी की रचना, बंदिश सूल ताल में बद्ध है, बोल हैं आन सुनाई बांसुरी कान्हा। कलाकारों से अनुरोध है प्रस्तुति आरंभ करें।

Nigga, I'm a brother. Nigga, I'm a brother.

स्वरांजलि कार्यक्रम में आज उस्ताद फैयाज वासुद्दीन डागर ध्रुपद गायन की प्रस्तुति दे रहे हैं। अगली प्रस्तुति राग मियां की मल्हार की रचना है, चौताल में निबद्ध, बोल हैं आई है घटा।

स्वरांजलि कार्यक्रम में आज उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर ने ध्रुपद गायन की प्रस्तुति दी आप सभी के समक्ष। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे पंडित मोहन श्याम शर्मा और तानपुरे पर थे अरविंदन श्रीनिवासन और अपराजिता चक्रवर्ती। इस कार्यक्रम का आनंद यूट्यूब के माध्यम से भी लिया गया, जिसके लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया कार्यक्रम में मनीष आनंद, उपासना पटिहार और प्रकाश थपलियाल ने। हमारे साथियों के लिए करतल ध्वनि। प्रस्तुति सहयोग था विशाल, दिव्या और रेवती राजन का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्पर्शिता श्रीवास्तव और प्रदीप अग्रवाल। इसी के साथ मुझे यानी नीलम मलकानिया को स्वरांजलि कार्यक्रम से अब अनुमति दीजिए। नमस्कार, कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the Lok Sabha paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
3: 81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
2: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action during students' protests. The Speaker said question hour

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: घर आंगन।
1: लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। और आज के अंक में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड 14.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, एक सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी ही ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। यानी कि हमारी जो बोली है, जो भी हम बातचीत करते हैं, वो बहुत अनमोल है। इसलिए हमेशा मन में अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। ठीक से अगर हम बोलते हैं तो लोगों के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर हम अच्छे से किसी से बात नहीं करते तो लोग हमसे रूठ भी जाया करते हैं। इसलिए अपनी बोली को सोच समझ कर खर्च कीजिए। और हर दिन हम अपने कार्यक्रम में आप सबसे पूछते हैं एक प्रश्न। तो भाई, आज मौसम ऐसा है, बारिश का, बाहर बरसात हो रही है, और बरसात को देखकर मुझे याद आ रहा है ये प्रश्न। मुझे लग रहा है कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में ऐसे कई सारे किस्से जो है वो अनुभव किए हैं, तो अब आपके अनुभव भी मैं जानना चाहती हूँ। तो हमारा प्रश्न आपके लिए ये है कि भाई, आप हमें अपने जीवन का वो रोचक किस्सा बताइए जब आप बारिश में फिसल कर गिरे हों, लेकिन आपको उस गिरने की खुशी हुई हो कि भाई अरे वाह, अच्छा हुआ मैं गिर गया और मुझे तो अच्छा लगा, आनंद आया, बारिश में भीग लिया इसी बहाने। तो ऐसे आपके जो भी अनुभव हैं वो आप हमें लिख कर भेज दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो जल्दी जल्दी आप अपने आंसर हमें भेजिए। और अभी फ़िलहाल हो गया है वक्त इस प्यारे से गीत का।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम नगर फिल्म से, जिसे गाया आशा भोंसले और किशोर कुमार ने। तो देखिए, एक शेर है कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है, और जो लोग कुछ अच्छा करके जाते हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, कुछ ख़ास मौक़ों पर वे हमें बहुत याद आते हैं। जैसे कि आज का दिन है, तो आज के दिन विशेष में हम याद कर रहे हैं भारत के अग्रणी राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद और समाज सुधारक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। आज 6 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर देश उनके राष्ट्र जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को श्रद्धापूर्वक याद करता है, और हम उन्हें अपनी पूरी टीम की तरफ से शत शत नमन करते हैं। साथ ही दोस्तों, हम प्रतिवर्ष 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा डे, जो युद्ध की विभीषिका से बचने के साथ ही शांति, मानवता, अहिंसा और परमाणु हथियारों से मुक्त जो विश्व की आवश्यकता है उसका संदेश देता है। सभी मिलजुल कर रहें, सभी प्रेम से रहें, इस भाव को ये मजबूत करता है। और ऐसा इसका संदेश है कि जो पहले हुआ है, आगे वो त्रासदी कभी दोहराई ना जाए। सही बात है कि किसी शायर ने भी कहा है कि 7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। और जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, तो जब हम सावन की तरफ बढ़ते हैं, सावन को भी मोहब्बत का महीना, प्रेम का महीना कहा जाता है। लेकिन ये जो बरसात है, ये भी कहीं ना कहीं हम सब के अंदर कुछ ना कुछ उत्साह भरती है, कुछ ना कुछ निर्मल करती है, और हमारे अंदर एक ऊर्जा का, एक प्रेम का संचार करती है। तो जब मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ सावन को बरसते हुए, तो मेरे मन में आता है कि मैं आपको ये प्यारा सा गीत सुनवाऊँ।

दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत अभी आप सुन रहे थे बंधन फिल्म से, आवाज थी महेंद्र कपूर की। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भाई क्या कभी आप बरसात में फिसल कर गिरे हैं जब छोटे बच्चे थे बचपन में, तो और आपको अच्छा लगा हो कि भाई अच्छा हुआ मैं गिर गया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम भीगने का मन होता है लेकिन हमारे मम्मी पापा या बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं भीगना है, तो अगर हम बरसात में गिर गए तो यही होता है ना कि चलो हमारे मन का हो गया। तो हमारा प्रश्न ये था, तो हमारे बहुत से जो श्रोता हैं उन्होंने हमें लिख कर भेजा है उत्तर। तो सबसे पहले एक बहुत प्यारा सा ईमेल आया है हरेंद्र कुमार त्यागी का। ये लिखते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व की घटना है, मेरे घर से दुकान तक जाना पड़ता था, रास्ता कच्चा था, तो मैं बड़ा सुंदर सा वाइट कलर का शर्ट और पैंट पहन के निकला छाता लेकर। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब दुकान के पास पहुँचा तो मेरा पैर फिसल गया और मैं उस कीचड़ में गिर गया। पहले तो थोड़ी देर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद मैं खुद ही बहुत ज़ोर से हंसने लग गया क्योंकि मुझे चोट नहीं आई थी और मैं उस बरसात में खुशी खुशी एंजॉय करना चाहता था। और ये देखकर जो मेरे दोस्त हैं वो भी बड़े खुश हुए और हंसने लगे। इसके अलावा नवीन भाटिया जी लिखते हैं कि जब अमृतसर गुरुद्वारा साहब गए थे तो वहाँ पर काफ़ी साल पहले अपने परिवार के साथ सरोवर साहब के सामने मेरा पैर फिसल गया था, लेकिन मुझे चोट नहीं आई थी पर मुझे वहाँ पर फिसल के अच्छा लगा था। ऐसे ही अफरोज़ शेख जी लिखती हैं कि भाई बरसात में कई बार गिरने से मुझे चोट लगती थी और इसके लिए मुझे दादी से मार खानी पड़ती थी, वो अब दुनिया में नहीं है, आज मैं जो भी हूँ दादी की वजह से हूँ। बहुत ही अच्छी आपने बात लिखी है कि हम अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं कि कभी उन्होंने हमें किसी बात के लिए कुछ कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी वास हिसार से राजू अग्रवाल और विवेक प्रियांशी बारिश के मौसम में तालाब के पानी को हथेली से मिट्टी के रैंप पर उछालते थे और उस पर पैर फिसलाते थे, आज बुढ़ापे में फिसलने से बचते हैं। भाई फिसलने के लिए तो वही उम्र सही होती है, अब तो ऐसी उम्र है कि अब हम नहीं फिसल सकते। तो अभी नवीन कुमार जी का भी देखिए एक ईमेल आया है, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है कि बचपन में ऐसा होता था कि बारिश के पानी में कागज़ की नाव चलाने के चक्कर में फिसल कर गिर पड़ा, कपड़े पूरे भीग गए और सब दोस्त हंसने लगे, लेकिन उसी बारिश की वजह से स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर हम सब ने पूरे दिन बारिश में खेला, उस दिन गिरने की चोट से ज़्यादा छुट्टी मिलने की खुशी यादगार बन गई, क्या कहने। ऐसे ही कुछ मेरे भी अनुभव हैं। और ऐसे ही राधा शुक्ला लिखती हैं कि बारिश में भीगने तो पर मतलब भीगे हैं लेकिन हम कभी फिसले नहीं। बचपन में जब भी बारिश होती थी मैं हमेशा भीगती थी और मेरी बहन हमेशा डांटती थी कि बीमार हो जाओगी, बुखार आ जाएगा, इसलिए अपना ध्यान रखो, लेकिन मैं मानती नहीं थी। ऐसे ही एक और ईमेल हमारे पास आया है गरिमा गोयल जी का, वो लिखती हैं कि बारिश में जब मैं सब्ज़ी लेने निकली थी रास्ते में पैर फिसला और मैं गिर गई, तभी मेरे हाथ से छाता उड़ गया और पीछे चल रहे मेरे पति उसे पकड़ने के लिए भागे, उन्हें भागते देखकर मैं अपनी चोट भूल गई और हम दोनों हंसते हंसते घर लौटे। आज

बरसाती किस्सा याद आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या बात है दोस्तों, आपके पास तो बारिश के बहुत सारे किस्से हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे इतने अच्छे कि सुनकर मुझे आनंद आ रहा है। तो आपने जो अपने ईमेल से, अपने अनुभवों से, अपने ये गिरने वाले जो हमारे साथ प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं, तो उनको सुनने के बाद मुझे एक बहुत ही मज़ेदार सा गीत याद आ रहा है। तो मैं आपको वो गीत सुनवा देती हूँ। आप सुनिए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, क्या बेहतरीन गीत था और बहुत ही आनंद आया गीत सुन के। लेकिन दोस्तों देखिए, बरसात का जो मौसम है वो आता है तो इतना सुहाना भी नहीं लगता है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन अगर आप सजग हैं, अगर आपने तैयारी अपनी पूरी कर रखी है, तो आप बिल्कुल एंजॉय कर पाएंगे। तो देखो, बारिश का मौसम जो है देखने में तो सुहाना है, लेकिन अपने साथ कई तरह की बीमारियों और समस्याएं भी साथ लेकर आता है। मानसून के दौरान होते हैं रास्ते जाम, और कभी कभी कीड़े मकोड़े भी रेंगते हुए आपसे टकरा जाते हैं। तो जो व्यक्ति है, कई बार वो बेमौसम की बारिश में भीग भी जाता है, कई बार ही जूतों में पानी भरने के साथ कीचड़ में फिसलने का भी डर बना रहता है। यही वजह है कि इस मौसम में अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए डॉक्टर भी लोगों को कई चीज़ों का खास ख्याल रखने की सलाह देते हैं। ऐसे में अगर आपके लिए बारिश में घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, तो आपको कुछ बातें करनी चाहिए। जैसे कि बारिश के मौसम में ऐसे फैब्रिक के कपड़े पहनने चाहिए जो गीले होने पर जल्दी सूख जाते हों। सबसे बेस्ट रहते हैं सिंथेटिक कपड़े, क्योंकि ये जितनी जल्दी भीगते हैं ना, उतनी जल्दी ये सूखते भी हैं। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, हमेशा एक प्लास्टिक बैग जरूर रखें अपने पर्स के अंदर, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है भाई बरसात के मौसम में। और आज तो इस समय तो सावन है, तो बाहर का कुछ भी अगर आपको खाना पीना है तो उससे कोशिश कीजिए कि नहीं खाएं पिए।

वो पाने के लिए आपको मौसम ऐप्स का भी प्रयोग करना है। इससे होगा क्या कि बारिश में ट्रैफिक और सड़कों की जो स्थिति है वो ख़राब होती है, तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि भाई बारिश आज होने वाली है, संभावना है, तो आप उस तैयारी के साथ निकलेंगे, तो इस आप थोड़ा सा अतिरिक्त समय लेकर भी निकलेंगे। तो इसलिए जब भी आप बरसात के मौसम में बाहर निकलने वाले हो ना, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और याद रखिएगा, मेरी इन बातों को अपने मन में दोहराते रहिएगा, तो इससे क्या होगा कि आप बहुत बड़ी बड़ी जो परेशानियां होने वाली होंगी उनसे आसानी से छूट जाएंगे। तो भाई देखो, और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, छाता की बात तो मैंने की ही नहीं, तो आपको छतरी लेकर ही निकलना है। छतरी लेकर जाएंगे तो बरसात के मौसम में बारिश से आप बचे रहेंगे।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आपने सुना दो झूठ फिल्म से, जिसे गाया किशोर कुमार और उषा मंगेशकर ने, तो उनकी आवाज़ में आपने बेहतरीन सा गीत सुना। और देखिए, बरसात की बात तो हम करते रहते हैं, लेकिन अभी मुझे एक प्यारा सा दोहा याद आ रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि छोटा हूँ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख। और अब बात एक ऐसी छोटी सी घास की, जिसे हम कभी मतलब ध्यान ही नहीं देते कि भाई ये इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक साधारण सी घास भी खूबसूरत सा हस्तशिल्प का रूप ले सकती है। तो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो मूंज शिल्प हैं, इसका जो बेहतरीन उदाहरण है वो प्रस्तुत करता है। मूंज यानी मूंज से ही बनता है। तो प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती के जो कारीगर हैं, वो पीढ़ियों से मूंज की बनाई कर रहे हैं, मूंज की बुनाई कर रहे हैं और उसी कला को संजोए हुए हैं। उनके हाथों से बनी हर वस्तु मेहनत, धैर्य और पारंपरिक हुनर की कहानी कहती है। आज जैसे हम सोचते हैं कि भाई अब हमारे किस काम आ सकता है मूंज, तो मैं बताती हूँ कि भाई मूंज से बनी जो टोकरियाँ हैं, जो चटाइयाँ हैं, इसके अलावा डस्टबिन है, लॉन्ड्री बास्केट है।

और सब्जी रखने की जो टोकरी है, ट्रे, स्टोरेज बॉक्स, पेन स्टैंड, फूलदान, प्लांटर कवर, पूजा की टोकरी और सजावटी जो वस्तुएं हैं वो हम अपने घरों में उपयोग कर सकते हैं। ये उत्पाद न सिर्फ सुंदर हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ भी हैं, तो क्यों ना अभी से प्लास्टिक की जगह मूंज से बने हस्त निर्मित उत्पाद अपनाए जाएं। इससे हमारा घर भी सजेगा, पर्यावरण भी बचेगा और जो स्थानीय कारीगरों के जीवन में खुशियां भी आएंगी तो उससे हमें भी खुशी मिलेगी और हम वोकल फॉर लोकल की ओर भी बढ़ेंगे एक कदम। साथ ही जो मूंज शिल्प जैसी हमारी अनमोल विरासत है उसको आगे बढ़ाने में हम भी अपना थोड़ा सा योगदान दे पाएंगे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वस्तुएं हैं, ये जो मूंज के उत्पाद हैं, इनको सिर्फ किताबों में ना पढ़ते रह जाएं बल्कि अपनी आँखों से उन्हें देख भी पाएं।

दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे पिघलता आसमां फिल्म से, जिसे गाया किशोर कुमार और अलका याग्निक ने। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अब आपको एक शेर फिर से सुनाती हूँ कि सफ़र पर जब रहूँ तो याद वो अक्सर ही आती है, कि सफ़र पर जब रहूँ तो याद वो अक्सर ही आती है, मैं जब जब घर को जाता हूँ दीवारें मुस्कुराती हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ घर ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पहुँचते ही सारी थकान गायब हो जाती है। ऐसा घर महंगे फर्नीचर या बड़ी इमारत से नहीं बनता, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के व्यवहार से बनता है। घर में अगर मुस्कुरा कर स्वागत हो, एक दूसरे की बातें सुनी जाएँ, छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ कर दी जाएँ और साथ में बैठने का समय निकाला जाए, तो वही घर दिल का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन जाया करता है। दिन भर

भाग दौड़ के बाद जब भी दरवाज़ा खुले तो बिखरे हुए खिलौने ये बता दें कि भाई घर में बचपन अभी भी जिंदा है। रसोई से आती खुशबू कहे कि हाय तुम्हारा ही तो इंतज़ार था। कमरा चमचमाता हो लेकिन उससे भी ज़्यादा रिश्ते सजे हुए हों। बच्चों की हंसी दीवारों से टकरा कर गूंजती हो और बड़ों की जो दुआएँ हैं वो आंगन में ठहरती हों और कोई अपना बस इतना पूछ ले कि थक गए होंगे ना। याद रखिए घर की पहचान उसकी कीमत से नहीं उसके एहसास से होती है। तो सब मिलकर कोशिश कीजिए कि घर ऐसा हो जहाँ से निकलते समय लोग मुस्कुराए और लौटते समय दिल कहे कि चलो ना घर की ओर चलते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे जीवन मृत्यु फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। और देखिए, हमारे श्रोताओं ने हमें ईमेल किया है, जो मैंने प्रश्न पूछा था शुरुआत में कि भाई अगर आप बरसात में कभी फिसल कर गिरे हैं और आपको अफसोस नहीं बल्कि खुशी हुई हो, तो हमें अपना कोई ऐसा अनुभव लिख कर भेजिए। तो हमें सुदर्शन मुखी जी ने भी लिखा है कि भाई वो बारिश में गिरे तो हैं लेकिन उनको थोड़ी सी चोट आई थी, पर वो कोई बात नहीं, बरसात में घूम जब बच्चे थे तो बरसात में जब वो घूमे थे तो उनको गिरने से चोट से ज़्यादा उनको बारिश में भीगने का आनंद आया था। ऐसे ही हमारे साथ गौरी शंकर वर्मा जी जुड़े हुए हैं, वो लिखते हैं, कल्पना बेटा राम राम, राम राम आपको। तो कहते हैं, मेरी शादी को 6 महीने हुए थे, स्कूटर मेरा ख़राब हो गया था, मैं अपनी घरवाली को साइकिल पर फिल्म दिखाने ले गया और बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल सिनेमा हॉल पर जाकर ही हम दोनों फिसल गए। चोट तो ज़्यादा नहीं लगी लेकिन ये सोचकर आज भी बहुत हंसी आती है। उस फिल्म का नाम था हादसा, जो मुझे आज भी याद है। सही बात है, आप हादसा फिल्म देखने गए और आपके साथ गिरने का ये वाला मज़ेदार हादसा हो गया। तो चलिए, ये ईमेल वाली बातें तो होती रहेंगी, हमारे अन्य श्रोता भी हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldga@gmail.com पर। और अब बरसात की बात हो रही है तो एक ज़रूरी बात आपको बताती हूँ कि भाई जब बरसात होती है तो बारिश की हर बूंद सिर्फ धरती को नहीं हमारे भविष्य को भी सींचती है, इसलिए वर्षा ऋतु जल संरक्षण का, जल संचय करने का सबसे अच्छा समय है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार कहा है कि पानी बचाना केवल सरकार की नहीं हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने राजस्थान के अलवर में जोहड़ों के पुनर्जीवन, महाराष्ट्र के जलगांव के जल संरक्षण अभियान और देश भर में तालाबों की सफाई व वर्षा जल संचयन जैसे प्रयासों की खूब खूब सराहना की है। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सूखी धरती फिर से मुस्कुराने लगती है। तो आइए इस बरसात हम भी एक छोटा सा संकल्प लें, छत का वर्षा जल सहेजें, रिचार्ज पिट बनवाएं, तालाबों और कुओं की सफाई में सहयोग करें और पानी की एक एक बूंद की कद्र करें। याद रखिए, बारिश का पानी अगर आज बचा लिया तो कल पानी की कमी से बहुत हद तक बचा जा सकता है।
1: झूमता माँ

उजाला फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में। और श्रोताओं, चलिए बात करते हैं कुछ महिलाओं की। भाई भारत जो है वो त्योहारों का देश है और महिलाएं स्वभाव से ही उत्सवधर्मी होती हैं। ऐसे में उनका हर दिन खास और महीने के साथ उनकी एक कहानी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन महीना उनके लिए क्यों खास है? तो चलिए आपको गाँव की तरफ ले चलते हैं, पुराने समय में ले चलते हैं। और अभी भी ऐसे बहुत से गाँव हैं जहाँ महिलाएं साल भर खेती के कामों में व्यस्त रहती हैं। बरसात में उनके काम का जो स्वरूप है ना, वो थोड़ा सा बदल जाता है और उन्हें कुछ समय अपने लिए भी मिल जाता है। तो सब साथ बैठकर एक दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाया करती हैं, और वो प्राकृतिक मेहंदी जिसके पत्ते पीस कर सब लगाया करती हैं, उसका रंग अलग ही चढ़ता था। तो हमारे गांव में तो जब अंधेरा हो जाता था तब घर की जो बहुएं हैं वो अच्छे से श्रृंगार करके पड़ोस वाली चाची के घर के सामने नीम के पेड़ पर पड़े झूले झूलने जाती थी और बड़े प्यारे प्यारे सावन के कजरी गीत गाया करती थी। तब पड़ोस के जो चाचा ताऊ होते थे वो उनकी सुरीली तान सुनकर पूछते थे कि भाई ये किसकी बहू गा रही है। गीत भी ऐसे कि जो बातें मन में रह जाती थीं वो गीत के माध्यम से बाहर आ जाया करती थीं। यानी सावन केवल त्योहारों का नहीं बल्कि महिलाओं की अभिव्यक्ति, उनकी आवाज़, उनके अपने समय और उनके उत्सव का महीना भी होता था। शायद इसलिए भी सावन के आने के साथ प्रकृति ही नहीं महिलाओं का मन भी उल्लास से भर उठा करता था। तो आप ऐसे ही उल्लास से भरे रहिए, और इस उल्लास को दुगना करने के लिए मैं आपको एक खूबसूरत सा गीत भी सुनवा देती हूँ।

दोस्तों, अभी ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे नमक हलाल फिल्म से, जिसे गाया आशा भोंसले और किशोर कुमार ने। और देखिए, हमारे पास एक ईमेल और आ गया है बबली सिंह का। वो लिखती है कि एक बार स्कूल में फिसल के गिरे थे, क्लास 5 में थे उस टाइम। जबकि बात है, गिरने पे मज़ा इसलिए आया था क्योंकि फिर स्कूल से छुट्टी मिल गई थी तुरंत ही। तो यही होता है कि भाई, स्कूल जाते टाइम अगर आप गिर जाओ तो फिर आपको छुट्टी तो मिल ही जाती है। और ऐसे ही एक मेल आया है राजेश्वर राव जी का। वो भी कहते हैं कि भाई, कार्यक्रम अच्छा चल रहा है और बारिश के बहुत अच्छे अच्छे गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आपको बारिश का एक और गीत सुना देते हैं इसी बात पे।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत छलिया फिल्म से आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज़ में। और इस गीत के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना को आज के गरागन के इस अंक से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना

0: चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में 6ठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। द लोकसभा हैज बीन adjourned till 2 PM following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the House met at 11 AM, the lower house paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Loksabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
2: आज से 81 वर्ष पूर्व
3: 81 years ago in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan on 6th and 9th August 1945 atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
2: अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on the issue. The Speaker said question hour is an important part of the proceedings, which provides every member an opportunity to raise issues. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 PM. The Rajya Sabha has been adjourned until 2:15 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the question hour amid opposition uproar. Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat replied to a question related to tourism infrastructure in mountains and borders. He said his ministry has advised states to develop a coordinated grid system to ensure adequate medical preparedness, necessary precautions and timely evacuation facilities in case of emergencies. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal replied to a question related to posts and vacancies in courts. During the question hour, the opposition members continued with their sloganeering. As the pandemonium continued, the chairman adjourned the House till 2:15 p.m. BJP MP and chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology, Nishikant Dubey, has termed Meta CEO Mark Zuckerberg's apology a victory for India's laws, constitution and parliament. Talking to reporters at Parliament premises, he said it demonstrates that anyone wishing to do business in India must abide by Indian law.
4: This is a victory for India's laws, constitution and parliament. It demonstrates the strength of the Prime Minister who leads 140 crore people that anyone wishing to do business in India must abide by the Indian law.
1: The Supreme Court today refused to further relax the bail conditions of Ashish Mishra, the prime accused in the 2021 Lakhimpur Kheri violence case. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Jaimala Bagchi and V. Mohana dismissed Mishra's application seeking relaxation of his bail conditions. The counsel for Mishra said due to the existing restrictions, he is unable to attend family functions, including his daughter's birthday celebrations. The CJI dismissed the application, saying there is no ground to entertain this prayer at this stage. The violence occurred on the 3rd of October 2021 in the Kunia village of Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri district, where 8 people, including 4 farmers, were killed. BRICS Waves Bazaar, a premier international marketplace for the creative economy, kicked off in Mumbai today. The event brings together over 500 delegates from BRICS member and partner countries. Maharashtra Cultural Affairs Minister Ashish Shelar, Secretary of the Ministry of Information and Broadcasting Chanchal Kumar and others inaugurated the two-day program. Flood conditions in Odisha continue to improve as water levels in all major rivers, including the Mahanadi, have receded. However, fresh heavy rainfall has caused widespread waterlogging in Bhubaneswar. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. And with that, we end this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी क्लासिक फिल्म की ओर जो अपने नाम की तरह ही सचमुच अनोखी है। जी हाँ साथियों, वर्ष 1968 में आई फिल्म अनोखी रात अपने संवेदनशील कथानक, शानदार अभिनय, मधुर संगीत और यादगार गीतों के लिए आज भी हम सभी के दिलों में मौजूद है। दोस्तों, फिल्म अनोखी रात का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक आसित सेन ने किया था। निर्माता थे LB लक्ष्मण। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी संजीव कुमार, जाहिदा, तरुण बोस, अरुणा ईरानी, परीक्षित साहनी, मुकरी और केस्टो मुखर्जी ने। दोस्तों, संगीत दिया था महान संगीतकार रोशन ने, जबकि फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सलील चौधरी ने तैयार किया था।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, बात करें इस फिल्म के कलाकारों की तो संजीव कुमार ने इस फिल्म में बहुत ही दमदार अदाकारी की। इस फिल्म में संजीव कुमार ने बलदेव सिंह का किरदार निभाया था। साथियों, उस समय संजीव कुमार अपने अभिनय के लिए बहुत ही फेमस थे। उन्होंने अपने अभिनय को लेकर एक अलग पहचान बना ली थी। वे हर भूमिका को बेहद सहजता से निभाते थे। और दोस्तों, अनोखी रात में भी उनका अभिनय दर्शकों और समीक्षकों दोनों को बहुत ही पसंद आया था। बात करें जाहिदा की तो फिल्म की नायिका जाहिदा ने रमा और गोपा की दोहरी छवि वाले किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया था। और साथियों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जाहिदा ने कई अच्छी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वह

साथियों, परीक्षित साहनी की शुरुआती फिल्मों में से ये फिल्म एक थी। शूटिंग के दौरान उनकी और संजीव कुमार की एक बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि संजीव कुमार ने उन्हें फिल्मों के लिए अपना नाम बदलकर अजय साहनी रखने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर अपना मूल नाम परीक्षित साहनी ही अपना लिया था। दोस्तों, इस फिल्म के जो संगीत है वो रोशन साहब का अंतिम कृतियों में माना जाता है, लेकिन फिल्म के सभी गीत अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं और इसी वजह से इस फिल्म के गीत आज भी हम सभी के दिल में जिंदा हैं और हम सभी के द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं।

दोस्तों, बात करें इस फिल्म के निर्देशक असित सेन की, तो असित सेन का नाम आते ही संवेदनशील फिल्मों की याद आती है। उन्होंने हमेशा ऐसी कहानियां चुनी जिनमें भावनाएं प्रमुख होती थीं। दोस्तों, उनकी फिल्मों के पात्र साधारण होते थे, लेकिन उनकी जो परिस्थितियां होती थीं वो असाधारण होती थीं। बात करें अनोखी रात में इस फिल्म की, उन्होंने पूरी कहानी को बिना अनावश्यक भव्यता के केवल अभिनय और वातावरण के सहारे एक यादगार फिल्म बना दी। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि जो परीक्षित साहनी थे, उनकी ये शुरुआती फिल्मों में से एक थी। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात से होती है, अंधेरा, सन्नाटा और अनजाने रास्ते। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे लोग जिनका एक दूसरे से कोई परिचय नहीं, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही जगह ला खड़ा कर देती है। धीरे धीरे दर्शक समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई दर्द छुपाए हुए है। कोई अपने अतीत से भाग रहा है, कोई प्रेम की तलाश में है, तो कोई अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला है। यहीं से शुरू होती है अनोखी रात की असली यात्रा।

दोस्तों, संजीव कुमार जो थे वे अभिनय को केवल एक पेशा नहीं मानते थे, बल्कि साधना मानते थे। कहा जाता है कि किसी भी सीन की शूटिंग से पहले वे लंबे समय तक अपने किरदार के मनोविज्ञान पर विचार करते थे। यही कारण था साथियों कि उनके अभिनय में एक शालीनता दिखाई देती थी। अनोखी रात में भी उन्होंने अपने सहज अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में तो बात होती रहेगी, आप बात कर लेते हैं हम अपने श्रोताओं की, जो हमें संदेश भी भेज रहे हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। तो हमारे पास जो पहला संदेश आया है वो आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। PS नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, नारायण इंगले, सोपान ताइडे का। और जो अगला संदेश है हमारे पास वो आया है गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी का। ये लिखते हैं, एक ही फिल्म से आज हम अनोखी रात की कहानी सुन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि इन्हें ये बहुत ही अच्छी लग रही है, और जो हम इस फिल्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो भी इन्हें बहुत पसंद आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा जी का। अगला संदेश है मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का। और जो अगला संदेश आया है हमारे पास वो आया है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का। अगला जो संदेश आया है वो देखिए हम शामिल कर चुके हैं। और इसके बाद जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है पीपरिया से, कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता जी का। अगला जो संदेश है हमारे पास वो आया है वड़िंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा जी।

0: दोस्तों, यह पूरी फिल्म की कहानी केवल एक रात में घटती है। उस दौर में यह शैली बहुत अलग और साहसिक मानी गई थी। दोस्तों, संजीव कुमार, अरुणा ईरानी, तरुण बोस, मुकरी और कैस्टो मुखर्जी जैसे कलाकारों ने छोटे छोटे किरदारों को भी बहुत ही अच्छी तरह निभाया और उनको जीवंत बना दिया। बात करें दोस्तों फिल्म की, तो ये फिल्म श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट होने के बावजूद फिल्म बहुत ही प्रभावशाली रही। संवाद बहुत सरल लेकिन अर्थपूर्ण थे। बैकग्राउंड संगीत कहानी का भाव और भी गहरा बना देता है। यह फिल्म मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश भी हमें देती है। दोस्तों, फिल्म का निर्माण उस दौर में हुआ जब सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों को विशेष सम्मान मिलता था। फिल्म में जो गीत है, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, की धुन के बारे में बाद के वर्षों में संगीत प्रेमियों के बीच यह चर्चा भी रही कि उसका संबंध एक पुराने गीत से जोड़ा गया है। दोस्तों, यदि आपको अभिनय प्रधान फिल्में, अर्थपूर्ण कहानियां और सदाबहार संगीत पसंद आते हैं तो अनोखी रात आपने अवश्य देखी होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो आपको अवश्य देखनी चाहिए। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और हंसते रहना है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है समाचारों का। पहले आप पंजाबी में समाचार सुनेंगे, कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दीआं खास खबरां। नीट समेत वख वख मुद्दयां ते विरोधी धिर वलों कीते गए हंगामे कारण संसद दे दोवां सदनां दी कारवाई विच अज वार वार विघन पिआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज नवीं दिल्ली च रक्षा मंत्रालय लई संसदी सलाहकार कमेटी दी इक मीटिंग दी प्रधानगी कीती। नवीं ते नवियाउणयोग ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तों 50 लाख तों वध परिवारां नूं फायदा होया। मौसम विभाग ने अज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ते उत्तराखंड समेत कई सूबियां च भारी बारिश होण दी पेशीनगोई कीती। विश्व एथलैटिक अंडर 20 चैंपियनशिप च भारतीय जैवलिन थ्रोअर आशीष यादव ते टी धरणीधर अते डिस्कस थ्रो च अमानत कंबोज फाइनल दौर च पहुंचे। ते हुण खबरां विस्थार नाल। संसद दे दोवां सदनां दी कारवाई विच नीट मुद्दे ते विद्यार्थियां दे विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कारवाई समेत वख वख मुद्दयां उते विरोधी धर वलों कीते गए हंगामे कारण वार वार विघन पिआ। अज सवेरे सदन दी मीटिंग शुरू होण ते लोक सभा ने हिरोशिमा ते नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भेंट की। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अज जापान के हिरोशिमा ते नागासाकी ते होए दुखदाई परमाणु हमलों 81 साल हो गए ने। उन्होंने कहा,
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: परमाणु हमलों के पीड़ितों की याद में सदन च मौन भी रखा गया। बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की थी, पर विरोधी धिर के मैंबर ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। ओ इस मुद्दे से गृहमंत्री अमित शाह तो बयान की मांग कर रहे सन। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हरेक मैंबर नूं मुद्दे उठाने का मौका प्रदान करता है। श्री बिरला ने कहा कि संसद चर्चा सवाल पूछने विचारां दे अर्थपूर्ण आदान प्रदान लई है, पर लगातार हंगामे कारण सदन की कार्रवाई नूं दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करना पिया।

0: ते राष्ट्रीय हित प्रति अटुट समर्पण नाल सुषमा स्वराज दे भारतीय राजनीति च एक विलखण स्थान प्राप्त कीता है। उत्तर प्रदेश दे बलिया जिले दे रास्त्रा तों बहुजन समाज पार्टी दे विधायक उमा शंकर सिंह दा कल देहांत हो गया। ओ 55 साल दे सन ते नवी दिल्ली दे एक निजी हस्पताल च दिमाग दे ट्यूमर दा इलाज करवा रहे सन। उमा शंकर सिंह 403 मैंबरी उत्तर प्रदेश विधानसभा च बसपा दे इकलौते विधायक सन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश तों बहुजन समाज पार्टी दे विधायक उमा शंकर सिंह दे देहांत ते दुख दा इजहार कीता है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राजस्थान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बिहार ते होरना कई सूबियां च अज भारी बारिश होने बारे पेशीनगोई की थी। इस दौरान पंजाब के जलंधर ते मोहाली समेत होरना कई थावां ते बदलवाई बनी हुई है ते मीह भी पिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे के कुछ हिस्सों च लगातार मीह पैण की चेतावनी के मद्देनजर संबंधित विभागों नूं हाई अलर्ट ते रहण दे निर्देश दिते ने। अमरीका विच विश्व अथलैटिक अंडर 20 चैंपियनशिप भारतीय जैवलिन थ्रोअर आशीष यादव ते टी धरनीधर अते डिस्कस थ्रो च अमानत कंबोज फाइनल दौर विच पहुंच गए ने। ते आखिर च खास खबरां एक बार फिर तो नीट समेत वक्त मुद्दे विरोधी धर वलों किए गए हंगामे कारण संसद के दोवे सदन की कार्रवाई विच अज वार वार विघन पिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज नवी दिल्ली च रक्षा मंत्रालय लई संसदीय सलाहकार कमेटी की एक मीटिंग की प्रधानगी की। नवी ते नवीआउण योग ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो 50 लाख तो वध परिवारां नूं फायदा होया। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते उत्तराखंड समेत कई सूबियां विच भारी बारिश होने की पेशीनगोई की थी। विश्व अथलैटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप च भारतीय जैवलिन थ्रोअर आशीष यादव अते टी धरनीधर ते डिस्कस थ्रो च अमानत कंबोज फाइनल दौर विच पहुंच गए ने। इस दे नाल ही राष्ट्र खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। बहुत से मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के मामले में मुजरिम करार दिया है। आज उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। हॉकी इंडिया ने AHF एशिया कप 2026 के लिए 18 अरकान पर मुश्तमिल खवातीन की जूनियर टीम का ऐलान किया है, जो इस महीने की 30 तारीख से चीन के शहर मौकी में शुरू होगा। और भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरनीधरन और डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमानत कंबोज 20 साल तक की उम्र के आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी बम के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए जाने के सानहे को 81 साल हो गए हैं।
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: ऐवान में हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी बम के मुतासरीन की याद में खामोशी भी इख्तियार की गई। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया।

0: चंद के अरकान इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। स्पीकर मौसूफ ने कहा कि वक्फे सवाल ऐवान की कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है जो हर मेंबर को मामलात उठाने का मौका फराहम करता है। जनाब बिरला ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट बहस करने, सवालात उठाने और नजरियात के बामाने तबादले के लिए है। शोरगुल जारी रहा तो लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नज़र दोपहर 2:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो सदर नशीं सीपी राधाकृष्णन ने शोरगुल के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने अपनी नारेबाजी जारी रखी। शोर शराबा जारी रहा तो सदर नशी ने कार्रवाई 2:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और मौसलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय कवानीन आईन और पार्लियामेंट की जीत करार दिया है। पार्लियामेंट के अहाते में नवानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे वजीर आजम की ताकत का इजहार होता है जो 140 करोड़ लोगों की क्यादत करते हैं और इससे ये बात भी जाहिर होती है कि भारत के साथ जो कोई भी कारोबार करने का ख्वाहिशमंद है उसे भारतीय कानून की पाबंदी करनी होगी।
1: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की यह ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के एक मामले में कसूरवार गर्दाना है जिसका ताल्लुक उसकी एक साबिक जूनियर साथी से है। बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसनदेकर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने तेजपाल को ताजिरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार गर्दाना है। अदालत ने कि वो आज तीसरे पहर सजा सुनाएगी। समाज के दौरान तेजपाल ने कहा कि वो सियासत का शिकार हुआ है और 2 लड़कियों का बाप है, लिहाजा उसके साथ नरमी बरती जाए। गोवा सरकार की तरफ से पेश होने वाले वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से इस्तदा की कि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए ताकि एक मजबूत पैगाम जा सके। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तेजपाल की साबिक जूनियर साथी ने नवंबर 2013 में एक होटल के एलिवेटर में जिंसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था। 2021 में जेली अदालत ने उसे बरी कर दिया था लेकिन गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड, झारखंड, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुल्क के शुमाल मशरक के हिस्सों और अंडमान निकोबार जजायर में भी शदीद बारिश का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए आईएमडी के सीनियर साइंसदान अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि कौमी राजधानी में कल तक औसत से शदीद बारिश हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पूरे हफ्ते यहां हल्की बारिश का इम्कान है। उड़ीसा में महानदी समेत बड़े दरियाओं में सतेआब में कमी आने के सबब सैलाब की सूरतहाल बदस्तूर बेहतर हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: उड़ीसा में महानदी समेत सभी बड़े दरियाओं में पानी की सतह कम होने से सैलाब की सूरत हाल रफ्तार रफ्तार बेहतर हो रही है। इस वक्त हीराकुंड बांध के 8 गेट खुले हैं ताकि उसके पानी की सतह को कंट्रोल किया जा सके। सतही आब में कमी के बावजूद सैलाब से मुतासिरा अफराद की मुश्किलात बरकरार है और जिंदगी के मामूलात की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। इस दौरान कल रात से शदीद बारिश जारी रहने से राजधानी भुवनेश्वर में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केओंझर और मयूरभंज अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और बकिया जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल 20 अजला में बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।

0: जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बिला रुकावट जारी है और अब तक मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के शुरू होने के बाद से 4,70,000 से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दाखिला ने मोहतरमा सुषमा स्वराज को शाइस्तगी और सादगी की मिसाल करार दिया। जनाब शाह ने कहा कि उन्होंने तंजीम से लेकर हुकूमत तक अपनी सभी फराइज नज्म जब्त वक़ार और पुख्ता आज़म के साथ अंजाम दिए। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन के मौकी में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 रुकनी खवातीन की भारतीय जूनियर टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 18 खिलाड़ी हैं जिसकी क्यादत मिडफील्डर खैदम शिलेइमा चानू करेंगी। भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ियों आशीष यादव और टी धरणीधरन ने अमेरिका के शहर यूजीन में जारी 20 साल तक के उम्र के खिलाड़ियों की आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके अलावा डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमानत कंबोज ने हतमी मरहले में पहुंच गए हैं। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बहुत से मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के मामले में मुजरिम करार दिया है। आज उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। हॉकी इंडिया ने AHF एशिया कप 2026 के लिए 18 अरकान पर मुश्तमिल खवातीन की जूनियर टीम का ऐलान किया है जो इस महीने की 30 तारीख से चीन के शहर मौकी में शुरू होगा। और भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमानत कंबोज 20 साल तक की उम्र के आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Lok Sabha adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha also adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehelka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Moshi, China from August 30th. And three javelin throwers Ashish Yadav, T. Dharanidharan and Amanat Kamboj storm into finals at World Athletics Under 20 Championships. The Rajya Sabha has been adjourned till 2:15 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up question hour amid opposition uproar. Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat replied to a question related to tourism infrastructure in mountains and borders. He said the centre has advised states to strengthen health and safety mechanisms at all major adventure tourism destinations. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal replied to a question related to posts and vacancies in courts. During the question hour, the opposition members continued with their sloganeering. As the pandemonium continued, the chairman adjourned the House till 2:15 p.m. Earlier, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the Lok Sabha paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. The Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.

0: After logging in Bhubaneswar, relief and restoration work is continuing in the flood-affected districts, even as authorities remain on high alert. We have more from our Odisha correspondent.
1: At present, 8 sluice gates of the Hirakud Dam remain open to regulate the reservoir level. Even as water levels fall, the hardships of flood-affected people continue, with restoration of normal life still a major challenge. Meanwhile, continuous heavy rain since last night has disrupted normal life in the capital city, Bhubaneswar. Several roads and low-lying areas in the city remain waterlogged, with rainwater entering many houses and damaging household belongings. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall in Keonjhar and Mayurbhanj districts today and a yellow alert for the remaining districts. Rainfall alerts have also been issued for 20 districts tomorrow, though rainfall activity is expected to decrease over southern and western Odisha. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: On to sports, Indian javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, secured places in the final rounds of their respective events at the World Athletics Under 20 Championships in Eugene in the USA. The finals will be played on Sunday. Hockey India today announced the 18-member Indian junior women's team for the AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China, from August the 30th to September the 13th. The squad comprises 18 players along with two alternate players and will be led by midfielder Khaidem Shlema Chanu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha resumes proceedings amid opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehalka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August 30th. Javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, storm into finals of World Athletics Under 20 Championships. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Aakashvani se dopahar samachar ke saath main Nikhil Kumar. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
3: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
2: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक 15 मिनट तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
4: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
2: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंदा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
6: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a विकसित भारत, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम देश के लिए जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। That should be the commitment.
2: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
7: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
8: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
9: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
10: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
9: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुद बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और

0: पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। जी हाँ, कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस कलाकार के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है गुलशन कुमार मेहता, जो अपने उपनाम गुलशन बावरा से लोकप्रिय थे। ये हिंदी सिनेमा के एक जाने माने गीतकार और अभिनेता थे। 42 वर्षों के अपने करियर में उन्होंने लगभग 240 गीतों की रचना की और एक चरित्र अभिनेता के रूप में उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया। गुलशन बावरा जी ने कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन और RD बर्मन जैसे प्रख्यात संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। तो चलिए श्रोताओं, बातें तो और भी होंगी, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, गुलशन बावरा जी को एक ऐसे गीतकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने भावपूर्ण गीतों से लगभग 3 दशक तक श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया। हिंदी भाषा और साहित्य के करिश्माई व्यक्तित्व वाले गुलशन कुमार मेहता उर्फ गुलशन बावरा का जन्म 12 अप्रैल 1937 में लाहौर शहर के निकट शेखपुरा अविभाजित भारत में हुआ था। देश के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में उनके माता पिता की हत्या उनके नज़रों के सामने हो गई। इसके बाद वो दिल्ली आ गए। गुलशन बावरा जी ने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि कविता लिखने में हो गई। वे फिल्मों में आना चाहते थे, पर अपने परिवार की परंपरा निभाते हुए गुलशन बावरा जी ने वर्ष 1955 में अपनी करियर की शुरुआत मुंबई में एक रेलवे क्लर्क के तौर पर किया। उनका मानना था कि सरकारी नौकरी करने से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, पर क्लर्क की नौकरी उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। कुछ समय बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और अपना ध्यान फिल्म इंडस्ट्री की ओर लगाना शुरू कर दिया।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, गुलशन बावरा जी को फिल्म इंडस्ट्री में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और कई छोटे बजट की फिल्में भी, जिनसे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इस बीच गुलशन बावरा जी की मुलाकात संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से हुई, जिनके संगीत निर्देशन में लिए गुलशन मेहता ने फिल्म सट्टा बाजार के लिए तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे गीत लिखा। लेकिन इस फिल्म के जरिए वे खास पहचान नहीं बना पाए। श्रोताओं, फिल्म सट्टा बाजार से उनके गीत को सुनकर फिल्म के वितरक शांति भाई दवे काफी खुश हुए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई व्यक्ति इस गीत को इतनी गहराई से लिख सकता है। तभी शांति भाई ने गुलशन मेहता को बावरा कहकर संबोधित किया। इसके बाद ही गुलशन मेहता जी गुलशन बावरा के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्ध हो गए। मुंबई में 8 वर्ष की परिश्रम के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में निर्माता निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में गीत लिखने का मौका दिया, जो बेहद प्रसिद्ध और हिट साबित हुआ।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि गुलशन बावरा जी ने आरडी बर्मन के साथ 150 गीत लिखे थे। उन्होंने फिल्म सनम तेरी कसम, अगर तुम ना होते, सत्ते पे सत्ता, ये वादा रहा, हाथ की सफाई आदि फिल्मों में अपने गीतों से सजाया था। गुलशन बाबरा जी को फिल्म उपकार में गीत मेरे देश की धरती और फिल्म जंजीर में गीत यारी है ईमान मेरा के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।

श्रोताओं, 7 अगस्त 2009 को गुलशन बावरा जी मुंबई में एक लंबी बीमारी के बाद हमें अलविदा कह गए, पर इनके लिखे गीत सदैव के लिए अमर हो गए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज में। जी हाँ, और आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। दोस्तों, मैटनी मेलोडीज जहाँ हर दिन हम आपको लेकर चलते हैं हिंदी सिनेमा के उस दौर में जिसकी खुशबू आज भी दिलों में बसी है। आज का हमारा सफ़र समर्पित है 1960 और 1970 के दशक पर, वह दौर जिसे हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाता था। दोस्तों, यह वह समय था जब फिल्मों की कहानियाँ दिल को छूती थी, गीत आत्मा में उतर जाते थे और कलाकार अपने अभिनय से किरदारों को अमर बना देते थे।

वाह क्या बात है दोस्तों, यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस दौर की शालीनता, रोमांस और मधुरता की पहचान है। दोस्तों 1960 का दशक कई महान कलाकारों का स्वर्णिम समय था। बात करें उस समय की तो देवानंद, जिनकी मुस्कान और अनोखा अंदाज युवाओं की पहचान बन चुका था। दूसरी ओर थे शम्मी कपूर साहब, जिनकी ऊर्जा ने रोमांस को एक नया रंग दिया। और जब बात अभिनय की आती है तो दिलीप कुमार साहब का नाम सम्मान से लिया जाता है। उन्हें यूं ही नहीं ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। वहीं राज कपूर अपनी फिल्मों के माध्यम से आम आदमी के सपनों और संघर्षों को बड़े पर्दे पर उतार रहे थे। अगर अभिनेत्रियों की बात करें साथियों, तो वहीदा रहमान की सादगी, साधना की खूबसूरती, माला सिन्हा का प्रभावशाली अभिनय और मुमताज की चुलबुली अदाएं दर्शकों के दिलों पर राज कर रही थी। लेकिन दोस्तों, अगर इस दौर की सबसे बड़ी ताकत कोई थी, तो वह इसका संगीत था।

साथियों, यह वह समय था जब फिल्मों की कहानियां दिल को छू लेती थी, गीत आत्मा में उतर जाते थे और कलाकार अपने अभिनय से किरदारों को अमर बना देते थे। उस समय तकनीक सीमित थी, लेकिन कल्पना असीम थी। ना कंप्यूटर से बनने वाले संगीत थे, फिर भी जो धुनें बनी वे आज भी हर पीढ़ी की पसंद हैं। दोस्तों, उस दौर में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती थीं: अच्छी कहानी, मधुर संगीत और दमदार अभिनय। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं ना, तब जन्म लेती थी एक ऐसी फिल्म जो सबके दिलों पर राज करती थी। और आज भी लोग उतने ही प्यार से इन फिल्मों को देखते हैं।

साथियों, है ना इतना प्यारा संगीत जो हमें बिल्कुल अपने अंदर समेट लेता है। बात करें संगीत की तो शंकर जयकिशन, ST बर्मन, मदन मोहन, रोशन, नौशाद जैसे संगीतकार ऐसी धुनें बनाते थे साथियों, जिन्हें सुनकर लगता था जैसे संगीत सीधे हमारे दिल में उतर रहा है और उनके दिल से निकल रहा है। और उन धुनों में अपनी आवाज़ का जादू भरते थे मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, मन्ना डे साहब, लता मंगेशकर और आशा भोसले। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी अपनी रिकॉर्डिंग से पहले घंटों गीत के भाव को समझते थे। वे केवल सुर नहीं गाते थे, बल्कि किरदार की भावनाओं को अपनी आवाज़ में उतार देते थे। साथियों, यही वजह है कि उनके गाए गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने कि जब उन्होंने गाए थे, और उतने ही प्यारे लगते हैं।

दोस्तों, 1960 के दशक में अधिकांश जो गाने होते थे उनकी रिकॉर्डिंग एक साथ पूरी ऑर्केस्ट्रा के साथ होती थी। यदि किसी एक वादक या गायक से भी छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो पूरा गीत फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता था। शायद यही मेहनत उन गीतों में आज भी महसूस होती है।

साथियों, उस समय के जो भी कलाकार होते थे वो अपनी किसी न किसी बात को लेकर हिट हुआ करते थे। जैसे कि राजेंद्र कुमार की बात करें तो उस समय उनका जो नाम था वो जुबली कुमार पड़ गया था, क्योंकि उनकी लगातार फिल्में सिल्वर जुबली मनाती थी। बात करें साधना की तो साधना का प्रसिद्ध साधना कट हेयर स्टाइल पूरे देश में इतना फेमस हो गया था कि सारी लड़कियां वही कट कराने के लिए उतावली थी।

साथियों, आज के मैटनी मेलोडीज में हमने 60 और 70 के दशक के उन गीतों का आनंद लिया जिन्होंने संगीत को नई पहचान दी और आज भी हर पीढ़ी के दिलों में वो संगीत जिंदा है। इसी तरह हम फिर मिलेंगे नई यादों और नए सदाबहार नगमों के साथ। तो अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। साथियों, अब समय है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

0: उर्दू मजलिस के सभी सामेईन की खिदमत में नसरीन बेगम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। सामेईन, अदब ने मुख्तलिफ तहजीबों, रिवायतों, मज़हबों से असर कबूल किया है। इन्हीं में हिंदुस्तानी असातीर भी शामिल हैं। हिंदुस्तानी असातीर से मुराद रिवायती कहानियाँ, देवमालाई किरदार, मजहब से वाबस्ता किस्से कहानियाँ हैं, जिनके किरदार अखलाकी, सकाफती और अदबी अलामतों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उर्दू फिक्शन में असातीर का इस्तेमाल मुख्तलिफ सूत्रों में हुआ है। तो आइए सामेईन, इसी सिलसिले में एक मुबाहिसा सुनते हैं। मौजू है उर्दू फिक्शन में हिंदुस्तानी असातीर। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं जनाब अबू बकर आबाद।
1: आज के मुबाहिसे का उन्वान है उर्दू फिक्शन में हिंदुस्तानी असातीर। इस मुबाहिसे में जो शुराका हजरात हैं उनका समाए ग्रामी हैं जनाब असरार गांधी साहब, प्रोफेसर मुइनुद्दीन जीना बड़े साहब, प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब और मैं अबू बकर अब्बाद। असातीर की दुनिया फिक्शन की दुनिया की तरह ही बेहद वसी, हैरतनाक, सहरंगेज़, दिलकश, पेचीदा और मतनवे है। हर मुल्क, मज़हब और कौमों के अपनी असातीरी हकायत और रिवायात हैं जिनमें उनके फ़न, अकीदे और फ़लसफ़े ने अवलिन शक्लों में अपना इजहार किया है। असातीरी किरदार बिलुमूम देवी, देवता, फ़ोकुल फितरत हस्ती, मजहबी, तारीखी, नीम तारीखी, तखयली या रिवायती हीरो होते हैं जो बहर तौर आम इंसानों या जानदारों से मुख्तलिफ होते हैं और उनसे अजीम तर भी होते हैं। तमाम असातीरी किरदारों की कोई ना कोई कहानी होती है या कहानियों में ये मखसूस किरदार की हैसियत रखते हैं। ये असातीर या देवमालाएँ अपने इलाके, मजाहिब और तहजीब व तमद्दुन के लोगों के इल्म, अकीदे, फ़िक्र और रुझान की गम्माज होती हैं। उनके किस्सों में तहय्युर होता है, तजस्सुस, रस्म, बज़्म और अय्यारी की दिलकशी के अलावा इल्म व फ़ज़्ल और शुजात व सखावत की भी दाद दी जाती है। अब हम चाहेंगे कि इस गुफ्तगू का आगाज़ जो है जनाब मीनुद्दीन जीना बड़े साहब से करें और इस हवाले से वो इजहार ख्याल करें।
2: शुक्रिया अबू बकर अब्बास साहब। मैंने सबसे पहले तो ये सोचा कि आज जब हम इस गुफ्तगू के लिए बैठे हैं तो बेहतर होता है कि जो तसव्वुर है उसकी तारीफ़ मुतय्यन कर ली जाए।
3: बेशक।
2: तो एक कोशिश मैंने

0: जब ज़माने कदीम के इंसान को परेशान किया करते थे, और ये वो सवाल हैं जो इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस इंसान का तख़य्युल ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि कैसा और किस दर्जे का तख़य्युल रहा होगा। उन सवालों के जवाब ढूंढता है, और सिर्फ जवाब नहीं ढूंढता, एक निज़ाम फ़िक्र होता है। ये एक मिसाल हम देंगे, भाई ग्रहण लगता है तो साइंस ने हमें अब समझा दिया है कि भाई एक चाँद है, एक सूरज है और एक ज़मीन है, और इन तीनों की जो पोजीशन है उसमें ख़ास ढंग से जब तब्दीली होती है तो कभी चाँद ग्रहण लगता है, कभी सूरज ग्रहण लगता है। ये तो साइंस ने हमें समझाया, लेकिन सदियों पहले हमने ये कहा कि भाई एक राहु है और एक केतु है, और इन दोनों की अपनी कश्मकश है, और इन्हीं का ये जो आपस की उनकी कश्मकश है, और जो कहना चाहिए कि उस पूरे निज़ाम में उनकी जो हैसियत है, तो कभी वो चाँद को अपने बस में कर लेते हैं, चाँद की रोशनी को वो कहना चाहिए कि रसब कर लेते हैं, तो कभी सूरज। ये तो ये ग्रहण की
1: मिसाल दी आपने, क्योंकि उर्दू फिक्शन में जो हम देखते हैं तो अफसाने के हवाले से पहला ये आता है कि कौन सी देवमालाई कहानी लिखी गई, तो आमतौर से ग्रहण का ना जिक्र आता है राजेंद्र सिंह बेदी के, उसमें राहुल भी है, केतु भी है, भैरव भी है, ये सारे किरदार हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरह से वहीं से शुरुआत होती है असातीर की
2: जी।
1: उससे पहले लिखे गए थे लेकिन उस्तूर के तौर पे नहीं जिक्र किया गया, जैसे गणेश का या पार्वती का। क्या ख्याल साहब?
2: मेरे ख्याल में मैं तो आग का दरिया से शुरू करूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें। तो दो तीन बातें जो बुनियादी तौर पर, जैसा कि जीने बड़े साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पर दुनिया में जो कुछ हो रहा है बतौर इंसान उसको समझना, और एक इंसान की कोशिश होती है कि उसको एक्सप्लेन करना, उसकी वजाहत करना। उसके लिए जब साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी जितनी आज है, तो बहुत सारे मिथ, अस्तूर जिसे कहते हैं, वो हर इलाके में, हर तहजीब में गढ़े गए। और जाहिर है कि हमारी जो हिंदुस्तानी तहजीब है वो भी एक बड़ी तहजीब है, उसका जो नैरेटिव है बहुत ग्रैंड है और बहुत वसी है, और उसके में किरदार बहुत सारे आते हैं। दूसरी तरफ ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी हैं जो तकरीबन मिलती जुलती हैं, वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ हैं। बहुत बड़ा उनका इलाका तो नहीं है, लेकिन उनका जो कहना चाहिए कहानियाँ और जो इमेजिनेशन है, तसव्वुर है, वो बहुत हैरत अंगेज़ है। तो हमारे यहाँ मोटे तौर पर जो हिंदुस्तानी माइथोलॉजी या हिंदू माइथोलॉजी से हम कहते हैं सनमियात, उसके लिए उर्दू में लफ्ज़ या असातीर भी इस्तेमाल होता है, उसमें तीन बुनियादी गॉड्स हैं। ब्रह्मा जो खालिक है, क्रिएटर हैं, और उनकी शरीक हयात हैं सरस्वती। दूसरे विष्णु हैं जो प्रिजर्व करते हैं, आपकी ज़िंदगी का तहफ़ करते हैं, उनकी शरीक हयात लक्ष्मी हैं। और तीसरे शिव हैं, शरीक हयात उनकी पार्वती हैं या दुर्गा, और जब वो गुस्से में आते हैं तो फिर वो तांडव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी इन तीनों देवताओं के हाथ में पूरी ज़िंदगी की इब्तदा से लेके और आखिर तक आपके हाथ में है। तो फिर हमारे यहाँ जो तहजीब जिस तरह से डेवलप हुई, आर्यन तहजीब आई, प्री आर्यन तहजीब आई, इंडस वैली की तहजीब आई, वैदिक तहजीब आई, तो इसमें जो किरदार हैं और मोटिव हैं बदलते हैं। और संस्कृत लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर जाहिर है कि बहुत रिच हैं, और जो मुकामी ज़बानें हमारी उनमें भी ये सारी माइथोलॉजी कहीं ना कहीं जाहिर होती है। तो बुनियादी तौर पे अच्छा, एक मार्क्सिस्ट स्कूल भी है सोशियोलॉजी में, वो तो इनको अनसाइंटिफिक कह के नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे दानिश्वर हैं, इंतज़ार हुसैन ख़ास तौर पर और दूसरे लोग हैं, वज़ीर आगा, उन्होंने जो मिथ है ना, ये अस्तूर और किस्सा गोई और दास्तान और दास्तानों में इनका इस्तेमाल तो बराबर किया है उन्होंने। इंतज़ार हुसैन तो कहते हैं कि मैं तो करबला भी देखूँगा और रामलीला भी देखूँगा, क्योंकि ये दोनों मेरी तहजीब का हिस्सा है। तो ये सारे अस्तूर, ये सारे मिथ, ये मोटिफ जब अदब में और फिक्शन में चूँकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस्तेमाल होते हैं, तो एक अलग किस्म की तस्वीर बनती है।
3: सही है। देखिए, ऐसा है कि जब हम अस्तूर की बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि दास्तान, जितनी भी दास्तान हैं, सब अस्तूर से भरी हुई हैं
2: जी,
3: और वहीं से मेरे ख्याल में ये चीज़ें आगे आई हैं। और इंतज़ार हुसैन के ताल्लुक से मैं एक बात ही बता दूँ कि अब से चंद बरस पहले इंतज़ार हुसैन का मैंने और शमशेरान फारूकी साहब का इंटरव्यू किया था, एक लंबा इंटरव्यू जो बाद में शाये भी हुआ। तो उसमें बातों के दरमियान उन्होंने ये कहा कि हिंदू माइथोलॉजी बहुत फैसला

0: नेट करती है मुझे,
1: जी
0: और मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मैं उसमें से बहुत सी चीज़ें छानता हूँ, फटकता हूँ और फिर अपने लिए लेता हूँ। और इसीलिए उन्होंने पंचतंत्र का पूरा सिलसिला पढ़ डाला। तो हमने उनसे पूछा कि आपने क्या इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया, तो उनका हाँ मैंने इन चीज़ों से खूब फ़ायदा उठाया और मैंने लिखा। तो एक तो ये इस तरह से उन्होंने
1: ये
0: उसको,
1: कलीला और दिमना के नाम से अरबी में भी तर्जुमा हुई है ना,
0: हाँ
1: पंचतंत्र।
0: हुई है। तो ये जो बंजार हुसैन थे वो, उनके की सोच आम फिक्शन निगारों से ज़रा अलग हटकर थी। और ये सिलसिला आप उनकी कहानियाँ देखिए, मसलन जैसे जल्द कुत्ता है उनकी कहानी है,
1: जी
0: आखिरी
1: अरबी
0: आदमी,
1: जी
0: उनको पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि भाई ये कुछ अलग सा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इंतज़ार हुसैन ने जो शुरू किया वो उर्दू अदब के लिए बहुत अहम था, और उसका सिलसिला बाद तक चलता चला है। मसलन सलाम बिन रज़ा की कहानी नदी,
1: जी
0: और बजूका सुरेंद्र प्रकाश
1: सुरेंद्र
0: की।
1: प्रकाश का।
0: तो आप एक लाइन है जो चलती चली आ रही है, और इंतज़ार हुसैन की कहानियाँ यकीनी तौर पर इस मरहले में सबसे ज़्यादा अहम नज़र आती हैं।
2: सलाम बिन रज़ाक की के आपने बेजुका का बड़ा
0: नहीं
2: नदी,
0: बिल्कुल,
2: आपने नदी का जिक्र किया,
0: हाँ
2: बहुत ही अहम कहना चाहिए कि कहानी है जिसका बेस जो है उस्तूर है। उनके यहाँ कामधेनु एक अफसाना है,
1: हाँ जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा सुना है वो।
2: यकलव्य एक अफसाना है, और यकलव्य के अलावा श्रवण कुमार पर एक अफसाना
3: हाँ
2: है।
3: जी, तीन अफसाने हैं इस हवाले से उनके। एक तो आज का श्रवण कुमार है, दूसरा है एकलव्य, तीसरा अफसाना इसी की अगली कड़ी है वो है एकलव्य का अंगूठा।
2: अंगूठा,
1: अच्छा एक
2: और
1: लेवे का
2: ये
1: अंगूठा
3: तीनों में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उस तूर को न सिर्फ
2: इस्तेमाल
3: बयान
2: किया
3: किया
2: है
3: है
2: उसने।
3: बल्कि आज के हालात से उसका तदब्बुक पैदा किया है।
2: ये बहुत सही बात कही
0: ये
2: आपने।
0: यही सूरत हाल नदी में भी है। नदी में तो उन्होंने कहीं ले जाके ग्रीक मैथोलॉजी को भी उसमें शामिल कर दिया है, और आज की जो सिचुएशन है, कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है, उसमें अगर आप नदी को पढ़िए तो आपको लगेगा कि तो उन्होंने आज की बात कही है, पीछे से लाके उन्होंने मामला को रखा है।
2: असरार गांधी साहब, आपने जो बात बहुत सही कही कि ये वो फनकार हैं जो उस्तूर को आज के सियाक में बामानी बना रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
2: और देखिए, अगर ये नहीं हो पाता तो फिर वो फन कहाँ बना, अदब कहाँ बना, और फिर हमारी आपकी दिलचस्पी का मौजू कहाँ रहा।
3: सही
1: जी
2: और एक नज़रिया तो ये भी सामने आया है कि जो हमारा अदब आलिया है, उसका जेनेसिस, उसकी जड़ें भी इन्हीं असातीर की दुनिया में है। यानी जिंदगी के इर्तका का एक पहला सिरा अगर असातीर हैं, तो उसका आखिरी आज का सिरा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो आज का अदब है। आज की जो तख्लीकी हिस्सियतें हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, वो यहाँ से वहाँ तक ये दोनों सिरे हैं। और दोनों जगह हो यही रहा है कि तखय्युल की कार फरमाई है। आज के अदब में तखय्युल कि उतनी कार फरमाई नहीं है जितनी कार फरमाई असातीर के ज़माने में थी, और असरार गांधी साहब जैसा कि फरमा रहे थे, दास्तानों के दौर में थी। लेकिन आज बग़ैर तख़य्युल के कोई फनपारा वजूद में नहीं आता। अहमियत इस बात की है कि आज का तख़य्युल ताकत अखस करता है सदियों पुराने असातीर के वजूद में। यही तो वजह है कि नदी लिखी गई, यकलव्य लिखा गया, आज का यकलव्य लिखा गया। और भाई वो नदी जो कामधेनु जो है, कामधेनु जैसी कहानी लिखी गई, तो ये है। आपको क्या लगता है अबू बकर अब्बास साहब?
3: जी बिल्कुल। देखिए इनका यहाँ तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में और लोगों ने भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। मसलन इंतज़ार हुसैन के यहाँ देखिए, ये सिर्फ हिंदुस्तानी असातिर की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर उसमें बौद्ध की असातिर भी आती है। तो उनका जो अफसाने ख़ास तौर से कछुए हैं या
1: कछुए
3: पत्ते हैं या वापस है, तीनों में जो है बौद्ध जो जातक कहानियाँ
2: जी
3: होती थी
2: जी जी
3: वो जो
1: हाँ
3: हैरत
0: बिल्कुल
3: अंगेज़ तौर पर
0: बिल्कुल
3: उनका बयानिया है
2: जी
3: मशहूर करने वाला, तोते की ज़बानी कहानी सुना रहे तथागत, कहीं पे जो है वो कुत्ते की ज़बानी सुना रहे हैं, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से बयान किया है।
2: बहुत सही कहा।
3: इसके अलावा अगर खालिस हिंदुस्तानी, ज़ाहिर है ये सारी हिंदुस्तानी ही मैथोलॉजी है, तो उसमें हिंदू भी है, बौद्ध भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, इलाकाई ये भी हैं। तो जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उनकी जो कहानियाँ हैं, तो इस तरह की तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती
2: बहुत
3: हैं।
2: सही फरमा रहे हैं आप। और देखिए, ये जितने असातीर हैं अदब में, कभी तलमी बनकर, कभी तशबीह, कभी इस्तियारा, कभी अलाम

0: मत इन सूरतों में अदब का हिस्सा बनते हैं, और ऐसे फनपारे भी हैं जो पूरी तरह किसी उस्तूर में रचे बसे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि उस उस्तूर के बतन से वो आज का फिक्शन पैदा हो रहा है। ये भी होता आया है हमारे यहाँ, और इसमें बेहतरीन मिसाल जैसा हम सभी कह रहे थे इंतज़ार हुसैन है, और भी मिसालें हमें मिल जाएंगी।
1: मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा
0: जी,
1: कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हम कि कुतुबुद्दीन हैदर को नज़रअंदाज कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि कुतुबुद्दीन हैदर कुछ सीनियर थी उनसे, और बड़े पैमाने पर जो हमारे यहाँ अस्तूर का तजर्बा पहला हुआ है, तजर्बा कहें या टेक्निक कहें उसे, वो आग का दरिया में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है इंतज़ार हुसैन की जो शुरू की कहानियाँ हैं उसमें हिजरत का जिक्र ज़्यादा है, बाद में ये जैसा आपने कहा ना कछुए वगैरह ये सारी चीज़ें, ये मेरे ख्याल में 80 या 75 के बाद आए हैं उनके जो मजमू आए हैं। अब देखिए जैसे आग का दरिया में, जिसे हम बहुत ही शायद सबसे बड़ा नावल मानते हैं, गौतम नीलंबर, हरिशंकर, अबुल मंसूर कमालुद्दीन और चंपा, ये बार बार नए नए जन्म लेते हैं। तनासुख का फ़लसफ़ा जो हिंदुस्तान का रीबर्थ का फ़लसफ़ा है वो यहाँ नज़र आता है। फिर जिस तरह से वो ज़िक्र करते हैं, ख़ास तौर पे शुरू का जो हिस्सा है आग का दरिया का, उसमें जो बुद्धिज़्म जिस तरह से हिंदुस्तान में फैल रहा है और जिस तरह से संघ बन रहे हैं,
2: बिल्कुल सही बात है,
1: और जिस तरह से एक तालिब इल्मों के गिरोह हैं, जौक दर जौक नौजवान जो हैं तपस्या कर रहे हैं और फ़लसफे पे डिस्कशन कर रहे हैं लंबे लंबे, और दूसरी तरफ एक आम समाज है जिसमें नेचर की मोहब्बत, फितरत, पेड़,
3: लेकिन
1: दरिया।
3: कुतुबुद्दीन हैदर ने जो है तारीख एतबार से देखने की कोशिश की है बुद्ध फ़लसफे को और उसको उस्तूर के मुकाबले में। ज़ाहिर उस्तूर कायम होता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं गौतम नीलंबर कई मरतबा जन्म लेता है, तो वो कहीं ज़रूरी नहीं कि उसका रिबर्थ है, क्योंकि नावल जिस तरह से उन्होंने लिखा है तो वो लगता है कि वो तारीख वो बदल रहा है।
1: हाँ, वो फेज लेके जा तारीख का शो उनका बहुत ज़्यादा है।
3: कोई हैरत अंगेज चीज़ तो होती है ना, जो मौफ़ुकुल फितरत से बहुत ज़्यादा करीब होती है। तो सिर्फ कुरातुल्लाह हैदर और लोगों ने भी बहुत, कुरातुल्लाह हैदर से पहले ये थी मुमताज़ शीरी
1: ने भी कुछ तजर्बे किए
3: तो बहुत। मुमताज़ शीरी ने जो के जो दो मुख्तसर अफसाने हैं जो थ्री डायमेंशनल टेक्निक में लिखे गए हैं, एक तो मेघमलार है जिसमें 7-8 हिस्से हैं, उसमें एक नीलकमल है, दूसरा सरस्वती है, तो एक में शिव जी का और एक में पार्वती जी का बहुत ही अच्छा ये किया गया है। और ऐसे ही एक आर्फियस यूरिडेस है, तो उसमें यूनानी मैथोलॉजी के तकरीबन 48 किरदार को सिर्फ एक अफसाने में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है।
1: अच्छा, मुझे एक वहाँ अजीज अहमद वाला अफसाना जो कम डिस्कस हुआ, मदन सेना सदिया,
3: जी,
1: हाँ वो भी इसी तरह से है, वो भी सारी माइथोलॉजी को लेके और बार बार बहुत लंबे पीरियड को लेके साथ साथ चलते, जाहिर है कि उनका भी तारीखी शऊर बहुत डेवलप था।
2: सब इन तमाम बातों के दरमियान एक बात जो समझ में आती है वो ये होती है कि इस तरह की जितनी भी कहानियां हैं उनमें ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का एक सिलसिला बना रहता है,
1: तनासुब का जो फलसफा है।
2: हाँ हाँ, आवागमन का उसका, और बता जैसे आखिरी आदमी है इंतजार हुसैन की, उसमें वो लास्ट में बंदर बन जाता है, बोले वो अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट इंसान के अंदर होती रहती है वो उसी तरह से चलती है, और यहाँ तक कि वो अपने आप को चाहता है कि हम बंदर बन जाएं और तमाम चीज़ों से पी जाए, हमारा छूट जाए। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मेरे ख्याल में क्या लाजमी जुज़ है इस तरह की उस्तूरी कहानियों का, ऐसा लगता है कुछ?
0: वो भी उस्तूर का हिस्सा है, वही लाजमी जुज़ तो नहीं है, उसके बगैर भी हमारे यहाँ ऐसा फिक्शन क्रिएट हुआ है जहाँ तनासुख का पहलू नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें पूरी तरह से उतरी हुई हैं असातीर में।
1: मैं एक बात कहना चाह रहा था कि असातूर और जातक कथाओं वगैरह को इंतज़ार हुसैन ने बहुत चाबुक दस्ती से इस्तेमाल किया है। ज़बान खूबसूरत है, कोई भी बड़ी तहरीर जो है वो ज़बान के बगैर तो बनती नहीं है, सच तो यह है। कुतुबुद्दीन हैदर की ज़बान किस कदर खूबसूरत है।
0: दरअसल इंतज़ार हुसैन और कुतुबुद्दीन हैदर दोनों के यहाँ उस्तूर और असातीर पाए जाते हैं, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि कुतुबुद्दीन हैदर के यहाँ मारूजी हकीकत का पहलू गालिब होता है, ये फ़र्क है, और इंतज़ार हुसैन के यहाँ मालूम होता है कि वो फनपारा उस उस्तूर के बतन से निकल रहा है
1: जी।
0: तो उनकी गालिब शनाख्त, अगर हम किसी एक हमारे फनकार को तलाश करना चाहें जिसकी गालिब शनाख्त असातीर हो, तो वो इंतज़ार हुसैन और इंतज़ार हुसैन है। दूसरों के यहाँ है, लेकिन वो बात कि उसके बतन से निकल रहा वो फन पारा, और चूंकि उसके बतन से फन पारा निकल रहा है उनकी जबान

0: आम में भी वो रचाव पाया जाता है। वो रचाव है जो उन सदियों के ह्यूमन एक्सपीरियंस को अपनी विजडम में जब्त तहरीर में ला रहा, उस उस्तूर के पूरे प्रोसेस को वो अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। और जब वो जज्ब हो जाता है तो वो किस शक्ल में बाहर निकलेगा ये वो खुद नहीं जानते, लेकिन जब वो निकलता है तो मालूम है कि वो तमाम उसका तना, उसकी शाखें, उसकी पत्तियां और उसकी कोंपलें बस वही हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने जो इस्लामी उस्तूर लिखे हैं तो उनकी ज़बान, उसका लहजा, डिक्शन बिल्कुल वैसा ही रखा है।
0: जी
1: जो हिंदू असातिर है तो उसमें हिंदी के अल्फाज बहुत सारे आए हैं, हिंदी तर्ज तहरीर है उस तरीके से, संस्कृत के बहुत आए हैं। वैसे जो बुद्धिस्ट असातिर उन्होंने लिए हैं तो उसमें बिल्कुल वही तथागत वाला तरीका इस्तेमाल किया कि किस तरीके से कहानियाँ सुनाई हैं। जी जी जी बिल्कुल, तो उनका तर्ज उसलूब हर उस्तूर के साथ बदलता जाता है, तो ये बड़ी खूबी है उनकी।
2: मेरे जहन में एक बात आती थी कि इंतजार हुसैन पाकिस्तान में बैठ के लिख रहे थे और कुरतुल हैदर पाकिस्तान से कुछ परेशान होकर वापस आ गई थी, तो क्या जो मकामी हालात होते हैं, मकामी समाजियात होती है, क्या उसका असर भी तहरीरों पर पड़ता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल होता है ना, कि वहाँ की तहजीब अलग है, हमारी तहजीब अलग है, और ये जो सिचुएशन अलग अलग है ये लिखते वक्त दर आती है।
2: क्या ये हो सकता है कि इंतजार हुसैन जानबूझ के इतना वाजे और इतना कंक्रीट नहीं लिखते हैं, टेक्निक उनकी ऐसी है जितना कुरतुल हैदर हमारे हैं, बाद के जो नावल है उनका चांदनी बेगम वगैरह उसमें तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह का पॉलिटिसाइज्ड और पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है वो, और लगता है किसी तरह के पसंद का लिखा हुआ नावल है ये, तो इसका शायद असर पड़ता है।
0: मैं अर्ज़ करूँ अगर आप इजाज़त दें।
2: जी जी,
0: इंतज़ार हुसैन के यहाँ ये जो फ़न का तख्लीक का अमल है ये ओढ़ा हुआ नहीं है,
2: बड़े फनकार
0: हैं। ओढ़ा हुआ अगर होता खुदा न खास्ता तो फिर वो बात पैदा होती कि भाई खारिज की हालात को देख रहे हैं, सियासत को देख रहे हैं और मसलहत क्या कहती है और रास्त गुफ्तारी हम नहीं कर सकते तो चलिए इसकी आड़ ले लेते हैं। ये भी कोई इसमें ख़राबी नहीं है, ऐसा हुआ है वहाँ भी। भाई अनवर सज्जाद ने यही तो किया, हमें लगता है कि अनवर सज्जाद ने बहुत ही शौरी तौर पर किया है
3: कोंपल में जैसे।
0: इंतज़ार हुसैन का इनफराद ये है कि वो उनके यहाँ चीज़ें ओढ़ी हुई नहीं है, जैसा मैं अर्ज किया कि वो बातिन में जज्ब कर चुके और फिर वो खुश भी बन के फूट रहा है।
1: इनके अलावा हमारे यहाँ और भी हैं जिन्होंने अफसाने लिखे हैं, उस्तूरी कहानियाँ लिखी हैं, मसलन सुरेंद्र प्रकाश जो है इन्होंने कई अफसाने बहुत अच्छे लिखे हैं,
3: खासतौर से
1: बाज़गोई की
3: है।
1: तो बाज़गोई को जिस तरह से इमरजेंसी पे उसका इंतबाह किया और उसको पिछले ज़माने में
2: मलका
1: शहरोज़ी के हवाले से ये किया है, तो वो तो बेहद अच्छी कहानी है, लगेगा कि आप पिछली दुनिया में पहुंच गए हैं। या खालिद अशरफ साहब कुर्रतुल ऐन हैदर का जो जिक्र कर रहे हैं तो उनका एक अफसाना भी है जिसमें बज़ाहिर वो साइंस फिक्शन लगता है लेकिन उसमें उस्तूर है। उस्तूर इस तरीके से है, रोशनी की रफ्तार जो उनका अफसाना, तो वो कदीम मिस्र में पहुँच जाता है वो
2: टाइम मशीन में
1: और फिर वहाँ उस उस्तूर को बयान किया जो मिस्री उस्तूर है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस्तूर के हवाले से 4-5 मुल्क हैं जो बेहद सर्वतमंद है, एक तो यूनान है, रूम है, खुद हमारा हिंदुस्तान है और जापान है। वैसे तो बहुत हर मुल्क का, हर कौम का, हर तहजीब का अलग अलग वो होता है और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। अरविंद डिगा ने जो उनका जो नावल था द वाइट टाइगर, तो इसकी इब्तदाई यहाँ से करते हैं कि हमारे यहाँ तरीका ये है कि किताब शुरू करने से पहले भगवान की अर्चना करते हैं। तो अब मेरे सामने कई मतबादिल हैं, एक मुसलमानों का खुदा है जिसकी अर्चना करें, या फिर एक ईसाइयों के 3 खुदा हैं जिसकी अर्चना करें, या फिर हिंदुओं के 3,65,00,000 हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि हर भगवान से कोई ना कोई उस्तूर जुड़ा हुआ है तो इस एतबार से देखें तो यूनान और रूम से ज़्यादा पावरफुल जो है और ज़्यादा सर्वतमंद हमारा हिंदुस्तानी असातिर है, बहुत ज़्यादा।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो ज़्यादा फैला हुआ है
1: जी,
3: ज़्यादा वसी है, तो वो कहीं बेहतर है। ये तो हिंदुस्तान का हमारा जो माशरा है और सब कुछ बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है।
2: एक सर नंद किशोर विक्रम साहब ने भी एक नावल लिखा था जो ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, 19वां अध्याय, वो महाभारत के बैकग्राउंड में पार्टीशन से, चूँकि पार्टीशन को उन्होंने बहुत देखा था और पार्टीशन में सफ़र भी किया था उन्होंने, वो भी एक अच्छा नावल है। फिर इनका हुसैन उलग साहब का एक नावल आया अमावस में ख्वाब, उसमें जो मरकजी किरदार है इस्माइल वो कोहकाफ के पार भी देखता है। इसी तरह बानो कुटसिया का नावल राजा गीत,
3: खालिद अशरफ साहब बताएं कि ये जो हिंदुस्तान में इंतजार हुसैन के बाद जो उस्तूर का एक सिलसिला चला जिसके अभी जिक्र हम लोग कर रहे थे, क्या क्या ये इंजर्शन का इफेक्ट है?

0: या ये एक फितरी बहाव के तहत ही आया है?
1: नहीं, हमारे यहाँ ये लोग लिख रहे थे ना, बेदी लिख रहे थे, ग्रहण है लाजवंती में उस्तूर है, अपने दुख मुझे दे दो में है, इंदु
0: देखिए
1: वगैरह का जो
0: अस्तूर,
1: चांद का है।
0: अब्बा साहब
1: या फिर
0: अस्तूर,
1: एक खाली साहब, एक बहुत अच्छा अफसाना आज मुझे याद आ गया अभी, जोगिंदर पाल साहब का इफरीत,
0: इफरीत,
1: उसमें
0: इफरीत,
1: रावण का
0: हाँ
1: उस्तूर
0: हाँ हाँ
1: है
0: रावण का है,
1: ना, दिल्ली का की कहानी है कि रामलीला खेला जा रहा है और किस तरह उसमें रावण
0: हाँ
1: को
0: वो
1: दहशत
0: बीवी
1: गर्दी से
0: बीवी जो
1: जोड़ने
0: है,
1: की कोशिश की है।
0: हाँ वो बच्चा कहता है कि माता जी को साथ क्यों नहीं लाए रामलीला देखने लिए, कहते हैं उन्होंने तो रावण ऑलरेडी बहुत देखे हुए हैं। वो है अफसाना बिल्कुल जदीद, उससे जुड़ता है। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है इसमें कि कुरतुलन हैदर और इंतज़ार हुसैन के बाद उर्दू में जो माइथोलॉजी जिसे कहते हैं अस्तूर, मेन स्ट्रीम में नहीं आई।
2: आप इजाज़त दें तो मैं ये अर्थ करूं, अभी इफरीत का हम लोग जिक्र कर रहे थे, मेरे नज़दीक इफरीत जो है वो कंट्राइव बन पा रहा है, उस तरह से उसकी जो एक नामियाती वजूद होना चाहिए फन पारे का, वो इफरीत में नहीं मिलता, और यहाँ वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जबकि हमारे जोगिंदर पाल साहब बहुत बड़े फनकार हैं और बड़ी अजीब चीज़ें लिखी, लेकिन इफरीत में ज़रा सा वो बात बन नहीं पा
1: हाँ,
2: रही है।
1: मतलब वो उसको इस तरीके से,
2: क्योंकि सोचे समझे ढंग से आप उसको दो जमा दो चार की तरह इफरीत को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: एक अफसाना उनका बहुत अच्छा ग्रंथी भी है जिसमें उन्होंने सिख जो मोटिव्स हैं और सिख जो सिंबल्स हैं उनको भी बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल किया है।
2: जी हाँ जी
0: जोगिंदर
2: हाँ
0: पाल साहब जाहिर है के बड़े
1: ये
0: राइटर
1: जो
0: थे
1: गुफ्तगू
0: हमारे।
1: हो रही थी कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा उस्तूरी अफसाने नहीं लिखे गए, मुझे लगता है कि काफ़ी लिखे गए हैं, तो खुद सलाम बिन रज़ाक की देख लिए,
2: अभी
1: कितने
2: जिक्र
1: अफसाने, उसका
2: आया,
1: जिक्र आया आप
2: अभी
1: लोगों ने
2: जिक्र
1: किया,
2: आया,
1: मुमताज श्री के 5-6 अफसाने हैं, सरस्वती जी पे हैं, शिव जी पे हैं, बुद्धिस्ट पे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जोगिंदर पाल हैं ये लिख रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ लिखेंगे, सुरेंद्र प्रकाश हैं, इनके यहाँ उस्तूरी
2: लेकिन
1: अफसाने मिल
2: सुरेंद्र
1: जाते
2: प्रकाश का
1: हैं।
2: वनवास 81,
1: जी
2: वनवास 81 में वो राम का ही वनवास है और आज के जो सूरत हाल है उस पर उसका इंतबाक हो रहा है। राम तो आ गए थे वनवास के बाद लौट कर यहाँ, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश के यहाँ राम लौट कर
1: जा रहे
2: नहीं
1: हैं वो, जी
2: आते।
1: बिल्कुल
2: और राम राज्य की जो एक मिसाली मुमलिकत का तस्वुर है वो उसी वक्त हकीकत बन सकता है जब राम लौट आते। राम नहीं आ रहे हैं तो वो मिसाली तस्वुर, उसके बरक्स जितनी खराबियां हो सकती हैं वो इस कदर हैं कि राम न आना बेहतर समझते हैं।
1: बिल्कुल इसी इसी मौजू पे श्री रामचंद्र जी को ही उस्तूर बना करके सैयद मोहम्मद अशरफ ने एक अफसाना लिखा, अफसाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी यही, यहाँ आना चाहते हैं लेकिन फिजा दे करके वो बहुत घबराते हैं।
0: अच्छा जी ना बड़े साहब, एक चीज़ और है, ये जो आजकल मैजिक रियलिज्म बहुत इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ और लेटिन अमेरिका से आई थी 70s में ये टेक्निक, क्या ये कुछ मैजिक रियलिज्म और माइथोलॉजी, क्या इनमें कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ मुश्तरका है? जैसे
2: देखिए
0: मुझे
2: ये
0: लगता है
2: मैजिक
0: कि
2: रियलिज्म उस तख्लीकी रिवायत से जुड़ी हुई है जिसे हम उस्तूर साजी का अमल कहते हैं।
0: जी
2: यहाँ उस्तूर साजी हो रही है लेकिन आज के सियाक में हो रही है, अपनी जात के सियाक में हो रही है, और इस बस यही अमल है वहाँ जो दूसरी सियाक में हो रहा है। आप सही कह रहे हैं,
1: बिल्कुल, क्योंकि
2: जैसे
1: वाकयात और
2: क्रिश्चियन
1: किरदार
0: माइथोलॉजी
1: जो
0: का
1: है
0: उसमें
1: वो बिल्कुल
0: काफी, जी
1: उस्तूर
0: हाँ
1: जैसे ही
0: बिल्कुल
1: है, मुहय्यरुल उकूल है,
2: जी
1: नाकाबिले
2: जी
1: यकीन है ना,
2: हाँ
1: माफोकुल फितरत है,
2: जी जी
1: और
2: ख्वाब, उसके
1: मैजिक रियलिज्म में भी
0: ख्वाब हैं,
1: तकरीबन, हाँ
0: मिथ्स
1: लेकिन वो
0: हैं।
1: तो टेक्निकल अलग है,
2: जी
1: मैजिक
2: अब
1: रियलिज्म
2: देखिए
1: हो या
2: हमारा एक
1: सरियलिज्म हो।
2: अब्जर्ड आर्ट का एक पूरा दबिस्तान रहा,
0: जी
2: चाहे वो अब्जर्ड ड्रामा हो चाहे अब्जर्ड फिक्शन हो। तो ये अब्जर्ड फिक्शन बाज़ा कभी कभार तो हमें परेशान यूँ करता है कि जो हमारी असातीर पर मबनी फ़न पारे हैं आम कारी के लिए वो अब्जर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि गिलगामिश क्या चीज़ है।
1: जी
2: हाँ, तो यानी जब कोई उस्तूर इस्तियारा बन जाता है और कारी उससे वाकिफ नहीं है तो उसके लिए तो वो वही अब्जर्ड है।
1: बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, ये देखे कि हिंदुस्तानी असाथी उर्दू फिक्शन में किस तरीके से इस्तेमाल किए गए, उस पर हम लोगों ने गुफ्तगू की, और ये सामने आया कि इंतज़ार हुसैन ने तकरीबन 12-14 कहानियाँ लिखी सवाली से, मुमताज शीरी ने 5-6 कहानियाँ लिखी, सुरेंद्र प्रकाश
0: आगे
1: की
0: सुनो
1: हैं,
0: आगे
1: राजेंद्र सिंह
0: राजेंद्र
1: बेदी
0: जी,
1: के अफसाने हैं बहुत से उस्तूर के हवाले से, जोगिंदर पाल के
0: सीता
1: अफसाने हैं,
0: हरण,
1: सैयद मोहम्मद अशरफ के हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जगह मिली है हिंदुस्तानी असातीर को उर्दू फिक्शन में, और इस एतबार से हम कह सकते हैं कि हमारा उर्दू फिक्शन बेहद सर्वतमंद है उस्तूर को बयान करने के एतबार से। तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू तो जारी रह सकती है, लेकिन हम यहाँ ख़त्म कर दें तो
2: वक्त की अपनी पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बेहद शुक्रिया तमाम
0: बहुत शुक्रिया।
3: सामईन। अभी

मुबाहिसा सुन रहे थे। मौजू था उर्दू फिक्शन में हिंदुस्तानी असातीर। मुबाहिसे में शुरका थे जनाब मुईनुद्दीन दीनाबड़े, जनाब खालिद अशरफ, जनाब असरार गांधी। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब अबू बकर आबाद। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 4 बजने ही वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं। राज्यसभा में भी आज हंगामे की स्थिति रही। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गर्जेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्न का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया। न्यायालय की गोवा बेंच की खंडपीठ ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा सुनाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक में बल को और मजबूत करने तथा इसकी समग्र प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रादेशिक सेना नागरिक सैनिक अवधारणा का जीता जागता उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के स्थगन के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष देश भर से अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर खैदम शलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी। मुख्य कोच टिम वाइट के निर्देशन में टीम इस टूर्नामेंट की तैयारियों में जुट गई है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने फाइनल में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Lok Sabha has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The bill will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on the 5th of June this year. The bill further exempts foreign institutional investors and the Bank for International Settlements from paying income tax on interest earned on investments in government securities. The exemption will apply to income arising on or after the 1st of April this year. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled at 2 p.m. after the first adjournment. The bill was passed amid din, without any discussion, amid repeated disruption by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over NEET paper leak issue. Following the passage of the bill, the lower house was adjourned for the day. Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. It provides for the authorization of the appropriation of money from the Consolidated Fund of India to meet amounts spent on certain services during the financial year ended on 31st of March 2023 in excess of the amounts granted for those services for that year. The Bombay High Court today sentenced former Tehelka editor Tarun Tejpal to 10 years rigorous imprisonment in the 2013 sexual assault case involving a former junior colleague. The court also imposed a fine of 10,21,000 rupees on Tejpal, which would be paid to the victim. A division bench of the Bombay High Court's Goa bench convicted Tejpal under provisions of the Indian Penal Code related to rape by a person in a position of trust or authority, sexual harassment and assault with intent to disrobe a woman. In Jharkhand, the students' agitation of alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and the Jharkhand Staff Selection Commission examinations entered its 13th day today. Students continue their protests at the Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi, pressing for the demands. Meanwhile, the issue triggered uproar both inside and outside the Jharkhand Assembly on the opening day of the monsoon session. BJP and NDA legislatures staged a strong protest in the Assembly premises over the issue demanding the resignation of the Chief Minister and a CBI inquiry into the alleged irregularities. The government has said that with the repeal of Air Corporation Act in March 1994, airfares are not subject to be regulated by the government. Minister of State for Civil Aviation, Muralidhar Mohol, stated this in a written reply in the Lok Sabha today. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has debunked the claim stating that the government plans to blend ethanol with aviation turbine fuel ATF are completely false and irresponsible. In a social media post, Mr. Naidu said there is no such proposal. The Enforcement Directorate, ED, is conducting searches at 5 locations in Munger, Bihar, under the Prevention of Money Laundering Act 2002 in connection with an alleged investment fraud involving Jollywood Music Industries Private Limited. According to the ED, the company allegedly lured individuals with promises of a digital job and doubled their investment.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। लापता युवक का पूरा नाम आकाश उर्फ मनु है। ये महेंद्र के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार 10 जुलाई 2026 को देखा गया। इनकी आयु 26 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 7 इंच है। आकाश उर्फ मनु के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना कासना, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। खोई हुई महिला का पूरा नाम रूबी है। इनकी आयु 40 वर्ष है। इखरा शरीर है। कद 5 फीट है। चेहरा गोल है एवं रंग गोरा है। रूबी 3 बच्चों की माँ है। ये सुबह 8 बजे अपने घर से कहीं चली गई हैं, फिर वापस नहीं लौटी। इनके बारे में अधिक जानकारी देने वाले को 2000 रुपये शुल्क पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दनकौर गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम अंजलि है। ये बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं। इन्हें अंतिम बार सदरपुर नोएडा में देखा गया। अंजलि की आयु 20 वर्ष है। इखरा शरीर है। रंग सांवला है एवं कद 5 फीट है। काले बाल हैं। इन्होंने अंतिम बार हरे रंग का सूट पहना था। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। खोई हुई युवती का नाम अंजलि कुमारी है। ये मनोज पंजियाल की पत्नी है। इन्हें अंतिम बार 4 जुलाई 2026 को होशियारपुर में देखा गया। अंजलि कुमारी की आयु 22 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 49 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता पुरुष का पूरा नाम योगेश है। ये मुकेश कुमार के पुत्र हैं। निवासी थाना कासना। इन्हें अंतिम बार 6 जुलाई 2026 को देखा गया। इनकी आयु 32 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 7 इंच है। इनके सीधी बाजू पर टैटू का निशान है। योगेश के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना कासना कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम अंजलि है। ये प्रदीप की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार 6 जुलाई 2026 को देखा गया। अंजलि की आयु 19 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना कासना कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। खोई हुई महिला का पूरा नाम निशा है। ये महेश शाह की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं, फिर वापस नहीं लौटी। निशा की आयु 27 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट 3 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं।
और अंत में लापता युवती का पूरा नाम बबीता है। इन्हें अंतिम बार कस्बा में देखा गया। इनकी आयु 18 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 4 फीट 2 इंच है। बबीता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना कासना कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, युवाओं की बातें, युवाओं की सोच और नए नजरियों के साथ आप सुन रहे हैं युववाणी। मैं हूं आपकी दोस्त सोनाली।
1: एंड आई एम पार्वती। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। यू नो व्हाट सोनाली, आई अपोलोजाइज पर आई हैव अ क्वेश्चन।
0: अरे वाह, अभी प्रोग्राम शुरू ही हुआ है और सवाल भी आ गया, पूछिए।
1: आई मीन टेल मी, Have you ever come across something so ordinary that you never really paid attention to it until one day you realized it was far more important than you had imagined?
0: बिल्कुल, और मजेदार बात ये है पार्वती कि ऐसी चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही हिस्सा होती हैं। हम उन्हें देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बारे में रुककर सोचते ही नहीं।
1: Absolutely. I mean, sometimes it's the smallest things we do every day that quietly say the most about us. And sometimes the biggest victories are in the ones everyone applauds, Sonali. They are the ones we win within ourselves.
0: दोस्तों, और शायद इसी वजह से जिंदगी हमें हर रोज कुछ नया सिखा देती है। बस जरूरत होती है थोड़ा ठहर कर देखने की और थोड़ी गहराई से समझने की।
1: So, over the next few minutes, we'll explore a few everyday moments that may seem simple at first, but have much bigger stories hidden behind them.
0: तो बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है आज की इस बातचीत के बाद आप अपनी रोजमर्रा की कुछ आदतों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें।
1: So, before we begin, I think Sonali, we should set the mood. Here's a beautiful song that reminds us to pause, reflect, and reconnect with ourselves. This is Ek Tara from the movie Wake Up Set.

0: What, Sonali? I believe this song was much needed. A reconnection which made us realize that even the smallest everyday habits can make a big difference. So, with that thought, let's move on to today's talk.
1: Parvati, तुमने अभी कहा था कि हम रोज ऐसी कई चीजें करते हैं जो हमारे बारे में बहुत कुछ बता देती है. सच बताऊं, मुझे अब भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है.
0: Okay, so to keep up your curiosity, let's do a small experiment. Think about your morning today, Sonali. How many times did you unlock your phone?
1: उसका तो कोई हिसाब ही नहीं. मैसेज देखे होंगे, गाने सुने होंगे, खाना ऑर्डर किया होगा और गूगल पर कुछ ना कुछ तो सर्च किया ही होगा.
0: Exactly. And every one of those actions leaves a small digital trace. And you know what it's called? This is called a digital footprint.
1: Parvati, लेकिन अगर मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया हो तब भी.
0: Yes, even then. A digital footprint is not just photos or social media posts. It can come from Google searches, your location, or even the permissions you give to apps.
1: अच्छा, इसलिए एक बार ट्रैकिंग शूज देख लो तो फिर हर जगह उन्हीं के एड्स दिखने लगते हैं.
0: Exactly, you got it. The internet remembers what you show interest in, and slowly it starts building a pattern about you.
1: और दोस्तों, हम जाने अनजाने अपनी एक डिजिटल पहचान बना रहे होते हैं.
0: That's right, and there's nothing to fear here. It's just something we need to understand.
1: तो अब सवाल ये है कि अपनी डिजिटल पहचान का ख्याल आखिर रखें कैसे?
0: I'll tell you, Sonali. Just like we take care of our health. With small daily habits, what we call cyber hygiene.
1: Parvati, जैसे कि?
0: First, use strong and different passwords for important accounts. And if two-factor authentication is available, always turn it on. Think of it like a second lock on your door.
1: दोस्तों, app install करते समय हर permission पर बिना पढ़े allow दबा देना भी शायद अच्छी आदत नहीं है.
0: So true.

0: दोस्तों, अपनी डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित रखने और ऑनलाइन सुरक्षित रहने पर ध्यान देने का समय है। साइबर खतरा हमेशा बना रहता है और आज मन से माइक्रोफोन में इसी विषय पर हम सुनेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भूमिका व्यास, जिनसे बात की है हमारे साथी पीयूष द्विवेदी ने।
1: भूमिका व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: मैम, अक्सर हम दोस्त आपस में बैठकर किसी चीज को खरीदने की बात करते हैं और थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसका ऐड आने लगता है, तो क्या ये सच है कि फोन हमारा हमारी बात सुनता है?
2: देखिए, इसके पीछे का आपको थोड़ा टेक्निकल समझना पड़ेगा। BCG की सबसे पहले रिपोर्ट को देखेंगे तो 50% जनता अपना फोन जब भी उठाती है उन्हें खुद नहीं पता होता उन्होंने फोन किस लिए उठाया। तो आप पहले देख सकते हैं कि हम एक ऑटो पायलट मोड पर जा चुके हैं। हमारे पास कोई फोन उठाने का भी रीजन नहीं है, बस हमें देखना है कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, इंस्टाग्राम पे कोई रील तो किसी ने मुझे नहीं भेजी। एड्स आपको वही दिखाई देते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। इसके लिए आपको AI का एल्गोरिदम समझना होगा। इंस्टाग्राम को लेकर चलते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे कुछ भी सर्च किया, मेटा आपके हर मूव को ट्रैक कर रहा है। अब आप समझ के चलिए, आप इंस्टाग्राम के कस्टमर नहीं रहे हैं, इंस्टाग्राम के आप एक प्रोडक्ट हैं। आज का डेटा ही गोल्ड है, इस डेटा को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे हर जगह कमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हर जगह हमारा डेटा दे रहे हैं। तो AI का एल्गोरिदम ये समझ जाता है कि ये जो आदमी है इसको क्या पसंद है, इसको क्या नहीं पसंद है, इसके क्या विचार हैं, वो आपका एक क्लोन अपने अंदर बनाने लगता है। इंस्टाग्राम समझ जाता है कि इसको इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट है, इसको इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अल्टीमेटली उसका काम ये है एंगेजमेंट मैट्रिक्स बढ़ाना, सारे यूथ का अटेंशन लेना, अटेंशन स्पैन को कैप्चर करके रखना और अपना प्रोडक्ट बिकवाना। तो ये सब कुछ काम कर रहा है एल्गोरिदम, ये सब कुछ काम कर रहा है आपका AI।
1: मेरा अगला प्रश्न आपसे इसी से जुड़ा हुआ है। आजकल हम युवाओं में FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर बहुत रहता है, जिससे हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है। आप हमारे श्रोताओं को डिजिटल डिटॉक्स करने का कोई आसान तरीका बताइए जिससे वो अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखें।
2: आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर भी दो तरीके की जनता है, एक तो कंज्यूम कर रही है और दूसरी जो जनता है वो जनता यूज कर रही है। आप देखेंगे 57% ऑडियंस एजुकेशनल कंटेंट के लिए यूज कर रही है, जबकि 70% जनता ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना इसलिए इंस्टाग्राम यूज कर रही है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। आपको ये जरूर देखना होगा कि यार मैं कहीं प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा, मैं इस चीज से क्या निकाल सकता हूँ, मैं इसमें कैसे कंज्यूम नहीं हो सकता, कैसे मैं अपना समय इसमें बर्बाद नहीं कर सकता, कैसे AI टूल्स, इंटरनेट, ये इंस्टाग्राम, इसको यूज करके मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, मैं अपने आप को अपस्किल कर सकता हूँ। इसमें अगर आपने दिमाग लगाया तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप मान के चलिए एक फीचर आया है इंस्टाग्राम पे जिसको कहते हैं ऑटो स्क्रोल। अब आपको स्क्रोल करने के लिए स्वाइप भी नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ फोन को अपने हाथ में रखेंगे, रील एक के बाद एक अपने आप आती जाएगी, तो आप एक एंडलेस लूप में फंस जाएंगे। तो आपने करना यही है, इंस्टाग्राम और जितने भी AI टूल्स हैं उसका सही इस्तेमाल करें रेदर देन बिकमिंग द प्रोडक्ट।
1: मैम, हमारा युवा अपनी सुबह से लेके रात तक पूरा दिनचर्या इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपडेट करता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी जो फोटोज और वीडियोज हैं वो डीप फेक का एक माध्यम बन जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी

0: कन्वर्ट कर देगा। कई लोग 11 लैब्स का यूज़ कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट्स में, ताकि वो दूसरों की वॉइस का यूज़ करके अपने कंटेंट को प्रमोट करें। और दूसरी साइड हैकर्स क्या कर रहे हैं, वो वॉइस क्लोनिंग कराकर उनके पेरेंट्स को वीडियो या ऑडियो उनका भेज रहे हैं, ताकि वो उनके पेरेंट्स से पैसा निकलवा सके। इस तरीके का अगर कभी भी कॉल आए या कभी भी आपके पास मैसेज आए, पहले आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सीधा मुझे फ़ोन करना है, पहले मुझसे कंफर्म करना है। कोई भी आपको खाता दिया जाए और आपकी वॉइस दी जाए कि मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे अभी के अभी प्लीज 10,000 रुपए भेजो, वो वॉइस आपको आपके बेटे की लगेगी, लेकिन आपने उसको अपने बेटे को कॉल करके वेरीफाई करना है। अब मान के चलते हैं आपने वो लिंक क्लिक किया और आपका पैसा चला गया। एक आपको एजेंसी के बारे में बताती हूँ, I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उनका खुद का कहना है कि जितनी भी उनकी कंप्लेंट्स आती है, मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती है जब फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, उसके 5-6 घंटे बाद। देख के चलिएगा, सिर्फ वही पैसा रिकवर हो पाता है जो 1 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर उनके पास कॉल आया हो। कॉल का नंबर मैं सभी आपके ऑडियंस को भी बता देना चाहती हूँ, इट्स 1930। आप याद करके चलिए, फ्रॉड हुआ नहीं, नेक्स्ट मिनट में आपने कॉल करना है 1930 पर। अगर आपने 2-3 घंटे बाद कॉल किया, हैकर्स इतने स्मार्ट होते हैं, वो समझ गए हैं कि ठीक है हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है, वो सारा पैसा मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में डाल देते हैं। सेकेंडली, अगर आपको कोई ईमेल आता है, कोई फिशिंग का ईमेल है, कोई आपको ये ईमेल कर देता है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, इस तरीके के कोई भी मैसेज पे क्लिक ना करें। और अगर इस तरीके के ईमेल आते भी हैं और आपको लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, चक्षु पोर्टल है सरकार का, आप चक्षु पोर्टल पे जाइए और इस ईमेल को वहां पे भेजिए या नंबर भेजिए कि इस नंबर से आया। चक्षु पोर्टल हाथों हाथ वो नंबर ब्लॉक कर देता है, ताकि किसी और के साथ ना हो या कोई गलती से इस तरीके के मैसेजेस पे क्लिक ना करते।
1: भूमिका जी, आपकी इस बात को शायद हमारे श्रोता अच्छे से समझेंगे। भूमिका जी, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी का इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए?
0: अगर आपका अकाउंट हैकर हैक करेगा, तो उसी टाइम पर वो आपका पासवर्ड बदल देगा, ताकि आप एटलीस्ट लॉग इन ना कर पाए। इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि आप अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम ने आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया है, वो किसी बिकॉज ऑफ सम हैकिंग थिंग इट हैज हैपेंड। समटाइम्स आप इंस्टाग्राम की किसी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायोलेट कर देते हैं, तो इंस्टाग्राम आपका डीएक्टिवेट कर देता है अकाउंट। आप मेटा की टीम को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, आप देखेंगे ब्लू टिक जो अकाउंट्स होते हैं उनके पास डायरेक्टली ऑप्शन होता है कि वो सीधा मेटा के कस्टमर केयर से बात करें, और वो उधर उन्हें हाथों हाथ सॉल्यूशन दे देते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ये करिएगा, हमेशा अपना पासवर्ड बदलते रहिए।
1: उनका जी, बहुत सारे युवा जानना चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में अगर हम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि कॉमर्स और आर्ट के स्ट्रीम के लोग इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, क्या ये सच है? अगर कर सकते हैं तो क्या फ्यूचर है इस करियर का?
0: आप देख के चलिए, आगे की जनरेशन में जिस तरीके से AI बढ़ता चला जाएगा, साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। आप जितना AI को अपना डेटा दे रहे हैं, आज तक अभी कोई गाइडलाइंस तरीके से नहीं आई है कि वो आपके डेटा को पूरी तरीके से सिक्योर कर पाए। तो साइबर सिक्योरिटी एंड क्वांटम इज द नेक्स्ट फ्यूचर आफ्टर AI। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में कोर्स करना चाह रहे हैं, तो दिस इज द वेरी राइट टाइम। चाहे आप कॉमर्स फील्ड के हों, चाहे आप BCom किया हो, चाहे आपने BTech किया हो, Everybody can apply for cyber security courses.
1: भूमिका जी, आपने बहुत सारी नई जानकारी साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू फॉर inviting.
2: This was truly an enlightening conversation. I hope you apply these solutions to your life in the most effective ways. And before we move to the next segment, guys, it's time for some music. This one is Ek Junoon from the movie Zindagi Na Milegi Dobara.

0: जुनून सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने का भी है। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी। पार्वती, अभी हम डिजिटल हैबिट्स की बात कर रहे थे और उसी बात से मुझे एक और सवाल याद आ गया।
1: गो ऑन, आई नो वेयर दिस इज हेडिंग।
0: पार्वती बताइए जरा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरे दिन कुछ खास फिजिकली भी नहीं किया, फिर भी शाम तक ऐसा लगे जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई हो?
1: ऑलमोस्ट एवरी डे सोनाली, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज समटाइम्स इट्स नॉट द बॉडी दैट्स टायर्ड, इट्स द माइंड।
0: बिल्कुल, और शायद इसी वजह से आजकल स्पोर्ट्स में सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर ही नहीं बल्कि मेंटल फिटनेस पर भी उतना ही जोर दिया जाता है।
1: एग्जैक्टली, एथलीट्स नो दैट रिकवरी इजंट जस्ट अबाउट रेस्टिंग योर मसल्स, योर माइंड नीड्स अ रीसेट टू, एंड ऑनेस्टली दैट्स समथिंग ऑल ऑफ अस कैन लर्न फ्रॉम।
0: पार्वती, लेकिन रीसेट का मतलब सिर्फ छुट्टी लेना तो नहीं है ना?
1: नॉट एट ऑल, sometimes it starts with something as simple as putting your phone away for a while, like stepping outside or taking a short walk without checking notifications every few minutes.
0: सही बात है, हम ब्रेक लेने के लिए भी फोन ही उठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि दिमाग को आराम ही नहीं मिलता।
1: Exactly, and you know what Sonali, a real break is when your mind gets a chance to slow down. Even 15 or 20 minutes can make a surprising difference.
0: दोस्तों, एक्टिव रहना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर कोई एथलीट हो, लेकिन चलना, साइकिल चलाना या अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेलना, उतना ही तो हम सब कर ही सकते हैं।
1: एब्सोल्युटली, एंड यू नो व्हाट सोनाली, दिस इज समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, स्पोर्ट्स टीच अस वन ब्यूटीफुल लेसन, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी, स्मॉल रेगुलर एफर्ट्स आर ऑफन द वंस दैट मेक द बिगेस्ट डिफरेंस।
0: पार्वती, लेकिन एक और चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है नींद।
1: दैट्स प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल रीसेट बटन वी हैव। गुड स्लीप हेल्प्स बोथ द माइंड एंड द बॉडी रिकवर फॉर अ फ्रेश स्टार्ट।
0: जब कभी दिन भागदौड़ भरा हो तो दो

0: लिए रुककर गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
1: सो ट्रू, बिकॉज बैलेंस डजंट मीन गिविंग अप ऑन टेक्नोलॉजी, इट मीन्स मेकिंग श्योर टेक्नोलॉजी डजंट टेक अवे एवरी क्वाइट मोमेंट फ्रॉम आवर लाइव्स।
0: दोस्तों, यही तो असली फिटनेस है, जब बॉडी के साथ साथ माइंड भी रेस्ट ले।
1: Couldn't agree more, Sonali. Because when your mind and body work together, you don't just perform better, you feel better.
0: इसी खूबसूरत बात के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत तिनका तिनका from the movie करम।

0: Welcome back to Yuvvani. Sonali, wasn't that a beautiful melody? I loved it. Well, now it's time to move to our next segment, which is Quick Buzz. This segment is where we bring you the biggest updates making headlines all in just a few moments. Let's begin with the weather update. The India Meteorological Department has issued a heavy rainfall alert for 18 states across the country. Assam and Gujarat continue to face the risk of floods and landslides, while strong winds of up to 80 kilometers per hour are expected in parts of Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, and several other regions. Authorities have advised people to stay alert, follow local weather advisories, and avoid unnecessary travel in affected areas.
1: Bharatiya Arthvyavastha ke liye achhi khabar. भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। डोमेस्टिक डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई तेजी के दम पर भारतीय इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
0: एंड हियर्स सम एक्साइटिंग न्यूज फॉर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ मैसिव 36,441 crore rupees allocation for the new Khelo India program. The initiative aims to identify and nurture sporting talent from every corner of the country, strengthen sports infrastructure, and provide young athletes with world-class training and opportunities to compete at the highest level.
1: वहीं भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कोलंबो पहुंच चुकी है। टीम इंडिया कल यानी 7 अगस्त से एक 3 दिवसीय वार्म अप मैच खेलकर अपनी तैयारियों की शुरुआत करेगी। इन्हीं अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ताल से ताल फ्रॉम द मूवी ताल।

0: We hope that that beautiful song added a pleasant touch to your day. And now it's time to turn the pages of history and revisit some remarkable events associated with this day.
1: सबसे पहले बात भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास की। 6 अगस्त 1862 को मद्रास हाई कोर्ट की औपचारिक शुरुआत हुई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत स्थापित ये देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। चेन्नई स्थित इसका परिसर आज दुनिया के सबसे बड़े न्यायालय परिसरों में गिना जाता है।
0: Moving on, here's another important milestone from India's freedom movement and this time through the power of journalism.
1: अब जिक्र एक ऐसे प्रकाशन का जिसने आजादी की लड़ाई में कलम की ताकत को नई पहचान दी। 1906 में अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम का प्रकाशन शुरू हुआ। विपिन चंद्र पाल इसके संस्थापक संपादक थे और बाद में श्री अरविंद ने भी अपने लेखन से इसे नई धार दी। ये अखबार ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी विचारों की बुलंद आवाज बन गया।
0: Doesn't that sound great, Sonali? Today's date also marks a significant achievement in India's medical history.
1: 6 अगस्त 1986 को मुंबई के जसलोक अस्पताल में हर्षा चावड़ा का जन्म हुआ, जिन्हें भारत की पहली वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है। ये उपलब्धि भारतीय चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।
0: Moreover, today is also observed as the Hiroshima Day, which makes us remember that true progress lies not just in scientific and technological advancement.

0: Thank you, everyone. And you were listening to your very own program, Yuvvani. We hope you enjoyed today's program and we'd love to hear your thoughts and suggestions. So do write us at yuvvanifeedback@gmail.com. yuvvanifeedback@gmail.com.
1: कल फिर मिलेंगे इसी समय युववाणी के एक नए कार्यक्रम के साथ. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. मैं हूँ सोनाली.
0: एंड आई एम पार्वती.
1: अपना सुझाव युववाणी feedback@gmail.com पर भेजना ना भूले.
0: नमस्कार.

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, गोबर, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। इससे कंप्रेस्ड बायोगैस देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी। योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
2: पहला फैसला बायोगैस से संबंधित है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम एक बनी है। और दूसरा, असम में एक 4-लेन हाईवे का फैसला लिया गया है। टोटल 32,000 करोड़ रुपीज के ये दोनों प्रोजेक्ट और स्कीम्स मिला के है। हम सब जानते हैं कि भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है उसमें करीब 50% इम्पोर्ट करना पड़ता है। इस 50% इम्पोर्ट को कैसे कम करें उसके लिए लगातार कई प्रयास चल रहे हैं।
1: संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुदान की मांग लोक लेखा समिति की 39वीं रिपोर्ट में पहचाने गए 2 विशिष्ट मदों से संबंधित है। उधर लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े औषधि नियमों को अधिसूचित किया है। यह नियम औषधि नियम 1945 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दायर सभी आवेदनों पर लागू होगा। इस संशोधन के बाद आवेदक को एक निश्चित अवधि के लिए आगे आवेदन करने से रोक दिया जाएगा। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारे नमस्कार। तो अतुल भाई
1: जी, पायल बहन,
0: रोज की तरह ही आज भी हम लोकरंजनी कार्यक्रम अपने सभी श्रोताओं के, सभी भाई बहनों के लिए लेकर आए हैं। और भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का पावन महीना चला हुआ है, तो ऐसे इतने प्यारे और पावन महीने में, इतने सुंदर महीने में, भाई क्यों बात ना हो सावन के गीतों की।
1: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर के आए हैं सावन गीत, तो सुनवाते हैं टेकचंद की आवाज़ में ये गीत।

0: कैसी ठंडी ठंडी पड़े है फुहार, महीना आया सावन का। तो अतुल भाई, अभी हम अपने सभी भाई बहनों को सुनवा रहे थे टेकचंद की आवाज़ में ये सावन का गीत,
1: और अपने भाइयों को मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं कोमल चौधरी की आवाज़ में ये सावन गीत।

0: तो पायल भाई ने अभी हमारे भाई सुन रहे थे कोमल चौधरी की आवाज़ में ये सावन गीत, और भाई अपने भाई को सुनवाते हैं ब्रह्मपाल नागर की आवाज़ में ये
1: ये सावन
0: सावन गीत।
1: गीत।

0: आया सावन महीना, झूला तो झूले रेशम डोर की। तो भाई बहुत ही बढ़िया जो है सावन का गीत हमने अपने सभी भाई बहनों को सुनवाया ब्रह्मपाल नागर की आवाज़ में।
1: बिल्कुल
0: और अब चलते चलते एक भाई क्यों ना भगवान भोलेनाथ का ही भजन, सावन का महीना है अतुल भाई, हो जाए और सुनवाते हैं राजेंद्र जाटव की आवाज़ में ये भजन, तू राजा की राज दुलारी मैं सरप लंगोटियाड़ा सूं।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे राजेंद्र जाटव की आवाज़ में ये शिव भजन। और इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज धर्मेंद्र और
3: संचित जैन
2: का नमस्कार।
3: सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार।
2: जी संचित, और नमस्कार के साथ साथ हम अपने श्रोताओं को यह भी बताना चाहेंगे कि खेलों की दुनिया पूरी तरह से आबाद है और विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं लगातार चल रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साल है ये खेलों के लिहाज से। अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हुए हैं। भारत की मेज़बानी में BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी है, इसके बाद एशियन गेम्स होना है, उसके साथ साथ क्रिकेट के भी कई सारे मुकाबले हैं। तो हम आज शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, क्योंकि भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली में BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 का आयोजन होना है और उसके लिए ड्रॉ कल निकाले गए, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ा मुश्किल ड्रॉ मिला है। हालांकि जो भारतीय टीम के चीफ कोच हैं गोपीचंद, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कागज़ों पर अगर देखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर दिखाई देता है। उस बारे में सुनते हैं ये रिपोर्ट।

17 साल बाद भारत में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की वापसी हो रही है। नई दिल्ली दुनिया की प्रीमियर बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। 2009 में पहली बार इसकी मेजबानी हैदराबाद ने की थी और अब राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए अपने हुनर का हर एक कतरा झोंक देंगे। 17 से 23 अगस्त तक होने वाले मुकाबलों के लिए ड्रॉ का ऐलान कर दिया गया है। भारत के अग्रणी शटलरों को एक कठिन ड्रॉ मिला है, जिससे देश की सबसे बड़ी पदक की उम्मीद वाले खिलाड़ियों को भी घरेलू मैदान का लाभ उठाने के प्रयास में चुनौतीपूर्ण रास्तों का सामना करना पड़ेगा। मेजबान भारत की ओर से 4 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी मैदान में हैं, जिनमें 5वीं वरीयता प्राप्त पुरुष जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सबसे आगे हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु 9वीं वरीयता प्राप्त हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन को 14वीं वरीयता मिली है, जबकि ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो को मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता हासिल है। हालांकि ड्रॉ भारत के शीर्ष सितारों के विशेष रूप से अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में ही इनकी दुनिया के कुछ श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ मुकाबला होने की संभावना दिखाई दे रही है। सबकी निगाहें 5 बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता पीवी सिंधु पर होगी। सिंधु ने हाल ही में जापान ओपन जीतकर अपनी फॉर्म वापस पा ली है। अच्छी बात यह है कि पदक दौड़ से पहले उनका सामना वर्ल्ड नंबर 1 एनसी यंग या डिफेंडिंग चैंपियन अकाने यामागुची से नहीं होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबेल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, लेकिन अगर वो आगे बढ़ती हैं तो उन्हें कहीं अधिक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सिंधु का सामना राउंड ऑफ 16 में चीन की 3री वरीयता प्राप्त वांग झी यी से होने की संभावना है, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी से हो सकता है। सिंधु को ड्रॉ के उसी भाग में रखा गया है जहां मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आनसे यंग भी शामिल हैं। महिला सिंगल्स में ही युवा सनसनी उन्नति हुडा विश्व चैंपियनशिप में अपना पदार्पण करने जा रही हैं। वो अपने अभियान की शुरुआत म्यांमार की शटलर थेत हतार थुजार के खिलाफ करेंगी। घरेलू मैदान पर खेलने का उन्हें पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है। अगर वो तीसरे दौर से आगे निकल जाती हैं तो क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से हो सकता है। मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन को पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन के खिलाफ एक आसान मुकाबला मिला है, लेकिन 2022 विश्व चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लक्ष्य के लिए आगे चलकर मुकाबला काफी कठिन होने की संभावना है। लक्ष्य के लिए असली चुनौती प्री क्वार्टर फाइनल में हो सकती है, जहां उनका सामना थाईलैंड के 2री वरीयता प्राप्त कुनलावुत विदित सर से होने की संभावना है। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के एलेक्स लेनियर या क्रिस्टो पोपोव से भी हो सकता है, जो दोनों ही यूरोप के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में शुमार हैं। वहीं एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता आयुष शेट्टी को पहले ही दौर में भारतीय खिलाड़ियों में सबसे कठिन ड्रॉ मिला है। बिना वरीयता वाले आयुष राउंड ऑफ 64 में विश्व नंबर 1 और शीर्ष वरीयता प्राप्त

0: का रूप रास्मुसेन से हो सकता है। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो को भी पहले दौर में बाई मिली है। इस सीजन में सिंगापुर ओपन सुपर 750 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 15वीं वरीयता प्राप्त ये जोड़ी नई दिल्ली में घरेलू दर्शकों के समर्थन का लाभ उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वे अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। उनका पहला कठिन टेस्ट राउंड ऑफ 16 में चीन की जोड़ी के खिलाफ हो सकता है। वहीं रोहन कपूर और जी ऋतुका शिवानी का सामना कनाडा की जोड़ी से होगा। विमेंस डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, जो टूर्नामेंट में बिना वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, स्पेन की पौला लोपेज और लुका रोड्रिगेज के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। भारत ने इस बार कई पदक जीतने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन ड्रॉ इस बात का संकेत दे रहा है कि काम इतना आसान नहीं है। घरेलू दर्शकों के समर्थन के बाद भी पोडियम तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। आइए सुनते हैं भारत के चीफ नेशनल कोच पुलेला गोपीचंद ड्रॉ के बारे में क्या कहते हैं।
1: आई थिंक ओवरऑल ड्रॉ अच्छा लग रहा है। एक दो प्लेयर्स के लिए थोड़ा पहला टफ राउंड है, बट वो क्लियर करेंगे तो बाकी राउंड्स थोड़ा ईज हो जाएंगे। बट ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द वे द ड्रॉ इज फेवरिंग द इंडियन प्लेयर्स, और इंडियन कंडीशंस के साथ और अपना क्राउड सपोर्ट के साथ आई एम श्योर वील बी एबल टू पुल सम मोर ऑफ दोज मैचेस। सात्विक और चिराग हमारे मोस्ट प्रोस्पेक्टिव पोडियम फिनिशर्स हैं, और उम्मीद है कि इस बार वो डेफिनेटली जीतेंगे। विमेंस में यस ऑफ कोर्स सिंधु इज वन ऑफ आवर फेवरेट्स। द वे शी इज प्लेड इन जापान आई थिंक गिव्स अस द कॉन्फिडेंस दैट शी कैन गो ऑन टू गेट अनदर पोडियम फिनिश एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। मेन सिंगल्स में लक्ष्य और आयुष दोनों का आई वुड से इट्स एन ईजी ड्रॉ। आयुष का पहला राउंड शी युची के साथ है, जो वर्ल्ड नंबर वन है, वो टफ होगा। अगर वो क्लियर होने से आई थिंक द रेस्ट ऑफ द ड्रॉ इज मच बेटर ऑफ। एंड लक्ष्य सेन हैज अ टफ प्री क्वार्टर अगेंस्ट कुंडलावत विट्टीसारन, एंड अ क्वार्टर विच इज अगेंस्ट winners of Anders Antonsen and Christo Popov, but I do believe he has the potential to do well. I'm hoping that we have singles and doubles, both have a definite chance in the podium.
0: उधर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव संजय मिश्रा ने बताया कि चैंपियनशिप के लिए इंदिरा गांधी मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम पूरी तरह तैयार है, इसका नवीनीकरण किया गया है। उन्हें विश्वास है कि यह आयोजन विश्व बैडमिंटन के लिए नए मानक स्थापित करेगा।
2: स्टेडियम ऑलमोस्ट रेडी है और इस पर बहुत काम हुआ है। काफ़ी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और साई ने काफ़ी मेहनत किया है, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि ये शायद वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी। एक्चुअली इंडिया ओपन ही हमने बोला था कि वो एक टेस्ट इवेंट है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो और इसलिए हमने किया था कि उसमें जो डिफ़िकल्टीज हैं टूर्नामेंट में, उस स्टेडियम में नया स्टेडियम था तो उस पर सब काम हुआ है, और वो जो भी प्रॉब्लम्स उस समय आए थे वो सब पे हमने काम किया और वो सारी चीज़ें ठीक कर चुके हैं।
0: आयुष शेट्टी को मिले मुश्किल ड्रॉ के बारे में संजय मिश्रा क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनाते हैं।
2: एक्चुअली इसको मुश्किल नहीं बोलेंगे, आपको वर्ल्ड चैम्पियनशिप है तो आपको खेलना तो पड़ेगा, और ये शी यू की एक ऐसे प्लेयर हैं जो टूर्नामेंट में धीरे धीरे फॉर्म में आते हैं, तो फर्स्ट राउंड होना एक अच्छा है क्योंकि इसको अगर ये बीट किए तो उनका क्वार्टर फाइनल तक वो आराम से जा सकते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये उनके फेवर में है, क्योंकि शीयू की जैसे जैसे टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हैं वो और अच्छे होते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उतना टफ नहीं है, और आयुष का जो गेम है वो ऑफकोर्स ये कर सकते हैं। अभी शीयू की लास्ट टूर्नामेंट में चाओ टियन चैन से अभी हार गए थे, तो मुझे लगता है कि आयुष ही कर सकते हैं।
0: तो आइए हम सब तैयार हो जाएं दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के मुकाबलों को देखने के लिए और बैडमिंटन का लुत्फ उठाने के लिए। तो ये बात थी वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जिसका आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है और मेजबानी भारत करने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी इस समय जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में, जिसकी पूरी रिपोर्ट के साथ हमारे साथी संचित जैन।
3: चलिए अब बात करते हैं BWF सुपर 300 कोरिया मास्टर्स की। विमेन सिंगल्स में बहुत से राउंड ऑफ 16 मैच खेले गए। भारत की अश्मिता चलिहा ने साउथ कोरिया की किम मिन जी को 21-17, 21-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उनका अगला मुकाबला जापान की नंबर वन खिलाड़ी हीना अकेची के साथ खेला जाएगा। वहीं भारत की तन्वी शर्मा ने भारत की ही श्रियांशी को 21-16, 17-21, 21-13 से हरा दिया। रक्षिता श्री ने जापान की मनामी साइजू को 22-20, 21-10 से

0: हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जानने वाली बात यह है कि अब क्वार्टर फाइनल में भारत की ही तन्वी शर्मा रक्षिता श्री के साथ खेलेंगी। वहीं मानसी सिंह चाइना की हैन जियानजी से हार गई, 12-21, 21-14, 17-21 स्कोर रहा। वहीं ईशरानी बरुआ साउथ कोरिया की किम मिन सुन 17-21, 21-18 और 21-19 से हार गई। अनमोल खरब का मैच आज वियतनाम की वू थ्री ट्रैंग से चल रहा था और वह 3 सेट में ये मैच हार गई, 23-21, 15-21, 21-18। मेंस डबल्स की बात करें तो कृष्णा प्रसाद और पृथ्वी रॉय ने साउथ कोरिया के किम यांग ह्युक और शिन टी यांग को 21-18, 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उनका क्वार्टर फाइनल में मैच मलेशिया के WC मैन और WYSO के साथ होगा। विमेंस डबल्स की बात करें तो आर ठक्कर और सोनाली सिंह का मैच जापान की एस नकाडे और एम टाकाहाशी के साथ खेला जाएगा। मिक्स डबल्स में भारत के एस मिश्रा और आई भटनागर साउथ कोरिया के टी शिन और किम यू जुंग से 16-21, 21-16, 13-21 से हार गए।
1: तो ये थी बात बैडमिंटन की, और अब आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ, जहां पर भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। और जूडो में तो इस बार कमाल ही हुआ, इंस्पायरिंग स्टोरी हर्ष सिंह की भी रही, जिन्होंने जूडो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। पुरुष जूडो में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल मिला। ये पूरी यात्रा कैसी रही उनकी और किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, ये पूरी बात की हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने हर्ष सिंह के साथ, आपको सुनवाते हैं।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शाहिद आजमी। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई ऐतिहासिक उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक हिस्ट्री क्रिएटर से, जिन्होंने भारतीय जूडो के इतिहास में नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। दिल्ली के रहने वाले हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कैट्स जोशुआ को 10-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हर्ष सिंह राष्ट्रमंडल की जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं गोल्ड मेडलिस्ट हर्ष सिंह से और जानते हैं उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि और आगे के सपनों की कहानी। श्रोताओं, मेरे साथ हर्ष हैं, स्वागत आपका आकाशवाणी में।
3: हेलो सर,
2: बताइए कैसा कंपटीशन था, कैसा मुकाबला था, कमाल कर दिया आप लोगों ने तो। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक नहीं दो नहीं कई पदक जूडो के नाम रहे, बताइए।
3: हाँ जी सर, मेरी जो फाइटें हुई थी वहाँ पे, मतलब दो फाइट मेरी इजी हुई थी और सेमीफाइनल और फाइनल मेरी थोड़ी टफ फाइट थी। दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, एक तो फाइनल वाला उसमें से एक ओलंपिक खेला हुआ है, पार्टिसिपेशन किया हुआ उसने, तो मेरी फाइनल फाइट थोड़ी टफ थी पर मैंने उसको बीट किया और अभी कॉमनवेल्थ चैंपियन बन गया हूं सर।
2: जो प्लान बनाया था, जिस अकॉर्डिंग आप गए थे, कुछ बाउट्स आपके आसान थी, मुश्किल थी, कैसे क्या प्लान बना के गए?
3: मेरा बस यही प्लान था कि सर एक अटैक करना है और उसमें स्कोर लेके टाइम कवर करना है, बस मेरा ये प्लान था, ये स्ट्रेटेजी थी और मैंने वही किया कि एक स्कोर कवर करके और पूरी फाइट में अपने टाइम निकाल के थोड़ा सेफली लेके गोल्ड जीत।
2: जब गोल्ड मेडल का मुकाबला था, टेंशन भी रहा होगा, गोल्ड जीतना, देश का नाम रोशन करना है, कोच की होप्स थी, पूरे देश की होप्स थी, जब उतरे थे माइंड में क्या चल रहा था और कैसे गोल्ड मेडल जीता आपने?
3: माइंड में सर बस गोल्ड ही चल रहा था, अपनी लास्ट फाइट चल रही थी कि एक फाइट है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करके मेंटली फिजिकली सब जगह से पुश करके माइंडसेट को भी फोकस रख के मैट पे चढ़ना था और वो मैट पे गया मैं यही माइंडसेट रख के और ये सोच के माइंड में कि फैमिली देख रही होगी, पूरा देश देख रहा है, अभी फाइनल फाइट तो सारे ही देखते हैं और फिर तो बस यही था कि गोल्ड जीतना है, देश वाले सब देख रहे हैं, इंडिया में सब अप्रिशिएट करेंगे कि गोल्ड पहली बार आया इंडिया का।
2: प्रिपेयर अपने आप को कैसे किया जब गोल्ड मेडल के लिए पहुंचे थे, कोच ने भी कुछ हिदायत दी होगी?
3: बस क्या कहते हैं, जब हम फाइट के लिए जा रहे थे वहां से, जैसे नाम अनाउंस हो जाता है तो हम 10 मिनट पहले हमें बुला लिया जाता है वहां पे, तो बस वीरेंद्र सर हैं वहां पे हमारे साथ थे को, तो वो यही कह रहे थे कि हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी अगर ये फाइट तू जीतता है और ये सिर्फ एक फाइट है, ये जीतता है तो हिस्ट्री क्रिएट होगी, पहला तू बन जाएगा जो लाइफ टाइम जिसे कोई नहीं छीन सकता कि पहली बार किसी ने गोल्ड जीता था, वो तू बन सकता है, बस अपना माइंड सेट अच्छा रख के और अच्छे जो हमने प्लान तैयार किया उस हिसाब लड़ेगा तो जीतेंगे।
2: गोल्ड जीत गए, खुशी तो दुपाला रही होगी।
3: हाँ जी, हाँ जी, पूरे सब खुश हैं सर, मैं तो मतलब जैसे ही गोल्ड आया था मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, बहुत मतलब खुश था मैं और फैमिली से भी फोन आ रहे थे, हर जगह से कॉल्स आ रहे थे।
2: फैमिली की बात की तो फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए, दिल्ली के रहने वाले, कब से जूडो करते हैं, अपने बारे में?
3: सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, द्वारका मोड़ से यहाँ रहता हूँ मैं, द्वारका मोड़ पे, और क्या कहते हैं, मैं बचपन से ही जूडो कर रहा हूँ, जैसे स्कूल में हमारे जूडो थी, हम

0: वहाँ पे 2-3 गेम करते थे बचपन में, जैसे स्पोर्ट्स पीरियड होता है तो उसमें एक करते हैं बच्चे कभी कभार, तो मैं उसमें जूडो, कबड्डी और कुश्ती तीनों चीज करता था। तो मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जूडो में रहा, क्योंकि उसमें ड्रेस वगैरह होती है, बेल्ट होती है, तो वो बच्चा देखता है तो अच्छा लगता है कि ड्रेस वगैरह है, ब्लैक बेल्ट है। वो बचपन में माइंड वैसा बन जाता है कि ब्लैक बेल्ट लेनी है, ब्लैक बेल्ट लेनी है बस। इसलिए उसी के चक्कर में मैं जूडो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, तो मैंने वहीं से स्टार्ट करी है।
1: शुरुआत की थी, सोचा था यहाँ तक जाऊंगा, देश के खेल मंत्री मिलेंगे?
0: नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं शुरुआत ऐसा किया है कि मतलब कम्पीट कर रहा हूँ, हार रहा हूँ, मैं ज्यादातर मैं हार रही हूँ शुरुआत से बचपन में, पर मैं फन के लिए किया है गेम ज्यादातर। फिर मेरा 2019 के बाद से थोड़ा माइंडसेट प्रोफेशनली जाने का ट्राई करा है, और उसमें जैसे लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में मैंने अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं करी थी, तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट रखी, उसके बाद मेरे रिजल्ट आने स्टार्ट हुए हैं अच्छे।
1: कुछ टारगेट सेट किया है?
0: टारगेट सर सिर्फ ओलंपिक्स हैं 2028 के, और क्या कहते हैं इसमें, और पहला टारगेट ये है कि एशियन गेम्स में मेडल जीतूं, और एक जो हमारा यूरोपियन सर्किट होते हैं ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड प्रिक्स, इनमें कोई एक मेडल जीतूं, अभी मेरा ये टारगेट है। इससे ही मेरे ओलंपिक क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
1: इस मेडल से एशियन गेम्स के लिए कितना बूस्ट आपको मिला?
0: इससे सर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला आगे की तैयारी के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सब चीज के लिए। बहुत एक अच्छा माइंडसेट से मैं आगे की ट्रेनिंग करूंगा, अपना जो भी रिकवरी है सारी चीज अब अच्छा बेस्ट पे रख के और मतलब तैयारी करूं आगे के लिए।
1: पोडियम फिनिश होगा एशियन गेम्स में हर्ष का?
0: हाँ जी सर बिल्कुल, अगर मैं पूरी तैयारी से जाऊंगा वहाँ पे, अभी 3 महीने है हमारे पास, हम 3 महीने पूरा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और वहाँ बस मेडल के लिए ही जाएंगे। वहाँ खेलो इंडिया एथलीट हूँ, वहाँ से मेरे को 2-3 साल से पूरा सपोर्ट है और स्कॉलरशिप मिलती है मेरे को वहाँ से, और इससे बहुत हेल्प होती है मेरी डाइट में, और मैं कुछ भी मतलब स्पोर्ट्स का कुछ खरीदना चाहता था उन पैसों से उनको यूज करता हूँ मैं। और मैं आर्मी में हवलदार रैंक से हूँ, और आर्मी का मेरे को पूरा सपोर्ट है हमेशा से ही, और क्या कहते हैं 2024 में मैं आर्मी में हो गया था, तो वहाँ से आर्मी वाले सपोर्ट करते हैं मेरे को हर एक चीज के लिए,
1: जी
0: गेम के लिए मेरे को फ्री रखते हैं, मेरा माइंड बिल्कुल फ्री रहता है, ऐसा नहीं लगता कि मैं जॉब कर रहा हूँ, वो हर एक चीज से सपोर्ट रखते हैं मेरे को बस।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रमंडल खेल 2026 के स्वर्ण पदक विजेता, भारतीय जूडो के इतिहास में नया अध्याय लिखने वाले हर्ष सिंह से हमारी विशेष बातचीत। इसी के साथ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ नई दिल्ली से मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।
2: और इस इंस्पायरिंग स्टोरी के बाद अब चलते हैं अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तरफ, जो यूजेन में चल रही है और उसका दूसरा दिन है आज। पहले दिन क्या कुछ हुआ, भारत के लिए कैसा परिणाम रहा, ये आपको सुनाते हैं। अमेरिका के ओरेगन राज्य के यूजेन में आयोजित विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले दिन भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरानीधरन के साथ साथ महिला डिस्कस थ्रोअर अमानत कंबोज ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। यादव ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो समूह एक के क्वालिफाइंग दौर में 69.87 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया और कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रहे। उनसे आगे दक्षिण अफ्रीका के खिताब के प्रबल दावेदार जॉन हैंड्रिक हैमेंस रहे, जिन्होंने समूह बी में 76.02 मीटर थ्रो की। 19 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी का इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 74.49 मीटर है, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। हैमेंस एकमात्र ऐसे प्रतियोगी थे जिन्होंने 72.50 मीटर के स्वतः क्वालिफाई करने के अंक को पार किया। धरणीधरन फाइनल राउंड में पहुंचे और समूह बी के क्वालिफाइंग दौर में 68.07 मीटर के थ्रो के साथ पांचवें स्थान पर रहने के बाद कुल मिलाकर 12वां और अंतिम स्थान प्राप्त किया। जिन खिलाड़ियों ने 72.50 मीटर के स्वतः क्वालिफाइंग अंक को पार किया या कम से कम सर्वश्रेष्ठ 12 स्थान प्राप्त किए, वे कल होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। भारतीय सुपरस्टार नीरज चोपड़ा का इस स्पर्धा में वर्तमान विश्व रिकॉर्ड है, जिन्होंने 2016 में पोलैंड के बियर्ट्सगोज में आयोजित चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो किया था। महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में अमानत ने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 52.58 मीटर का थ्रो किया और ग्रुप ए क्वालिफाइंग राउंड में छठे स्थान पर रहीं। इस तरह उन्होंने फाइनल में जगह बनाने के लिए 12वां और अंतिम स्थान हासिल किया। चीन की सू यिक्सिन ने दोनों क्वालिफाइंग ग्रुप में 58.06 मीटर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि उनकी हमवतन मा चेनिये 57.72 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। जिन खिलाड़ियों ने 55 मीटर के स्वतः क्वालिफाई करने के अंक को पार किया या सर्वश्रेष्ठ 12 प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे, वे आज रात होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। उधर भारत के मोगली वेंकटराम पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए, जबकि उविन आनंद पहले राउंड की हीट रेस के बाद इस स्पर्धा से बाहर हो गए। वेंकटराम ने हीट 5 में तीसरा स्थान हासिल किया और 1:52.81 का समय लेकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। आनंद ने हीट 1 में 7वां और कुल मिलाकर 30वां स्थान प्राप्त किया और 1:52.37 का समय लिया। पांचों हीट में युगांडा के शेफेक मुरुंगी ने सबसे तेज समय 1:46.64 दर्ज किया, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। प्रत्येक हीट में पहले 5 स्थान पर रहने वाले धावक और शेष पांचों हीट में से 2 सबसे तेज धावक सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। भारतीय 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम पहले ही राउंड में प्रतियोगिता से बाहर हो गई, क्योंकि वो अपनी हीट में 3:22.85 के समय के साथ चौथे स्थान पर रही। पीयूष राज, ताहूर खातून, सैयद सबीर और थिया अरुमुगम की चौकड़ी ने तीनों हिट में कुल मिलाकर 11वां स्थान हासिल किया। अमेरिका ने 3:18.26 के समय के साथ पहले राउंड में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तीनों हिट से शीर्ष तीन टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। द्विवार्षिक चैंपियनशिप के 2022 संस्करण में भारत ने मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में 3:17.76 के एशियाई अंडर 20 रिकॉर्ड समय के साथ ऐतिहासिक रजत पदक जीता था, जो अभी भी विश्व अंडर 20 रिकॉर्ड में दूसरा सर्वश्रेष्ठ समय है। आज होने वाले मुकाबलों की बात करें तो शॉटपुट में महिलाओं का क्वालिफिकेशन मुकाबला होगा, 3000 मीटर स्टीपल चेज पुरुषों का होगा जिसका राउंड वन होगा, हेप्टाथलॉन में महिलाओं का लॉन्ग जंप इवेंट होगा, 400 मीटर हर्डल्स में राउंड वन महिलाओं के लिए होगा, हाई जंप होगा पुरुषों का क्वालिफिकेशन, 400 मीटर हर्डल्स पुरुषों का राउंड वन, ट्रिपल जंप पुरुषों का क्वालिफिकेशन, 4x100 मीटर रिले राउंड वन मिक्स्ड टीम के लिए, 400 मीटर महिलाओं के लिए राउंड वन, हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो, 400 मीटर पुरुषों के लिए राउंड वन, डिस्कस थ्रो होगा महिलाओं का फाइनल, पोल वॉल्ट होगा क्वालिफिकेशन पुरुषों के लिए, हेप्टाथलॉन में 800 मीटर का मुकाबला होगा महिलाओं के लिए, 1500 मीटर का पुरुषों के लिए राउंड वन मुकाबला होगा, 1500 मीटर में महिलाओं के लिए भी राउंड वन मुकाबला होगा, लॉन्ग जंप का फाइनल होगा महिलाओं के लिए, शॉटपुट होगा महिलाओं के लिए फाइनल, 400 मीटर पुरुषों के लिए होगा सेमीफाइनल, 400 मीटर महिलाओं के लिए भी सेमीफाइनल होगा और 100 मीटर महिलाओं का फाइनल होगा, साथ ही साथ पुरुषों का 100 मीटर फाइनल भी आज ही देर रात भारतीय समय के अनुसार होना है। इनमें कई भारतीय खिलाड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेंगे, तो तैयार रहिए आज के मुकाबलों के लिए भी। हालांकि मेडल टैली में अभी भारत का खाता नहीं खुला है, लेकिन आज उम्मीद है कि वो काम भी पूरा हो सकता है। तो एथलेटिक्स की भी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, क्योंकि एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के मुकाबले इन दिनों भारत में विभिन्न मैदानों पर चल रहे हैं और संचित बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, ताजा तरीन क्या रिजल्ट आया है।
3: चलिए अब बात करते हैं ड्यूरंड कप 2026 की। ड्यूरंड कप 2026 में कल दो अहम मुकाबले खेले गए। इंडियन नेवी ने नेरोका एफसी को 2-0 से हरा दिया, वहीं आर्मी रेड ने बागपत एफसी को 4-0 से हरा दिया। स्टैंडिंग्स की बात करें तो कल के मैचों के बाद ग्रुप ए में मोहन बगान 6 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर है। ईस्ट बंगाल और साउथ यूनाइटेड एफसी 3-3 पॉइंट के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पे है और सीआईएसएफ अभी 0 पॉइंट्स पर ही है। ग्रुप बी को देखा जाए तो आर्मी रेड 6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे है, समेलेश्वरी 6 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पे है, मोहम्मेदन 3 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पे और बागपत एफसी अभी 0 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है। ग्रुप सी में एससी दिल्ली 3 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे, इंडियन एयरफोर्स 3 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पे, जमशेदपुर एफसी 3 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पे, डिफेंडर्स एफसी 0 पॉइंट्स पर है। ग्रुप डी में रंगडाई 6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे है, इंडियन नेवी 3 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पे, ट्राव एफसी और नेरोका एफसी 1-1 पॉइंट के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर है। ग्रुप ई में लैंग सिंह 3 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे, लजोंग 3 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पे और नोंगसे और MBY 0 पॉइंट्स के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर है। ग्रुप एफ की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 3 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे, FCI 3 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पे, कार्बी एंगलोंग और बडोलैंड FC 0 पॉइंट्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पे है।
2: और अब आपके लिए चलते हैं शतरंज की बिसात पर। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 के चौथे दिन और ब्लिट्स के पहले दिन भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 18 अंक के साथ अपनी बढ़त को 1.5 अंकों तक मजबूत स्थिति में ले गए हैं। प्रज्ञानंद ने ब्लिट्स के शुरुआती 9 राउंड में बिना कोई मैच हारे 9 में से 6 अंक हासिल किए। उन्होंने इस सत्र में 3 जीत और 6 ड्रॉ दर्ज किए। रैपिड वर्क के 12 अंकों को मिलाकर प्रज्ञानंद अब कुल 18 अंकों के साथ एकल रूप से शीर्ष पर बने हुए हैं। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव 16.5 अंकों के साथ प्रज्ञानंद के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जबकि अमेरिका के वैसली सो उनसे पीछे हैं। वर्तमान स्टैंडिंग के अनुसार प्रज्ञानंद 18 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, सिंदारोव 16.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर, वैसली सो 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर, एरोनियन 14.5 अंकों के साथ चौथे स्थान पर, वैन फोरेस्ट 13 अंक लेकर पांचवें स्थान पर और इतने ही अंक लेकर फैबियानो कारुआना संयुक्त रूप से वैन फॉरेस्ट के साथ बने हुए हैं। अनीश गिरी 12 अंक के साथ सातवें स्थान पर हैं, केमार 11.5 अंक के साथ आठवें, इतने ही अंक लेकर डोमिन ग्वेज भी संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर हैं, जबकि दसवें और अंतिम स्थान पर लियांग हैं, जिनके 10 अंक हैं। शतरंज के बाद अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर।
3: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जा रही है और इसमें कल दो अहम गेम खेले गए। पहले मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली 6 को 9 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो अभी सेंट्रल दिल्ली किंग्स 4 गेम खेल के चारों जीते हैं और 8 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर वेस्ट दिल्ली लायंस है 4 अंकों के साथ। तीसरे स्थान पर नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स है 2 अंकों के साथ। न्यू दिल्ली टाइगर्स चौथे स्थान पे है 2 अंकों के साथ। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स 5वें स्थान पर है 2 अंकों के साथ। पुरानी दिल्ली 6 नंबर पे है 2 पॉइंट्स के साथ। आउटर दिल्ली वॉरियर्स 7वें नंबर पे है 2 पॉइंट्स के साथ। और लास्ट में ईस्ट दिल्ली राइडर्स है जो अभी तक एक भी अंक नहीं कमा पाए हैं।
2: क्रिकेट की ही बात चली है तो हम आपको बता दें कि श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम कल से कोलंबो में 3 दिवसीय वार्मअप मैच खेलेगी। मुकाबला नॉन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लब मैदान पर श्रीलंका 11 के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच 15 अगस्त से गोल में शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारियों का अहम हिस्सा होगा। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों का सबसे बड़ा फोकस स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपनी तकनीक को और मजबूत करना रहेगा। हाल के महीनों में भारत को घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्पिन के सामने संघर्ष करना पड़ा था। श्रीलंका की परिस्थितियां भी स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं और मेजबान टीम के पास घरेलू हालात का फायदा उठाने वाले अनुभवी स्पिनर मौजूद हैं। ऐसे में पहले टेस्ट से पहले यह अभ्यास मैच भारतीय बल्लेबाजों के लिए खुद को परखने और कमजोरियों पर काम करने का अच्छा मौका होगा। कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल समेत टीम के प्रमुख बल्लेबाजों ने कोलंबो रवाना होने से पहले अपने अपने घरेलू सेंटर पर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ विशेष अभ्यास किया है। भारत ने श्रीलंका में पिछले टेस्ट सीरीज 2017 में खेली थी। पिछले 8 सालों में भारतीय टीम में बड़े बदलाव हुए हैं। मौजूदा टेस्ट स्क्वाड में केवल केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव है। ऐसे में ये अभ्यास मैच काफी अहम हो सकता है भारत के लिए। और उधर क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस साल के अंत में भारतीय महिला टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के कार्यक्रम में आज संशोधन किया ताकि एक टेस्ट और 3 एक दिवसीय मैच के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को भी इसमें शामिल किया जा सके। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार एकमात्र टेस्ट मैच 9 से 12 दिसंबर तक खेला जाएगा। इसके बाद 16 से 22 दिसंबर के बीच 3 मैच की एक दिवसीय श्रृंखला आयोजित होगी। भारतीय महिला टीम दक्षिण अफ्रीका में एक अतिरिक्त सप्ताह तक रुकेगी और 26 से 30 दिसंबर के बीच 3 मैच की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला खेलेगी। हॉकी से भी एक खबर है, वो ये कि हॉकी इंडिया ने AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 30 अगस्त से 13 दिसंबर तक चीन के मोकी में खेला जाएगा। टीम में 18 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जबकि 2 खिलाड़ियों को वैकल्पिक के रूप में रखा गया है। टीम की कप्तानी मिडफील्डर खैदेम शिलेइमा चानू करेंगी। मुख्य कोच टीम व्हाइट के मार्गदर्शन में टीम ने पिछले कुछ महीनों से गहन तैयारी की है। और उधर अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के बोलेंग में अक्टूबर 2026 में एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी जिसे राज्य के साहसिक खेलों और वैश्विक पर्यटन की पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ
4: संचित जैन
2: को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
4: नमस्कार सभी को।
5: खेल खिलाड़ी खेलों
4: का आईना।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के। और आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन होता है हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम, जिसमें हम अपने भाइयों का मनोरंजन करते हैं उनकी पसंद के कलाकार के द्वारा।
1: बिल्कुल। और देखिए, हर दिन अपने आप में अतुल भाई खास होता है,
0: बिल्कुल
1: और आज 6 अगस्त का दिन है। आज भी एक खास दिन है, जो कि है हिरोशिमा दिवस, जो साल के 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय की तबाही और उसकी याद में समर्पित है।
0: बिल्कुल। और देखिए, इस भीषण विस्फोट से शहर का बड़ा हिस्सा, जैसा कि आपने बताया, कि मिनटों में ही खाक हो गया था पायल बहन, और लगभग 70 से 1,30,000 लोग तुरंत जो इसमें मारे गए थे।
1: बिल्कुल। और इसका बहुत लंबा यानी कि दीर्घकालिक प्रभाव रहा अतुल भाई। साल के अंत तक जो रेडिएशन था, उसका गंभीर चोटों के कारण मरने वालों का कुल आंकड़ा जो था वो 1,40,000 तक पहुंच गया था।
0: बिल्कुल। तो यही है कि भाई, यही जो दिन है दुनिया भर में शांति, अहिंसा और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का संदेश देता है।
1: बिल्कुल। देखिए, कहते हैं ना, कहीं भी लड़ाई से बात नहीं बनती, जहाँ भी बात बनती है शांति और सद्भाव से बात बनती है। और भाई, देश भी दुनिया भी तभी तरक्की कर पाती है। और भाई, हम बात कर रहे थे जो है ख़ास दिन की, तो ख़ास दिन में बातें, जो जानकारियाँ हैं, हम लगातार अपने जितने भी बहन भाई हैं सबको देते रहते हैं। और भाई, कुछ जानकारी हम ऐसी देंगे यानी कि डिजिटल सेवाओं से जुड़ी हुई। और भाई, डिजिटल यानी कि आजकल कहते हैं ना कि भाई आगे बढ़ने की हमने बात करी, तो दुनिया, समाज जो है वो, हर देश आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। आगे बढ़ना चाहता है, अपने नागरिकों को भाई अच्छे से अच्छे ज्ञान और आगे बढ़ने की जो कहते हैं ना तरबियत, एक तरह से देनी
0: सुविधाएं
1: चाहिए,
0: देना चाहता हूँ।
1: सुविधाएं देनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बिल्कुल
1: तो उसी में भी डिजिटल का एक ज्ञान आता है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अतुल भाई हमारे जीवन में बहुत
0: एक
1: सारी चीज़ों को
0: क्रांति लाई है।
1: क्रांति लाए हैं और बहुत सारी चीज़ों की आसानियत को बढ़ा दिया है।
0: बिल्कुल, चाहे वो कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, मोबाइल के क्षेत्र में हो, तकनीकी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आज जो है सबसे बढ़ चढ़कर जो है क्रांति आई हुई है।
1: बिल्कुल। और बातें हम अपने सब बहन भाइयों से और भी आगे करेंगे। और भाई, आज का जो हमारा खास कार्यक्रम है, जो कि है SMS पर आधारित, भाई उसके लिए जो है हमारे पास SMS अतुल भाई आ चुके हैं। और जो हमारे पहले कलाकार हैं वो हैं
0: बिशन सिंह, और इनके लिए SMS ये आया है हमारे पास में, गांव चोहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है चंडीगढ़ से भेजने वाले हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है पायल बहन पलारी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं नितेश कुमार देवांगन और इनका पूरा परिवार। ये SMS आया है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से भेजने वाले हैं मुर्शद जहानाज और इनका पूरा परिवार। यह SMS आया है गांव चौधरीवास हरियाणा से भेजने वाले हैं मांगेराम सतौड़ और इनका पूरा परिवार।
1: ये समय हमें मिला है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से। भेजने वाले भाई हैं अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये SMS हमें प्राप्त हुआ है डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले भाई हैं राजपाल गजबिये और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव हांडीखेड़ा सिरसा से भी हमें SMS भेजा है राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ने। ये SMS हमें मिला है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले भाई हैं हीरामणि वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। जनकपुरी सहारनपुर से हमें SMS भेजा है जॉन डिकेस्ट्रो और परिवार के सभी सदस्यों ने। कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से भी हमें SMS भेजा है सुरेंद्र संधू, अनीता संधू और परिवार के।

0: पूरा परिवार। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार।
1: ये फरमाइश हमारे पास आई है वडिंग खेड़ा पंजाब से। भेजने वाले भाई हैं मिंटू थॉमस, पिंकी और इनके परिवार के सभी सदस्य। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से ये फरमाइश भेजी है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और परिवार के सभी सदस्यों ने। पद्मा टॉकेज नेपा नगर मध्य प्रदेश से भी हमें फरमाइश भेजी है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और परिवार के सभी सदस्यों ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये फरमाइश हमें भेजी है मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता और परिवार के सभी सदस्य। पटेल नगर मलौट से हमें ये फरमाइश भेजने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार, जजौरिया, गीता रानी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से फरमाइश भेज रहे हैं रवि कुमार राहुल और उनका पूरा परिवार। दुर्गा कॉलोनी हांसी हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और उनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और उनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। तो पायल बहन सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर बिशन सिंह की आवाज़ में ये देशभक्ति रागनी।

0: हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे बिशन सिंह से ये देशभक्ति की रागनी। और अतुल भाई, हमारे जो अगले कलाकार हैं वो हैं
1: इंद्रपाल शर्मा और उनके साथी, इनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गए हैं। ये SMS हमारे पास में आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, भेजने वाले हैं धर्मेंद्र छीपा और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है शादुल शहर राजस्थान से, भेजने वाले हैं रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनका पूरा परिवार। ये SMS आया है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, भेजने वाले हैं विक्रम कडवासरा और इनका पूरा परिवार। ये SMS आया है दादरी गेट भिवानी से, भेजने वाले कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, इनका पूरा परिवार। दादा बाबू रोड गिरी झारखंड से, फरमाई भेज रहे हैं मोहम्मद यासीन अनजान और इनका पूरा परिवार।
0: गांव खोकरा वाली श्रीगंगानगर से हमें SMS भेजा है विनोद बरासा और रोशनी बरासा ने। ये SMS हमें मिला है साहू नगर यवतमाल से, भेजने वाले भाई हैं राहुल मनवर, सरला मनवर और इनके परिवार के सभी सदस्य। मुगी पैठान महाराष्ट्र से ये हमें SMS भेजा है बाबा साहेब कंगणकर और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमें ये SMS भेजा है सुनील पाठक, कमल पाठक और परिवार के सभी सदस्यों ने। गांव फरांसी जिला हिसार से ये SMS भेजा है राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और परिवार के सभी सदस्यों ने। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल और उर्मिला जायसवाल और परिवार के सभी सदस्य। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें SMS भेज रहे हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: संबलपुर का आखिर से हमारे पास में फरमाइश है, ये भेजने वाले हैं फागुराम यादव और इनका पूरा परिवार। ये SMS आया है हमारे पास में भाई हितेंद्र दास का और ये आसाम से हमें ये फरमाइश भेज रहे हैं। ये फरमाइश हमारे पास में है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं PS नहावकर और इनका पूरा परिवार। मलकापुर से फरमाइश भेज रहे हैं नारायण इंगले और इनका पूरा परिवार। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं नरसिंह राजपूत और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ही पायल बहन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं रोशनलाल देवांगन और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी।

0: वाला परिवार।
1: ये फरमाइश हमें भेजी है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। भेजने वाले भाई हैं लालगिरी गोस्वामी और हिमलता। ऊपर कोट मोहल्ला चौकंटी बुलंदशहर से फरमाइश भेजी है मोहम्मद साहिद अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
0: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर इंद्रपाल शर्मा और उनके साथी की आवाज़ में भाई ये देशभक्ति रागनी।

0: तो अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे इंद्रपाल शर्मा जोहड़ी पे ये देशभक्ति की रागनी। और भाई अगले हमारे कलाकार हैं वो हैं ऋषिपाल खदाना, जिनके लिए हमारे पास SMS आ चुके हैं।
1: ये SMS आया है हमारे पास में, गांधीनगर गुजरात से भेजने वाले हैं सुरेश राठौर, उनका पूरा परिवार कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से फरमाइश भेज रहे हैं। ओम प्रकाश राय दुबिहा नेवादा से फरमाइश भेज रहे हैं प्रतीक राय, उनका पूरा परिवार। जटवाड़ा गाजियाबाद से हमें फरमाइश मिली है, भेजने वाले हैं शीश पाल अकेला, उनका पूरा परिवार। उमरखेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं अभिजीत गवहनकर राही, उनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है भोला कलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से, भेजने वाले हैं विजेंद्र कुमार जयजान और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमें मिली है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से, भेजने वाले हैं राजेंद्र कुमार और उनका पूरा परिवार। खुर्जा उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं तिलक राज अरोड़ा और इनका पूरा परिवार।
0: गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से ये SMS हमें भेजा है सैयद मसरूर और इनके पूरे परिवार ने। रामगढ़ कैंट से हमें SMS भेजा है महेंद्र मोदी ठाकुर साहब ने। और ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से SMS भेजा है सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। कलानौर से हमें ये SMS भेजा है नरेंद्र शर्मा और परिवार के सभी सदस्यों ने। खुर्द सिरसा से हमें ये SMS भेजा है बलवंत जाखड़ और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। हनुमानगढ़ टाउन से हमें SMS भेजा है सुल्तान सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं सरवण कुमार प्रजापति और उनके पूरा परिवार। मेरठ कैंट से फरमाइश भेज रहे हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, और ये फरमाइश हमें मिली है जिला नादेड़ ऐताला महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं शंकर लाल जायसवाल उनका पूरा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं दिनेश वर्मा और उनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से फरमाइश भेज रहे हैं कमलेश साहू और इनका पूरा परिवार। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से फरमाइश भेज रहे हैं निसार सलमानी उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमें मिली है MLB रोड ग्वालियर से, भेजने वाले हैं सुरेश कुराना पप्पी उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमें मिली है एकता कॉलोनी रोहतक से, भेजने वाले हैं सीताराम कांगड़ा और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई पहाड़गंज मुल्तान इंडाणा से, भेजने वाले अनिल मोहन का पूरा परिवार। डुमराव बिहार से फरमाइश भेज रहे हैं डॉक्टर W अंसारी। सारीपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी और बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी फरमाइश भेज रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं ऋषिपाल खदाना को ही। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ऋषिपाल खदाना की आवाज़ में ये देशभक्ति रागनी।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे ऋषि पाल खदाना की आवाज़ में हृदय चुकती रागनी। और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा

0: यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता को सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की है। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वली शेट्टी को हराया। अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज भी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, साय के 7:05 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम किसानवाणी का, जो कि है प्रायोजित कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम स्वीकार करें कमलेश मुद्गल और
4: गौतम झा का।
3: नमस्कार। जानकारी से भरपूर ये कार्यक्रम हम आपके लिए ला रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी श्रोता इससे लाभ उठा रहे हैं।
4: बिल्कुल कमलेश जी, बहुत सही कहा आपने कि लाभ तो उठा ही रहे हैं हमारे श्रोता, लेकिन उनके मनोरंजन का भी हम पूरा ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ कृषि से जो संबंधित कार्यक्रम है उसका भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि किसान भाइयों को नई नई जानकारियों से अवगत कराया जाए।
3: और जब हम देखो गौतम, नई नई जानकारी देने की बात करते हैं या जब हम बात करते हैं FPO की, तो मालूम है आपको कि ये FPO क्या है?
4: जी बिल्कुल, FPO जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। और किसानों का एक पंजीकृत समूह होता है कमलेश जी, जो मिलकर खेती, खरीद, भंडारण, प्रोसेसिंग और अपनी उपज की बिक्री करता है ताकि किसानों को बेहतर दाम और कम लागत मिल सके।
3: क्या बात है। और जब हम इसके फायदे बताने की बात करते हैं, यानी जो हमारे किसान भाई इससे लाभ उठा सकते हैं, वो लाभ क्या है? देखो, बीज, खाद और कीटनाशक जो थोक में इनको सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, फसल को ये मिलकर बेच सकते हैं जिससे कि इनको बेहतर कीमत मिल जाएगी, बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं तक इनकी आसान पहुँच हो जाएगी और छोटे किसानों की जो सौदेबाजी की जो ताकत है ना, उसमें भी इनको बढ़ावा मिलता है। और मैं आपसे एक ये बात पूछना चाह रही थी कि आज बड़ा आप ना धीरे धीरे बोल रहे हो कि घर से कुछ दाल रोटी सब्जी कुछ खाकर आए हो कि नहीं खाकर आए हो, ये बता दो मुझे।
4: बिल्कुल खा के आए हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, सब्जी थोड़ा कम हो रहा है ना थाली में, तो वो भी एक प्रभाव कह सकते हैं।
3: लेकिन मैं ये कह रही थी कि दाल तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम दाल खाएंगे तो उससे हमें प्रोटीन मिलेगा और जो प्रोटीन है वो तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम आपस में तो बात कर लेते हैं कि दालें हमें क्यों खानी चाहिए, क्यों हमें इसका उत्पादन करना चाहिए, क्यों हमारे किसान भाई जो है दाल का उत्पादन करें, लेकिन जो विस्तृत जानकारी है वो तो हमारे विशेषज्ञ ही दे पाएंगे ना।
4: बिल्कुल, एक चीज मैं ये इसमें जोड़ना चाहूंगा कमलेश जी, कि जैसे आपने दाल की बात करी तो कभी कभी आपने कहावत सुनी होगी रंगीन मिजाज, तो अगर आदमी खुश है तो वो रंगीन मिजाज का होता है, बातचीत करता है बहुत अच्छी तरीके से, आपको लगेगा कि उसमें कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। कमलेश जी दलहनी फसलों की बात कर रहे थे, दाल की बात कर रहे थे, तो क्यों ना हमारे विशेषज्ञ भी स्टूडियो में मौजूद हैं, बैठे हुए हमारे सामने, तो हम जो विस्तृत जानकारी है अपने श्रोताओं को इनके द्वारा दिलवाते हैं। तो आज के जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर यशवीर सिंह सिवे, आप सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली में।
3: डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद जी, बहुत बहुत।
3: दालें हमारे भोजन का अभिन्न अंग है और कहना चाहिए कि बिना दाल के हम भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो क्यों इतने महत्वपूर्ण है कि दालें हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए?
5: हाँ देखिए, दालों के बिना तो भारत में विशेषकर जो हमारा खाद्यान्न का जो आपूर्ति है या प्रोटीन की पूर्ति है वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन में दाल रोटी का बड़ा महत्व है
3: जी।
5: तो दाल जो है हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं और दाल एक साथ एक तरीके से जब हम उगाते हैं तो हम मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, क्योंकि वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति तो करते ही हैं, क्योंकि ग्रंथियां होती हैं उनकी जड़ों में और जो ग्रंथियां बनती हैं उनमें वातावरण की नाइट्रोजन जो होती है वो इकट्ठा करती है, अर्थात एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी पूर्ति करते हैं और जो आगे आने वाली फसल है उसके लिए भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन को छोड़ कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है मिट्टी का स्वास्थ्य भी

0: रहता है। और यदि हम ड्वल पर्पज कहते हैं, मूंग या उड़द या काउपी को उगाते हैं, तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमें दाने से जो है दाल मिल जाती है, और बचा हुआ जो अवशेष है मिट्टी में मिला के ग्रीन खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं।
1: जी
0: तो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यदि हम दालें ज्यादा उगाएंगे तो उसका जो हमारा वातावरण भी ठीक रहेगा, वातावरण इस वजह से ठीक रहेगा क्योंकि हमको कम केमिकल फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ेगी,
1: जी
0: क्योंकि दालों के अंदर जो विशेषकर हमें फास्फोरस देने की जरूरत पड़ती है, बाकी पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा 15 से 20 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। जबकि हम कंपेयर करें हमारी जो दूसरी सीरियल्स हैं, जैसे हमारी मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, या हमारी धान है, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की, लगभग 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, लेकिन इसमें केवल 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन। अर्थात मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के स्वास्थ्य के लिए, वातावरण का स्वास्थ्य इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो हम नाइट्रोजन डालते हैं तो जैसे धान के अंदर, मक्का के अंदर, तो काफ़ी मात्रा में जो वो अमोनिया गैस बनकर उड़ जाती है, लगभग 60% जो वातावरण में चली जाती है। तो उस तरीके से वातावरण को यदि सुरक्षित रखना है, मिट्टी को सुरक्षित रखना है, और हमारे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमको दालों का बहुत बड़ा महत्व है। और विशेषकर जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे भारत में जो है काफी जनसंख्या जो वेजिटेरियन है और दाल रोटी पर निर्भर करती है।
1: जी, यानी कि अगर हम दाल की खेती करते हैं, दलहनी फसलों की खेती करते हैं, तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात बन जाती है।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसी
0: बिल्कुल
1: कौन कौन सी प्रमुख दलहनी फसलें हैं जिनको उगाकर हमारे किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं?
0: हाँ, देखिए इस समय जो खरीफ का मौसम चल रहा है, इसमें अरहर या तूर कहते हैं हम, वो एक प्रमुख फसल है हमारी। उसके बाद में जो है मूंग, उड़द, लोबिया कहते हैं, ये प्रमुख फसल है। ये चार फसलें ऐसी हैं, ग्वार भी कुछ क्षेत्र में उगाई जाती है, पांच कह सकता हूँ मैं। इनमें सबसे जो प्रमुख फसल है वो अरहर की है, क्योंकि अरहर की फसल जो है लंबे ड्यूरेशन की भी होती है, लेकिन मूंग, उड़द, काउपी, हम मोट कहते हैं उसको भी उगा सकते हैं, तो ये कम अवधि की होती है। और विशेषकर मूंग, उड़द तो जो है अभी तक उसकी बुआई चल रही है, और
1: जी
0: अभी बुआई कर भी सकते हैं और भी कर सकते हैं, मतलब उसकी अगेती फसल काटने के बाद में, विशेषकर जिन्होंने मक्का लगाई है, ज्वार लगाई है चारा काटने के बाद में, तो उसको जो है आप उसके बाद में मूंग, उड़द, लोबिया लगा सकते हैं। उसका क्यों इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो कम अवधि की होती है और विंडो पीरियड में भी हो जाती है, लेकिन अरहर जो लंबी अवधि की है, इसको जो हम जून के महीने में लगाते हैं। और अभी जो है हमारे भारत सरकार ने जो है पल्स मिशन भी चलाया,
1: जी
0: पल्स मिशन बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की, उसमें आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, क्योंकि इस साल हमारा पल्स का प्रोडक्शन जो लगभग 25 मिलियन टन के आसपास हुआ है, इसको हम 35 मिलियन टन करना चाहते हैं,
1: जी
0: अर्थात हमको 10 मिलियन टन 5 साल में जोड़ना है। तो उसके लिए जो है भारत सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए रखे हैं, जो 2025-26 से शुरू हो गया है और 30-31 तक चलेगा। इसमें बहुत सारे उनके हमारे ICAR के और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, सबको जोड़ा गया है। इसमें प्रमुख जो आयाम है वो ये है, एक तो क्षेत्रफल को बढ़ाना, क्षेत्रफल को जहाँ पे हम धान काटने के बाद में हमारा खेत खाली रहते हैं, विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
1: जी
0: तो वहाँ पे हमको जो मूंग, उड़द को उगाना है, कम अवधि की होती है, एक तो क्षेत्रफल उगाने की बात है, दूसरी हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमको अच्छे बीज की जरूरत है, तो उसमें जो है भारत सरकार ने ये रखा है, जो सीड किट देने, करीब 88 लाख हमको सीड किट 5 साल में देने हैं।
1: जी
0: ये बहुत बड़ा एक सहयोग होगा किसानों के बीच में, अच्छे क्वालिटी के सीड ले जाएंगे जो अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हैं। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ कि हमको जो है करीब 1,000 प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सेंटर बनाने हैं,
1: जी
0: उसमें अनुदान दे रही है गवर्नमेंट 25 लाख रुपए। यदि कोई जो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का यूनिट बनाना चाहते हैं तो उसके 25 लाख रुपए पर फार्मर के हिसाब से आपको सब्सिडी दे रही है। तो इसमें एक तो है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्षेत्रफल को बढ़ाना है, प्रोसेसिंग को, पैकेजिंग को बढ़ाना, ताकि जो उसकी उपलब्धता बन सके और हमारा स्टोरेज और फूड चेन वैल्यू एडिशन सब इसके अंदर आ सकें। तो
1: जी
0: पल्स मिशन जो बहुत बड़ा हमारा एक तरीका भारत सरकार का एक मिशन है, जिसमें हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से भारत सरकार ने अपने आप को तैयार किया है और अच्छे अच्छे बीज लेके, अच्छे अच्छे प्रौद्योगिकी लेके आ रही है, तो मेरे विचार से इसमें हमको सफलता मिलेगी।
1: हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और उनको जो जानकारी दी जा रही है उससे उनको पूरा लाभ मिल रहा होगा। तो अभी रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए और अंतराल के बाद दोबारा से लौटते हैं।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं।

0: पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: ब्रेक के बाद पुनः एक बार कार्यक्रम में आपका स्वागत है और चर्चा चल रही है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य एवं देखभाल, और विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर यशवीर सिंह सिवे।
4: तो डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों की, तो कुछ ऐसे उत्तम किस्में होंगी जिनको कि हमारे किसान भाई लगाएंगे तो उनसे उनको अधिक मुनाफा मिलेगा, तो ऐसी वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनको कि किसान भाई लगा सकते हैं?
5: हाँ देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत सी किस्में जो है येलो मोज़ेक वगैरह ऐसा आता है, एक प्रमुख समस्या है विशेषकर खरीफ के सीजन में, तो ऐसी बहुत सारी किस्में निकाली गई है, लेकिन वो लोकेशन स्पेसिफिक है। किसान भाइयों को उनकी बीज की उपलब्धता जो है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है जो हमारे बीज के वितरण सहकारी कोऑपरेटिव है, उसके माध्यम से अवेलेबल कराए गए हैं, क्योंकि इस समय तो ज्यादातर लगा ली है, लेकिन जब भी किसान भाई बीज को लें, ये सुनिश्चित करें कि किसी प्रमाणित संस्था से ही बीज को लेना चाहिए, चाहे वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, कृषि विश्वविद्यालय, पूसा संस्थान है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और बीज खरीदते समय जो है अपनी जो है रसी जरूर लें, क्योंकि बीज जो है जैसा बोएंगे हम वैसा ही काटेंगे विशेषकर। और ये भी बात ध्यान रखने की है, जब हम बिजाई करते हैं तो बीज का शोधन करके बोएं। बीज का शोधन जो दो तीन तरीके से किया जाता है, एक तो जो है हम बायोन्यूक्लियर यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी राइजोबियम का टीका है उससे जो उपचारित करने के बाद बोएं, और दूसरे जो कभी कभी जो हमारी बहुत सी जो सॉल बॉर्न डिजीज होती हैं, तो उसके लिए हम फंजीसाइड का भी इस्तेमाल बताते हैं कि उसका भी इस्तेमाल करके फंजीसाइड का भी हम सीड कोटिंग करके जब बोएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से अपने क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं को बोएं, और जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित नहीं है उनको ना बोएं। रीजन स्पेसिफिक किस्में का निकालने का मतलब ये होता है कि अपने क्षेत्र विशेष के लिए, क्योंकि जलवायु अलग है, मिट्टी अलग है, ड्यूरेशन अलग है, तो ग्रोइंग सीजन अलग है, उसी हिसाब से जो चुनना चाहिए। तो ये तो होगी किस्मों की बात। अब आती है बात कि इस समय जो लगी हुई है, अब उसको उनमें क्या कर सकते हैं किसान भाई, क्योंकि इस समय जो है अरहर एक लंबी ड्यूरेशन की फसल है। अरहर को हम जो सिंगल क्रॉप में के रूप में भी उगाते हैं और मिश्रित खेती के रूप में भी उगाते हैं। अरहर के साथ में उगाते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब उगा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम जो हमारी मूंगफली है, सोयाबीन है, इसको भी उगा सकते हैं सह फसली खेती के रूप में। अर्थात जो है हम दो लाइनों अरहर के बीच में जो है विशेषकर हम एक मक्का की, ज्वार की, बाजरे की ऐसी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सह फसली खेती कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस समय जो लगा ली है उसकी देखभाल करनी है, तो इस समय जो है क्योंकि बारिश भी अच्छी हो रही है और कहीं कहीं बारिश नहीं भी हो रही है, दोनों ही चीजें हैं, एलिनो का भी इफेक्ट है। तो जहां पे बारिश अच्छी हो रही है वहां तो पानी का निकालने का प्रबंध उचित रखना चाहिए, और जहां बारिश नहीं हो रही है वहां पे हमको जो पानी की जरूरत है पानी लगाना चाहिए, लेकिन हमको फ्लड इरिगेशन नहीं देना चाहिए इनके अंदर। जो विशेषकर जो दाल वाली फसलें हैं हमारी, इनके अंदर स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। और विशेषकर मैं ये बताना चाहूंगा कि अरहर के अंदर जो है ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब आती है बात कि जिन्होंने जो है मूंग उड़द लगा ली है उनकी देखरेख कैसे करें। मूंग उड़द को लगाने के लिए जितनी भी दाल वाली फसलें खरीफ के सीजन में, विशेषकर हम ये बताते हैं किसान बहनों और भाइयों को कि उनको जो रेज बेड पर लगाना चाहिए। रेज बेड पर इस वजह से लगाना चाहिए यदि बारिश ज्यादा भी हो जाती है तो उनकी फसल को नुकसान ना हो, और दूसरी जो बात यह है उसमें जो है हमारे खरपतवार भी कम आते हैं। तो इस तरीके से जो है बुआई करनी चाहिए, और बिजाई कर ली है अब इस समय जो है विशेषकर जहाँ पानी की कमी है पानी जरूर दें, और जहाँ पानी की जरूरत नहीं है और पानी अधिक हो गया उसको पानी का उचित निकास रखें। और दूसरी बात यह है कि इस समय कभी कभी जो खरपतवार बहुत ज्यादा अटैक होता है, और खरपतवार जो है हमारे वातावरण से जो हमारी सनलाइट है उसके लिए कम्पीट करते हैं, मॉइस्चर के लिए करते हैं, नमी के लिए, पोषक तत्वों के लिए करते हैं, इन सब के लिए जो प्रतिद्वंदता करते हैं फसल के साथ में, तो उनको निकालना जरूरी है। और इस समय जो है किसी भी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम प्रीमर्जन सर्विसाइड होती है इनमें, उन्हीं को इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। इस समय जो है वो या तो जो है खुरपी से या हैंड सिंग हैंडों से खरपतवारों को निकालें। उसके दो फायदे होंगे कि एक तो खरपतवार निकल जाएंगे, और खरपतवारों को जो है ऊपर हम मल्चिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर बिछा सकते हैं। और दूसरी बात यह है जड़ों के अंदर जो वायु का संचार अच्छा होगा, तो यदि जड़ों के अंदर वायु का संचार अच्छा होगा तो ग्रंथियां जो बनती हैं, नूडल जो बनती हैं अच्छी बनेंगी, और वातावरण से जो है उनकी

0: नाइट्रोजन की एकत्रीकरण करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
1: जी, तो
0: तो
1: डॉक्टर साहब कीट प्रबंधन की बात करें तब
0: हाँ
1: हमारे किसान भाई क्या
0: हाँ
1: करें?
0: देखिए, कीट भी एक प्रमुख समस्या है। विशेषकर जो है इस समय हमारी व्हाइट फ्लाई आती है, सफेद मक्खी आती है, और वो वायरस का कैरियर का काम करती है। यातार जो हमारी येलो मोजेक वायरस डिजीज है, विशेषकर मूंग उड़द काउपी के अंदर आती है, तो उसको जो है वायरस को नियंत्रण करने के लिए हमको जो सफेद मक्खी को नियंत्रण करना पड़ेगा।
1: जी
0: तो सफेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए हमको इम्यूनोक्लोपिड एक दवाई आती है, उसको जो है 1 लीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, और घोल की मात्रा जो है लगभग 200 लीटर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से, और
1: जी
0: हेक्टेयर में जो है करीब करीब 500 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो है सफेद मक्खी का नियंत्रण करें, ताकि जो है उनकी क्रॉप जो है ये जो येलो मोजेक वायरस से बच सके।
1: जी
0: तो इस समय जो है विशेषकर सफेद मक्खी का ही होता है, और आगे आने वाले समय में होगा प्रकोप, जो एक हमारा पोड बोरर भी आता है, तो लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है, अभी नहीं बनी होंगी पोड्स वगैरह, लेकिन हाँ कुछ जिन्होंने लेट सोइंग की होगी मूंग की, उनमें आने की संभावना हो जाती है। तो पोड बोरर के लिए हमको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि निगरानी करते रहना है, और जैविक नियंत्रण भी करें हम, येलो जो हमारी ट्रैप होती है उनको लगाएं, ताकि वो उस पर चिपक जाए, और जो हम किस तरीके से कंट्रोल से कर सकें। और नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करना चाहिए।
1: जी
0: नीम ऑयल क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत से किसान भाई और बहन आजकल जैविक खेती कर रहे हैं,
1: जी
0: जैविक खेती करने के लिए उनको जो है किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बायो फर्टिलाइजर का जो खाद के रूप में इस्तेमाल करना है, और इसके साथ साथ जो है उनको नीम का जो है घोल बना के, अर्थात 1 मिलीलीटर जो है प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करना चाहिए, ताकि उनके जो कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो नियंत्रण हो जाए।
1: जी
0: तो इस तरीके से जो है कीटों का नियंत्रण भी जैविक तरीके से भी किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, तो जो भी जलवायु परिवर्तन होता है उससे हमारे जो दलहनी फसलें हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: हाँ देखिए, इस साल जो है एलनीनो का इफेक्ट है,
1: जी
0: और एलनीनो के इफेक्ट के वजह से हमने पूरे ICAR ने खेत बचाओ अभियान चलाया था, उसमें हमने यही कहा था कि इस साल जो है आपको दाल वाली फसलें बोनी चाहिए। जैसे एलनीनो का इफेक्ट है, तो इसमें जो है कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो जा रही है, सडनली
1: जी
0: हो जा रही है,
1: जी
0: और जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है, और कहीं हो नहीं रही है,
1: जी
0: तो इसका प्रभाव सभी फसलों पर आता है, लेकिन विशेषकर जो हमारी दाल वाली हैं इन पर कम प्रभाव पड़ता है,
1: जी
0: जो अधिक पानी वाली फसलें उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
1: जी यानी कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें कम पानी की आवश्यकता है, तो इसलिए जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है इनके ऊपर कम पड़ता है, यानी कि हमारे वातावरण के लिए भी लाभदायी है।
0: लाभदायक हैं, और इनको इस वजह से ही जो खेत बचाओ अभियान में जो हमने 1 जून से 30 जून के बीच में चलाया था, उसमें यही बताया था कि अपने कम से कम जो है 10 से 15% या 25% तक भी दाल वाली फसलों को लगाएंगे इस साल, तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे, आपकी जब मिट्टी भी अच्छी रहेगी, वातावरण भी अच्छा रहेगा, और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। वो
1: जी
0: इसी वजह से बताया गया था, क्योंकि बारिश कम होने की संभावना है, और बारिश होगी भी तो कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसी वजह से दालों को जो प्रीफर किया गया इस साल।
1: मिट्टी स्वस्थ हो गई तो उसमें जो भी हम फसलें उगाएंगे वो सारी स्वस्थ रहेंगे, यानी उनके उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व बरकरार रहेंगे उतने ही पोषक तत्व हमें मिलते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, जब हम दलहनी फसलों की बात करते हैं तो क्या मृदा स्वास्थ्य में दलहनी फसलों की अहम भूमिका है?
0: बिल्कुल, मृदा स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नाइट्रोजन की जैसे मैंने बताया इनमें बहुत स्टार्टर डोज की जरूरत पड़ती है, 15 से 20 किलोग्राम, और जबकि हम धान को देखें तो 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की, ऐसी मक्का के लिए 120 से 150 किलोग्राम,
1: जी
0: तो इसका मतलब ये बहुत मीगर अमाउंट जो है इसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, और ये अपनी तो पूर्ति करते ही है, इसके साथ साथ जो आने वाली फसल है उसके लिए भी नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर में छोड़ कर जाते हैं, और जो जीवाणु होते हैं उनकी भी एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है, और जो हमारे अवेलेबल पोषक तत्व तो नहीं है उनको भी अवेलेबल कराते हैं, विशेषकर फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, तो इस तरीके से इनको उगाने से मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहता है, और आगे आने वाली जो फसल बोते हैं उनमें भी हमको कम पोषक तत्व तो देने की जरूरत पड़ती है।
1: हमारे अन्नदाता हमारे देश की समृद्धि के विशेष सहायक हैं, और कहा जाए तो सभी कुछ उनके कंधों पर ही निर्भर है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जो हमारे अन्नदाता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो कुछ किसानों के मन में ये भी बात आएगी कि मुझे भी अगली बार जो है अपने खेत में दलहनी फसलें उगानी है। तो चलते चलते आप उनको क्या सलाह देंगे कि क्यों वो दलहनी फसलें उगाएं जिससे कि उनकी लागत भी कम हो लेकिन मुनाफा उनको अधिक से अधिक?
0: हाँ देखिए, दलहनी फसलों का बहुत बड़ा महत्व है, यदि हमको मिट्टी के स्वास्थ्य रखना है, और इसके साथ साथ हमारा उत्पादन भी बढ़ाना है, वातावरण भी ठीक रखना है, और अपनी खाद्यान्न की पूर्ति भी करनी है, खाद्यान्न के साथ साथ में
1: जी
0: न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में हमारी प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं, तो हमारी दाल वाली फसलें एक अच्छा स्रोत हैं, और हमारे यहाँ इसकी बड़ी आपूर्ति भी है, डिमांड भी है, अर्थात जो है मैं ये कहना चाहूंगा, किसान भाई दो दाल वाली फसलों को अपने फसल चक्र में जरूर अपनाएं और एक सीजन के अंदर जरूर उगाएं, और जिन्होंने इस समय उगाई है उनकी देखरेख करें, जाते रहें और सुपरविजन करते रहें, जहां जहां उनको जरूरत है खरपतवार निकालने की खरपतवार निकालें, और इसके साथ साथ यदि बारिश ज्यादा होगी है तो जल निकास का प्रबंधन रखें, और यदि पानी देने की जरूरत पड़ रही है तो वो ड्रिप इरीगेशन से या स्प्रिंकलर इरीगेशन से पानी दें, फ्लड इरीगेशन से ना दें। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे भारत सरकार ने बहुत बड़ा पल्स मिशन चलाया हुआ है, हमको जो है करीब करीब 10 मिलियन टन अगले 5 साल में उत्पादन बढ़ाना है अपना, ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें पल्सिस के अंदर, क्योंकि हमारा अभी जो प्रोडक्शन है वो लगभग 25 मिलियन टन के आसपास है। तो इन सभी का किसान भाई पूरी तरीके से सदुपयोग करें और लाभ उठाएं विशेषकर पल्स मिशन का, ताकि हम पल्सिस के अंदर आत्मनिर्भर हो सकें, अपनी मिट्टी को और धरा को स्वस्थ रख सकें, अपने वातावरण को स्वस्थ रख सकें और एक अच्छा पैदावार लें और अच्छा मुनाफा कमाएं और अच्छा स्वस्थ रखें।
1: जी, क्योंकि अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम भी तो स्वस्थ हैं। दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य एवं देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर साहब आपने विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गौतम, हमारा जो भारतवर्ष है वार त्योहारों का देश है, और जब बात आती है सावन की, तो जब सावन की फुहारें पड़ती हैं, बौछारें गिरती हैं, तो मन मयूर नाच उठता है। तो आपका मन मयूर भी नाच उठ रहा होगा, तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें ये सावन गीत।
2: और जो

0: सावन की इस झड़ी को देखते हुए हम किसान भाइयों को कुछ सलाह भी तो देना चाहेंगे, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि हमारे किसान जो है वो उन्नति करें, प्रगति करें, और वो तभी संभव है जब जैसा भी मौसम आए उसके अनुरूप वो कार्य करें।
1: बिल्कुल कमलेश जी, बहुत सही कहा आपने। अगर किसान भाई पहले से ही तैयारी करके रखेंगे और उनको पता होगा कि मौसम क्या होने वाला है, कब बरसात होने वाली है, कब जो है ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो किसानों की जो है तैयारी उस हिसाब से रहती है।
0: और जब आपने सलाह की बात की है तो मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगी कि जिन किसानों की टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन व अगेती फूल गोभी की पौधे तैयार है वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेंढों पर करें तथा जल निकास का उचित प्रबंध रखें।
1: जी बहुत सही कहा आपने कमलेश जी, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि किसान अगर वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं, और इस मौसम में किसान जो है स्वीट कॉर्न तथा बेबी कॉर्न की अगर बुआई करना चाह रहे हैं, तो जल निकास उचित प्रबंध रखें, क्योंकि अगर जल जमा होता है तो किसान भाइयों आपको नुकसान हो सकता है।
0: और गौतम, ये जो समय चलता है ना, इस समय अगर हम भीग गए तब भी, और कई बार नहीं भीगे तब भी, कई बार तो ये लगेगा कि शरीर में जान ही खत्म हो गई है। तो जो हमारे पुराने नुस्खे होते हो तो यही कहते कि भाई इस समय जो है ना वो आप ऐसा करो कि मौसमी का जूस पियो। लेकिन हमें ये लगता है कि भाई मौसमी भी इतनी महंगी है, बाकी फल भी इतनी महंगे हैं, तो हम खाएं क्या और कैसे खाएं?
1: बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, तो जिक्र कर ही दिया है आपने भाव का, तो जो हमें आजादपुर मंडी से प्राप्त भाव होते हैं मौसमी जो है वो 50 रुपये प्रति किलो है, और उसके बाद अगर हम लोग सेब की बात करें तो सेब जो है 200 रुपये प्रति किलो है, और पपाया की बात करें यानी कि पपीते की बात करें तो 30 रुपये किलो, और पाइन एप्पल की बात करें तो 50 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रहा है। और सब्जियों के जो भाव हमें प्राप्त हैं, आलू की भाव की बात करें तो 18 रुपये प्रति किलो, प्याज की बात करें तो 30 रुपये प्रति किलो, टमाटर की बात करें तो 40 रुपये प्रति किलो, और अगर पत्ता गोभी की बात करें तो 8 रुपये प्रति किलो।
0: और शिमला मिर्च रेट है वो है 60 रुपये प्रति किलो, और हरी मिर्च के बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता, तो उसका जो रेट है वो है 40 रुपये प्रति किलो। तो ये थोड़ी सी जो जानकारी थी वो हमने साझा की, जो हमने प्राप्त की थी आज़ादपुर सब्जी मंडी के भाव से। और गौतम, तो आज का सफर किसान वाणी का यहीं तक।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, जो कि था प्रायोजित कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम, जिसमें आज हम सुनेंगे जगजीत सिंह जी के स्वरों में गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से संबंधित 3 विधेयक सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से देश में 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में इस वर्ष 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए और दिल्ली पुलिस ने रोजगार और निवेश धोखाधड़ी मामले में राजस्थान से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के 8वीं विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होगा।
1: कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की 2 रिपोर्ट और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित 1 अधिसूचना सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त समयबद्ध सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से संबंधित 3 विधेयक भी 8वें विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी सदस्यों से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने और 3 दिवसीय सत्र को सार्थक और उत्पादक बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। आज नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है।
2: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
3: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
2: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: श्री जोशी ने गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के बारे में कहा कि देश वर्ष 2030 तक 500 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के सतत ऊर्जा भविष्य के लिए तकनीकी रोडमैप भारत के ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकल्प 2030-2047 को जारी किया गया। श्री जोशी ने अत्याधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने इस अवसर पर कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
4: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि SAF एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित विमानन ईंधन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पीतमपुरा स्थित सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
5: इस लैब के माध्यम से स्कूली छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी आधुनिक तकनीक और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का हर विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करे, यही दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने बल देते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे प्रत्येक छात्र भविष्य की वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह इनोवेशन लैब सार्वजनिक निजी भागीदारी जन भागीदारी की उस शक्ति का उदाहरण है जो सरकारी विद्यालयों में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रही है। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज सचिवालय में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। श्री सूद ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान शहर में बिजली की तैयारियों का जायजा लिया गया और बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली के हर निवासी के लिए बिना रुकावट, भरोसेमंद और कुशल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कला तथा संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज आगामी पंजाबी साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस आयोजन के माध्यम से पंजाबी भाषा, साहित्य, संगीत और समृद्ध विरासत को और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी भी संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर सके। श्री सिरसा ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में हर भाषा, संस्कृति और परंपरा को पूरा सम्मान मिले। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खेरवार ने आज नजफगढ़ जोन के अंतर्गत द्वारका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्वच्छता और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री खेरवार ने अधिकारियों को नियमित रूप से कूड़े को हटाने और उच्च स्तर की साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। वस्त्र मंत्रालय कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
3: वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का जश्न मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता देना है। मंत्रालय के अनुसार समारोह का प्रमुख आकर्षण संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों का वितरण होगा। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। समारोह के दौरान अर्थ रूट थ्रेड, ऑल डायड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इसके साथ ही पुरस्कार विजेता हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने रोजगार धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश कर राजस्थान के जोधपुर से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये मामला टेलीग्राम आधारित पार्ट टाइम रोजगार और निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रोजगार धोखाधड़ी के नाम पर लोगों से लगभग 3 लाख की ठगी की। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 7वीं पुण्यतिथि पर वसंत उद्यान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि सुषमा स्वराज का स्नेह, आत्मीयता और प्रत्येक कार्यकर्ता पर उनका अटूट विश्वास आज भी सभी की स्मृतियों में जीवित है।

0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से शिवाजी स्टेडियम तक यात्रा की। इस दौरान श्री यादव ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम की बेहतरीन सेवाओं की सराहना की और स्वच्छ सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रीवा सोलर प्लांट के साथ इसके जुड़ाव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जुड़ाव टिकाऊ शहरी परिवहन के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ, जिसमें देश के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पदक और पुरस्कार जीते। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को मौके, सुविधाएं और साथ मिले तो वे काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस 1.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को बेहतर बनाने और सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं देने के लिए काम किया है।
1: हमारा देश जो एक युवाओं का देश है, यहाँ के बच्चों को अगर मौका मिले, सुविधाएं मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो वो बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंचने की ताकत रखते हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने सभी इन स्टूडेंट्स को, 1000 स्कूल जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत चलते हैं, इस 1.5 ईयर ऑफ अवर टेन्योर हमने ये कोशिश की है कि दिल्ली में एजुकेशन को एक अलग जगह लेके जाया जाए, जहाँ पर हमारे इन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हम बेहतर सुविधाएं दे सके।
0: दिल्ली में इस वर्ष 4 अगस्त तक 137 दिन स्वच्छ वायु वाले दर्ज किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए विभिन्न उपाय लगातार किए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार 2,243 मीट्रिक टन निर्माण और अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह और निपटान किया गया है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए हैं। सरकार ने बताया कि 81 सड़क सफाई वाहनों ने 2,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों की सफाई की है और 169 मीट्रिक टन सड़क की धूल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टीम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कहा, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इस वर्ष 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए। और दिल्ली पुलिस ने रोजगार और निवेश धोखाधड़ी मामले में राजस्थान से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका। शाम की ठंडी हवाएं, ढलता हुआ सूरज और दिल में किसी की मीठी मीठी सी याद, ऐसे ही खूबसूरत एहसासों को और भी खास बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं प्यार से सजे और दिल को छू लेने वाले सदाबहार रोमांटिक गीत। मोहब्बत की शाम हो और गीतों का साथ हो, हर धड़कन में बस प्यार की ही बात हो, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म ब्लैक मेल से। शाम ढली तो यादों ने फिर दस्तक दी, हवा ने भी प्यार की खुशबू बिखेर दी। संगीत के इन सरों में खो जाइए, दिल की हर धड़कन को मुस्कुराने दीजिए।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: चांद भी ज्यादा ही हसीन लगता है जब किसी अपने का ख्याल दिल में रहता है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर गीत अपना सा लगता है।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, और आवाज़ थी लता मंगेशकर और कुमार सानू जी की।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, मोहब्बत की किताब का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जिसमें सिर्फ एहसास हो, ना शिकवा ना कोई शिकायत, बस एक दूसरे की मुस्कान का जिक्र हो, खुशी का जिक्र हो, है ना।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, मैं बता दूं कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पे और मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री। और यदि किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं आप इस कार्यक्रम के बारे में भेजना चाहते हैं तो वो सादर आमंत्रित हैं। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार पुनः बता दूं, ipradiodelhi@gmail.com। इस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। श्रोताओ, मुस्कुराने की कोई वजह बन जाए, जिंदगी का सबसे हसीन सफर बन जाए। दुआ है हर दिल को ऐसा हम सफर मिले जो हर शाम को मोहब्बत का असर बन जाए।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म पापा कहते हैं फिल्म से, और आवाज़ थी कुमार सानू और अलका याग्निक जी की। दोस्तों, कुछ रिश्ते आवाज़ नहीं देते, बस दिल की धड़कनों में बस जाते हैं, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हर बार सुनकर उसी पहली मोहब्बत का एहसास दिला जाते हैं।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से, और आवाज़ थी कविता कृष्णमूर्ति जी की। इश्क की राहों में मौसम बदल जाते हैं, कुछ चेहरे उम्र भर दिल में बस जाते हैं। जो प्यार सच्चा हो उसे अल्फाज नहीं चाहिए, बस एक मुस्कुराहट, और सालों गुजर जाते हैं।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म दस्तक से। आवाज़ थी उदित नारायण जी की। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये रोमानी शाम आपके दिल को छू गई होगी और इन गीतों ने आपकी यादों को फिर से महका दिया होगा। इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाज़त दीजिए कार्यक्रम को समेटने की। सुरों का ये कारवां यूं ही चलता रहे, हर शाम प्यार के गीतों से महकती रहे। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर होगी मुलाकात एक नई गीत मालिका के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती

0: परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
5: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
6: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
5: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
7: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। निशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
9: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने

0: तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27.

0: आज तीसरे पहर नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसीलात बताते हुए इत्तलात नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे 1.5 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: ये स्कीम मुल्क के मतरूक ज़रई बाकियात, मवेशियों के गोबर, चीनी मिलों से निकलने वाले नामियाती कचरे, म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक फजला और दिगर बायोमास ज़राए को माहौलियात के लिए साजगार ईंधन, नामियाती खाद तैयार करने, देही आमदनी और कौमी इक्तिसादी सूरत हाल में तब्दीली लाएगी। इस स्कीम का इतलाक 2026-27 से साल 2035-36 तक होगा और ये भारत की मुस्तकबिल की तवानाई की तैयारी के एक अहम सतून के तौर पर कंप्रेस्ड बायोगैस की पैदावार करेगी। इस स्कीम का मकसद अंदरून मुल्क कंप्रेस्ड बायोगैस में इजाफा करना, CBG पैदावार को तकरीबन 10 गुना करना, बड़े पैमाने पर निजी सरमाकारी को मुतहरिक करना और मुल्क भर में एक शानदार सर्कुलर हयातियाती मईशत वजा करना है। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आसाम में NH-15 के साथ साथ गुवाहाटी के नज़दीक बहारा चरियाली से तेजपुर तक 4 लेन का हाईवे तामीर करने की भी मंजूरी दी। इसकी मजमू प्रोजेक्ट लंबाई 135.87 किलोमीटर होगी और इस पर 8,970 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट को बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र BOT टूल मोड के मुताबिक तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट में तेजपुर बाईपास पर एक हंगामी लैंडिंग की सहूलत की तामीर भी शामिल है, जिसे भारतीय फजाइया के साथ तालमेल से हतमी शक्ल दी जा चुकी है।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, आसाम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन स्कीम को मंजूरी देने का काबीना का फैसला माहौलियात के लिए साजगार, तवानाई, देही खुशहाली और खुद कफील मुल्क बनने के भारत के इज्तिमाई ख्वाब को हकीकत का रंग देने की जानिब एक अहम कदम है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि स्कीम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को वसी तौर पर फरोग देगी, जिसका मकसद अंदरून मुल्क CBG की पैदावार को तकरीबन 10 गुना करना है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि NH-15 का 4 लेन वाला गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर सफर के वक्त को कम करेगा, सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाएगा और मुख्तलिफ मकामात पर अहम बाईपासिस पर होने वाले गाड़ियों की आमदोरफ्त को बेहतर करेगा। लोकसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की हंगामा राई के बाइस दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली इल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की मुद्दत सरमाही इजलास 2026 के आखिरी हफ्ते तक बढ़ाने की मंजूरी दी। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने टैक्सेशन और दिगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 ऐवान में गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया। ताहम मुसलसल हंगामा राई के दरमियान मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने से मुतालिक इस बिल को किसी बहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। इस बिल की मंजूरी के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर सांध्या राय ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया और कहा कि लोकसभा की कार्रवाई कल दिन में 11 बजे दोबारा शुरू होगी। इससे कबल दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम हमलों के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज जापान पर अफसोसनाक एटमी हमलों को 81 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद स्पीकर ने वक्फे सवाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। पार्लियामेंट ने तसरुफात नंबर 3 बिल 2026 को मंजूरी दी है। ये बिल राज्यसभा में बहस के बाद लोकसभा वापस भेज दिया गया था। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। दूसरी बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2:45 पर दोबारा शुरू हुई तो वजीर खजाना निर्मला सीतारमन

0: ने इस बिल पर गौर करने और उसे वापस करने के लिए इसे ऐवान में पेश किया। ये बिल 31 मार्च 2003 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान बहुत सी खदशात पर होने वाले उन अखराजात के लिए भारत के कंसोलिडेटेड फंड से रकम के तसर्रुफ का इख्तियार देता है जो उस साल उन खिदमात के लिए मुख्तस रकम से तजावज़ कर गए थे। हुकूमत ने बहुत से तजावज़ करदा अखराजात को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की दरख्वास्त की है। ये रकम कर्ज़ों की अदायगी पर खर्च की जाएगी। बहस का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने माली साल 2023 के दौरान होने वाले तजावज़ करदा अखराजात की मंजूरी की दरख्वास्त की है। जम्मू कश्मीर से मुतालिक अराकीन के जरिए जाहिर करदा तशवीश का हवाला देते हुए मोहतरमा सीतारमन ने ऐवान को यकीन दिलाया कि हुकूमत ने 2019 में दफ़ा 370 को ख़त्म करने के बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को नुमाया माली और इंतज़ामी मदद फराहम की है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तनख्वाहें और पेंशन मुकम्मल तौर पर मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए अदा की जा रही हैं, जिन पर सालाना तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि दफ़ा 370 को ख़त्म करना इस बात का यादा करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा इलाके भी शामिल हैं। इस कार्रवाई को पूरी करने के बाद चेयर जनाब घनश्याम तिवारी ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने आज भारत इसराइल खुसूसी जामे शराकत दारी में पायदार पेशरफ्त का जायज़ा लिया और दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद के लिए मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का यादा किया। जनाब नेतन्याहू ने आज जनाब मोदी को टेलीफोन कॉल की थी। दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया में मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आज भारत ने उड़ीसा में चांदीपुर की मरबूत आजमाइशी रेंज से दरमियानी दूरी तक वॉर करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की कामयाब आजमाइश की। वजारत दिफा ने कहा कि इस आजमाइशी परवाज में मिसाइल के तमाम ऑपरेशन जाति और टेक्निकल पैरामीटर्स मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। ये आजमाइश जामे फोर्सेज कमान के तहत की गई। वजारत ने मजीद कहा कि ये कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और अहम संग मील है। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि मुल्क में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से फायदा उठाने वाले कुंभों की तादाद 50 लाख से तजावज कर गई है। नई दिल्ली में मुनाकिदा CII बैन अल-अक़वामी तवानाई कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त 19 लाख घरानों का बिजली का बिल सिफर आ रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि इस स्कीम के तहत 12 लाख से ज्यादा कुंभों ने इजाफी बिजली फरोख्त करके मजमूई तौर पर 421 करोड़ रुपये की आमदनी हासिल की है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि सिर्फ 9 महीने में छतों पर सोलर पैनल नस्ब करने की रफ्तार में 3.2 गुना का इजाफा हुआ है, जो अक्टूबर 2025 में योमिया तकरीबन 5,000 तनसीबात से बढ़कर जुलाई 2026 में 16,000 से ज्यादा योमिया तनसीबात तक पहुंच गई हैं। इस मौके पर स्टील और भारी सनतों के मरकजी वजीर SD कुमारस्वामी ने कहा कि आलमी तवानाई मुंतकली में क्यादत के लिए भारत को मजबूत और पायदार सप्लाई चेन कायम करना होगी। उन्होंने कहा कि स्टील की पैदावार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क की हैसियत से भारत न सिर्फ बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग की अपनी बढ़ती जरूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता है, बल्कि पायदार स्टील की बढ़ती हुई आलमी मांग को भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने फर्जी या मनगढ़ंत मालूमात जमा कराने वाले दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अद्वियात से मुतालिक जवाबित में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी किया है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें दावा किया जा रहा था कि हुकूमत हवाई जहाज के ईंधन में इथनॉल मिलाने का मंसूबा बना रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। वजीर मौसूफ ने वाजे किया कि इथनॉल और हवाई जहाज का पायदार ईंधन SAF दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लिहाजा इन्हें एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया सकता। उन्होंने कहा कि SAF बैन अल-अक़वामी सतह पर एक तस्दीकशुदा हवाई जहाज का ईंधन है जिसे बैन अल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम तस्लीम करती है और दुनिया भर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये ईंधन सख्त जाँच के मराहिल से गुजरता है और आलमी हिफाजती मयारात पर खरा उतरता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है और हवाबाजी की हिफाजत से मुतालिक गलत मालूमात फैलाने से सिर्फ फजाई मुसाफिरों में गैर जरूरी तशवीश पैदा होती है। हुकूमत ने कहा है कि अभी तक 1,73,00,000 ई पासपोर्ट भारत में और बैरून मुल्क जारी किए जा चुके हैं। आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में उमूर खारजा के वजीर ममलकत कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत में इस वक्त तमाम इलाकाई पासपोर्ट दफातर, पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र और बैरून मुल्क तमाम भारतीय मिशन ई पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। झारखंड में JPSC और JSSC इम्तहान में मुबैना बेजाबदगियों के मामले पर मानसून इजलास के पहले दिन असम्बली के अंदर और बाहर सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: JPSC और JSSC इम्तहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा की तहरीक और इम्तिहान के निज़ाम में ज़्यादा शफाफियत के मुतालबे ने फैसला कुन मरहला अख्तियार कर लिया है। तातुल ख़त्म करने के लिए रियासती सरकार ने इकदाम शुरू किए हैं। वज़ीर आला हेमंत सोरेन की हिदायत पर 4 वज़रा की पर मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है जो एहतजाज करने वाले तलबा से बातचीत करेगी। इसके जवाब में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे तलबा ने 8 रुकनी वफद तश्कील दिया है जो वज़रा के साथ होने वाली बातचीत में उनकी नुमाइंदगी करेगा। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: केरल में युवा मोर्चा की क़्यादत में तिरुवनंतपुरम में वाकई रियासती सेक्रेटरीट की जानिब एक बड़ा एहतजाजी मार्च निकाला गया। एहतजाज करने वाले अफराद का मुतालबा था कि उन उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाया जाए जिन्हें गुज़श्ता 2 बरस से PSC की रैंक लिस्ट में शामिल होने के बावजूद तकर्री के अहकाम जारी नहीं किए गए। सैकड़ों कारकुनों ने हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया कि रैंक लिस्ट मौजूद होने के बावजूद खासतौर पर तदरीसी उहदों पर तकर्रियाँ मुसलसल मौखर की जा रही हैं। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिया और रक्षिता रामराज आसन में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में श्रियांशी वेलिशेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से शिकस्त देकर शानदार खेल का मुजाहरा किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और देही मईशत को फरोग देने के लिए गोबर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। काबीना ने आसाम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की गरज से गुवाहाटी और तेजपुर के दरमियान 4 लेन के हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। लोकसभा ने मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने के कानून को पास कर दिया है। वजीर आजम ने मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने बाहमी ताउन को और गहरा करने के अहद का यादा किया है। भारत ने उड़ीसा में दरमियानी दूरी तक मार करने वाले अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। मरकज ने हवाई जहाज के ईंधन में इथनॉल की आमेजिश के दावों को मुस्तरद कर दिया है। झारखंड और केरलम में भर्ती के इम्तिहान के मामलों पर तलबा का एहतजाज बढ़ गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम लेकर मैं मनोज पाठक हाजिर हूँ। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई और स्थितियां विकट हो चली हैं। ऐसे में बाढ़ और मानसून की चुनौतियां, कैसे हम अपने नुकसान को न्यूनतम करें और कठिन आपदा से किस तरह उबरें, इसी विषय पर आज हम इस अंक में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जाने माने इस क्षेत्र के आपदा विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी को। प्रोफेसर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि मॉनसून की प्रवृत्तियों में हम एक बदलाव पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखार पहले भी आती थी, लेकिन अब की बाढ़ और अब की सुखार दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं। खास तौर से अभी जो देश के कई प्रदेशों में कई स्थानों पर जो बारिश की

0: बौछारें हुई हैं, उनसे बाढ़ की आपदा आ गई है, उनसे निपटने के लिए हमारी क्या सब तैयारियां हैं, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, और कैसे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में, इस पर चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे हम।
1: इस विषय में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल मानसून में बारिश काफी ज्यादा मात्रा में जब होती है तो कई आपदाएं घटित होती हैं, और इसके लिए हम पहले से पूर्व तैयारी करते हैं। जून के महीने में सभी स्टेट्स जो हमारे हैं उनके रिलीफ कमिश्नर्स की केंद्र सरकार द्वारा एक मीटिंग गठित की जाती है, और उसमें ये सब चर्चा की जाती है कि आने वाले मौसम के क्या पूर्व अनुमान हैं और उसकी वजह से किस किस तरह की आपदाएं घटित हो सकती हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना है और निपटना या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली तो तैयारी हमारी यही होती है कि मौसम विभाग हमें पूरे मानसून सीजन का जो भी सूचना देता है कि आने वाला इस बार का मानसून कैसा रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारियां की जाती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपदाएं संभावित हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। एक तो ये विभाग संबंधित तैयारियां हो जाती हैं जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देखता है। दूसरी तरफ जनता की तैयारी भी, जन समुदाय की तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो जनता को भी ये संदेश दिया जाता है कि समय समय पर कैसा मौसम होने वाला है, उसका क्या पूर्वानुमान है। जो हमारा भारत मौसम विभाग है वो हर हफ्ते अपनी मौसम की पूर्वानुमान की जो भी चेतावनियां होती हैं वो जिला प्रशासन और पब्लिक के साथ भी अपनी वेबसाइट के जरिए शेयर करता है। उन्होंने कुछ अपनी मोबाइल एप्स भी बनाई हैं, जैसे मौसम है, मेघदूत है, दामिनी है, जिनके जरिए भी ये सूचनाएं आपके मोबाइल तक पहुंचती हैं जिसके जरिए आप ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि विभागों को तैयार करना और उचित संसाधन उपलब्ध कराना और सबकी जो है जिम्मेदारी तय करना कि कौन क्या करेगा, और इसके साथ ही हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है उसको भी तैयार रखा जाता है 24/7 365 डेज कि कोई भी ऐसी आपदा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन रक्षा की जा सके। तो इसमें सब तरह के उपाय किए जाते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन लाइफ स्टॉक भी जो रिस्क पे होता है उसको और वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की कोशिशें की जाती है।
0: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि हाल के दिनों में अपेक्षाकृत अन्य विकसित देशों से यदि हम तुलना करें अपने यहाँ, तो आपदा प्रबंधन लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से सुरक्षित बचा लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं जहाँ पर कि हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: देखिए, जहां तक मौसम के पूर्व अनुमान का सवाल है उसमें काफी तकनीकी तौर पर तरक्की की गई है। बहुत सारे डॉपलर वेदर रडार जो स्थानीय मौसम की सूचना हमें अच्छे तौर पर दे सकते हैं जिसपे रिलाई किया जा सकता है का उपयोग किया जा रहा है, परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग, भूस्खलन या बाढ़, त्वरित बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं वहां पर ये काफी मुश्किल होता है जानकारियां सही तरीके से हासिल करना। हालांकि हम कई मल्टी मॉडल्स को यूज करते हैं उसके बावजूद भी सही सूचना कई बार सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि पहले तो अगर सूचना है तो जैसा आपने बता रिक्तिकरण करते हैं हम कि जो भी आपदा ग्रस्त क्षेत्र है वहां से जो लोग उसमें फंस सकते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है, परंतु उस सब के बावजूद भी कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसमें कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो उस समय में हमारे पास एक गोल्डन आवर्स या पीरियड का टाइम होता है जिस समय हम सबसे ज्यादा जाने बचाए जा सकती हैं। भूस्खलन हो, बाढ़ हो, इसमें बहुत कम समय हमें गोल्डन आवर्स की टर्म में मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा जाने बचाए जा सकती हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जो दुर्गम गामी होते हैं जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है। वहां का ग्रेडियंट स्टीप होता है, वहां का एल्टीट्यूड हाई होता है और वहां पर जो आने जाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी सीमित होती हैं। तो इस वजह से कई बार हम लोगों को एयर ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं रेस्क्यू में, इवैक्यूएशन में, और कई बार हम लोग जो है स्थानीय टीम है जो हमारी स्टेट लेवल की भी आपदा मोचन बल होती है, जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है एनडीआरएफ की टीम है, ऐसे एसडीआरएफ भी गठित की गई है और डिस्ट्रिक्ट को भी कहा गया है कि आप अपनी भी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाइए। अब ऐसे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम पानी का अनुमान तो लगा रहे हैं परंतु उसके साथ जो मलबा आता है उसका अंदाज नहीं लगा पाते हैं और मलबा कटाव बहुत करता है और पानी के साथ

0: मात्रा में बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो उस समय आप सचेत रहें, जागृत रहें और तैयार रहें, ताकि रात में होता क्या है कि जब बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चली जाती है, रास्ते नजर नहीं आते हैं। तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। एक और चीज जो इस पे मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब ये सावन का महीना जैसे चल रहा है, तो हमारे कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसकी तरफ हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाने लगे हैं और बड़े बड़े दुर्गामी स्थलों पर जाते हैं। उनको भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब लोग काफी भीड़ भाड़ में होते हैं, या जैसे लाइटनिंग के इवेंट्स हो जाते हैं और वो मेटल के कलश लेके जाते हैं और
1: जी
0: पानी लेकर जाते हैं जो कंडक्टर्स के काम करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो एक तो हमारा जो पिलग्रिमेज सीजन है, जो मई में शुरू होता है, नॉर्मली अक्टूबर में एंड होता है, और बीच में बड़ा सीजन हमारा जो है मानसून के समय में रहता है, तो ट्रैकिंग भी लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं और टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। तो इन सब की वजह से वहां पर ज्यादा संख्या एकत्रित हो जाती है, ज्यादा वाहन इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि बिजली गिरने से मरने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं अपेक्षाकृत पहले की तुलना में। इससे बचने का क्या, आपने कहा कि कड़े वगैरह आकर्षित करने में होते हैं, ऐसे और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो बाढ़ की स्थिति में बड़े पैमाने पर यदि पानी आ गया है नदियों के माध्यम से, बारिश के कारण से, तो जल जमाव होगा, उससे नुकसान अपनी जगह, लेकिन बिजली चमकने, बिजली गिरने से जो आपदाएं हो रही हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं?
0: कभी भी जब लाइटनिंग होती है उससे पहले थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड बस्ट इवेंट्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं। पहले तो आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आप ओपन एरिया में हैं जहां से लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है, तो और आउटडोर्स में हैं, तो आपको नो डाउट एक क्लोज एरिया में चला जाना चाहिए, टर्डी हाउसेस में जाना चाहिए और वहां पे अपने बचाव के लिए कोशिश करें। एक जो है मिथ है लोगों को कि पेड़ तले चले जाएंगे तो लाइटनिंग का इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये उल्टा है। आप अकलौते बड़े पेड़ तले चले जाते हैं तो लाइटनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही कई लोग छाता लेके चल जाते हैं मेटल पेड़ के पास, तो वो और हाइट बढ़ जाता है और मेटालिक एलिमेंट के साथ में और बिजली लगने की घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आपको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है, कई लोग लेट जाते हैं जमीन पे, वो भी गलत है, तो उस समय में उकड़ू बैठ के दोनों हील्स इकट्ठे करके और नी में अपना हेड डालते हुए
1: जी
0: वो बैठ जरूरी होता है, ताकि बिजली का प्रभाव कम से कम किया जा सके। अगर आपके पास में कोई ऐसा स्थल है निकटतम जगह पर जहाँ पे कवर्ड एरिया है, तो आपको उसमें जाना चाहिए और वहां पर अंदर ही रहना चाहिए जब तक ये क्लाउड बर्स्ट और लाइटनिंग के इवेंट्स रुक नहीं जाते, उसके 30 मिनट के बाद ही आप कहीं बाहर निकलना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान देना। परंतु अगर सपोज करो आप बहुत बड़े जंगल में जा रहे हैं ट्रैकिंग की, जैसे मैंने बात की, हो सकता है आप इसी वन क्षेत्र में है, तो वन क्षेत्र में है तो वहां के लिए ये चीज काम नहीं आएगी, तो वहां पे घना जहाँ पे पौधों का समूह हो तो उसके नीचे जाना चाहिए, ताकि वो करंट जो है ना वो बॉडी ले ले नेचुरल, पर आपकी बॉडी के थ्रू नहीं जाए।
1: जी
0: तो क्लाउड का जो करंट का प्रवाह ग्राउंड में जाता है जब, तब आदमी उसका शिकार हो जाता है। जानवर हैं, जैसे जानवरों को भी हमें अंदर उसमें ले जाना चाहिए, किसी बंद क्लोज्ड एरिया में, ओपन एरिया में, तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि बुनियादी ढांचे के स्तर पर, साथ ही जो अर्बन हमारा प्लानिंग है उसके स्तर पर, यदि हम दिल्ली शहर को ही उदाहरण ले लें, एनसीआर एरिया को ले लें, तो बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश बहुत अधिक संकट का कारण बन जाती है यातायात के लिए, पानी जमा हो जाता है। यानी हम इस आपदा से मानसून के सीजन में अपने ड्रेनेज सिस्टम को या स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें?
0: दिल्ली की आपने बात की, अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में
1: जी
0: दिल्ली में बाढ़ का स्वरूप देखा गया और काफी मेहनत कश करके लोगों को बचाया गया। चेन्नई की बाढ़ 2015 दिसंबर की आपको याद हो, बेंगलोर में हुई, हैदराबाद में हुई, जहाँ शहरीकरण हो रहा है वहां जो आपने कहा कि जो हमारा जल निकासी का प्रबंधन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी ड्रेनेजेज हैं पहले तो वो उस कैपेसिटी के नॉर्मली नहीं होते जितनी वहां पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है, परंतु तो जो कैपेसिटी भी है, क्षमता है नालों की, वो भी पूरा काम नहीं करती है अगर उसमें से मिट्टी, गर्दा, पॉलिथीन ये सब नहीं निकाले जाते और क्लीनिंग लेस मानसून से पहले अच्छे तरह से नहीं की जाती है। तो कई कारण बन जाते हैं कि जब बारिश का पानी को ना तो ग्राउंड फिल्ट्रेशन का टाइम मिलता है क्योंकि सारा कंक्रीटाइज हो चुका है हमारा शहरीकरण, और दूसरा जो पानी सरफेस से नालों में जा रहा है

0: उसमें क्षमता कम हो जा रही है। तो और तीसरा, हम लोग जो है अंडर पासिस बना रहे हैं, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहां पानी इनंडेशन हो जाता है, लोगों को अंदाजा नहीं लगता कि पानी का लेवल कितना है और लोग उसमें फंस जाते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर लाइंस, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, इनमें करंट लगने का बहुत डर है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, करंट पानी में आ गया, तार गिर गई और कोई व्यक्ति उसकी टच में आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और इनंडेशन हो गया और लीकेजेस करंट की हुई तो खतरा बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ आवाजाही की व्यवस्थाओं में या पानी के इनंडेशन की वजह से सामग्रियों के खराब होने में, परंतु सबसे बड़ा खतरा जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें तो अगर आपने अनप्लग नहीं किया बारिश के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे, तो वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जैसे हमारा मौसम खराब होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम से कम यूज करें और उनको अनप्लग करके रखें। तो ये सब चीजें जो है एक समन्वय बनाने की जरूरत है सभी विभागों में और सभी व्यवस्थाओं में, और जनता की साझेदारी बहुत जरूरी है इसमें।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, आपने बड़ी ही उपयोगी और आम जनता के समझ में आने लायक शब्दों में बताया कि हमें कहाँ नीतिगत स्तर पर काम करना है और कहाँ व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहना है, ताकि मानसून की आपदा में अपना बचाव करने के लिए हम खुद सामने आ सके। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोतागणों का।
2: अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रबंधन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: इस गीत के बाद अब भैरवी काले प्रस्तुत कर रही हैं गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते। रचना है सरोज देशमुख की, इसे संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: भैरवी काले नावरेंडर्स द नेक्स्ट गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते, पेंड बाय पोएटस सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: भैरवी काले की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक दोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाऊ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतोस कारे इज पेंड बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ, एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: कार्यक्रम के इस भाग के अंत में प्रस्तुत है रामदास कुहिटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो। द पोएट इज रामदास कुहिटे and is composed by Ajay Hedau.

इस गीत के साथ ही आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थीं भैरवी काले, संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख।

0: इनकी थी।
1: विद दिस मराठी गीत बाय भैरवी काले वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। द अकंपनिस्ट वेयर अजय हेडाउ ऑन हारमोनियम, निखिल मडावी ऑन तबला एंड वायलिन आर्टिस्ट वॉज निशिकांत देशमुख।
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी नागपुर। द प्रोग्राम कंटिन्यूज, लेट अस लिसन टू द नेक्स्ट सेगमेंट।
2: ये आकाशवाणी है, क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू विल लिसन टू पंजाबी सूफी एंड फोक सॉन्ग्स बाय सुखविंदर सिंह।
2: सुखविंदर सिंह, जिन्हें उनके मंचीय नाम दलेर अली के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के एक प्रतिष्ठित सूफी एवं लोक गायक हैं। संगीत के क्षेत्र में 2 दशकों के अनुभव के साथ उन्होंने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने अनेक कव्वाली कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है। एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं।
3: सुखविंदर सिंह, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम दलेर अली, is a renowned Sufi and folk singer of Punjab. With 2 decades of experience in the field of music, he has made significant contribution to the preservation and promotion of Punjab's rich cultural and musical heritage. Over the past 20 years, he has performed at numerous live Qawwali concerts, cultural festivals, and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grid artist of Akashvani.
2: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे काफी शाह हुसैन, नीमाए मेनू खेड़ियां दी गल ना आख। इस काफी की प्रस्तुति का मुख्य विषय ईश्वरीय प्रेम, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक मिलन है। हीर का खेड़ों को स्वीकार करने से इनकार करना, आत्मा द्वारा सांसारिक मोह माया को ठुकराने और अपने प्रियतम जो ईश्वर का प्रतीक है के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का प्रतीक है।
3: द सेंट्रल थीम ऑफ दिस काफी रिवॉल्व्स अराउंड डिवाइन लव, अनवेवरिंग डिवोशन एंड स्पिरिचुअल यूनियन। हियर्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द खेड़ास सिंबलाइजेस द सोल्स रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट्स and its complete surrender to the beloved Ranjha, who represents the divine.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा बुले शाह। मैं गल उत्थे दी करदा हाँ। ये बुले शाह की एक बेहद रहस्यमय रचना है जो अनिश्चितता, आत्मखोज और ईश्वर के प्रति समर्पण के जरिए साधक की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। कवि एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो भौतिक दुनिया से परे है, एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य जिसे आम भाषा में बयां करना बहुत मुश्किल है। वह ईश्वरीय प्रेम और आंतरिक जागृति के अपने अनुभव को साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी झिझक और डर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सत्य को केवल तर्क या बुद्धि के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
1: दिस वन इज अ डीप मिस्टिकल कॉम्पोजिशन बाय बाबा बुल्ले शाह दैट एक्सप्लोर्स द सीकर्स स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू अनसर्टेनिटी, सेल्फ डिस्कवरी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। While the poet wishes to share his experience of divine love and inner awakening, he admits his hesitation and fear because such truths cannot be fully understood through reason

सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा गुलाम फरीद, सोनिया रमजा तेरियां पौंदियां। बाबा गुलाम फरीद की ये सूफी रचना दिव्य प्रेम की अनोखी सुंदरता और आध्यात्मिक आकर्षण का जश्न मनाती है। असल में कवि प्रिय की मनमोहक खूबियों के बारे में बताता है। मन मोहने वाली आंखें, सुंदर बौहें,

0: लहराते बाल, आकर्षक हाव भाव। हालांकि सूफी परंपरा में ये शारीरिक खूबियां दिव्य सुंदरता के उन रूपों की निशानी हैं जो साधक के दिल को आध्यात्मिक जागृति की ओर खींचती हैं।
1: दिस इज अ मिस्टिकल सूफी कंपोजिशन attributed to Baba Ghulam Farid that celebrates the irresistible beauty and spiritual attraction of the divine beloved. In the Sufi tradition, the physical attributes symbolize the manifestation of the divine that draws the seeker's heart towards spiritual awakening.

0: कार्यक्रम के अंत में सुखविंदर सिंह प्रस्तुत करेंगे एक गीत, रात अद्धी रात तो लंघ गई अगा, पता नहीं यार किथे रह गया। देव हरियाणवी का ये गाना चाहत, इंतजार और जुदाई के दर्द से दिल को छू लेने वाला है। गाना एक ऐसे प्रेमी की भावुक हालत को दिखाता है जो पूरी रात अपने उस प्यारे के आने का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता।
1: This song, lyricized by Dev Haryanvi, is a poignant expression of longing, anticipation, and the pain of separation. The song captures the emotional state of a lover who spends the entire night waiting for the arrival of a beloved who never comes.

0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत। उनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, तबले पर चरण, कीबोर्ड पर पंकज, सारंगी पर सुखविंदर सिंह, बांसुरी पर गुरदीप सिंह तथा मैंडोलिन एवं गिटार पर चरणजीत ढिल्लो। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to the Punjabi Sufi and folk songs sung by Sukhvinder. He was accompanied on dholak by Pradeep Kumar, tabla Charan, sarangi Sukhvinder Singh, keyboard Pankaj, flute Gurdeep Singh and mandolin and guitar by Charanjit Dhillo. This part of the program was a presentation by Akashwani Jalandhar.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर रात्रि के 11 बजने को है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता

0: प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इम्पोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments following ruckus by opposition members over several issues. Amid opposition's uproar, the Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 without any discussion. The legislation provides tax relief measures to support economy and boost foreign investment.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी फरमाइश पर। आज की इस सुहानी बारिश में दोस्तों सुनेंगे आप 90s के सुपरहिट गीत। तो करते हैं पुरानी यादों को ताज़ा और संगीत के साथ बनाएंगे इस रात को और भी खास। तो बारिश की बूंदों के साथ सुरों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। लीजिए पेश करते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

अमित कुमार और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म चालबाज से। कुछ अदाएं ऐसी होती है जिन्हें देखकर बस यही कहने का मन करता है कि वाह, श्रीदेवी जी की यही खूबसूरती, चुलबुलापन और शानदार अभिनय ने हिंदी सिनेमा का कोई कई यादगार किरदार दिए हैं। और जैसे इस गाने में दिया है, उन्होंने एक शरारती और बहुत ही खूबसूरत लड़की का किरदार किया है। और इस गीत की फरमाइश की थी चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने। वो लिखते हैं, बुरे वक्त में कंधे पे रखा गया हाथ, वो बुरे वक्त पे कंधे पे रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। जी बिल्कुल सही कहा सतीश जी आपने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से प्रियाशी, एसपी सिंह, बेबी वेदांशी, मनीष, गीतांजलि, नीलम और वीरेंद्र सिंह ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन इस संदेश के बाद।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, प्यार में इंतज़ार भी कितना हंसी हो जाता है जब उसके एक संदेश का इंतज़ार हो और दिल को यकीन होता है कि वो कहीं ना कहीं हमें याद करता है। और हमें पता है कि आप भी हमें याद करते हैं और हमें हमेशा अपना संदेश भेजते हैं। संदेश का पता नोट कीजिए, ipradio.delhi@gmail.com। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। इस गीत की फरमाइश की थी जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशा ने और निमित आहूजा ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सप्पाल, आशा सप्पाल, सोनिया, साईराज, विशाल ने। और हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने।

कहते हैं ना दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र अकेले नहीं किसी अपने के साथ और भी खूबसूरत लगने लगता है। किसी का साथ, किसी का प्यार और किसी का हाथ थमकर चलने की चाहत हर किसी के दिल में होती है। और आप सुन रहे थे ये गीत अलका याग्निक का, अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म जान से इस गीत की फरमाइश की थी। एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से नारायण नराय खर्चे, ललिता, कार्तिक परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी। महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी, गीतांजलि, आकाश और आकांक्षा ने। पटियाला से, पंजाब से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता ने।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे एक गीत फिल्म यस बॉस से। इस गीत की फरमाइश की थी यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहाना, फरहान फारिया, ताहिर और बुलंदशहर से एम एस अब्बासी, पूरा अब्बासी परिवार ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब ने। साथ ही इस गीत की और फरमाइश की थी हमारे श्रोता हैं मार हरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज नावेद, सुहेल अनम रसीद और किदवई नगर सिद्धपुरा से जुबेर अली खां, सबिहा अंजुमन खान ने।

जी हाँ दोस्तों, प्रेम की राह आसान कहाँ होती है। कभी मुस्कान, कभी इंतज़ार और कभी मीठी सी तकरार भी होती है। लेकिन जिस राह पर किसी अपने का साथ मिल जाए ना, वही प्रेम की डगरिया भी हंसी हो जाती है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म चलते चलते से। इस गीत की फरमाइश की थी कस्बा बलराम से इरशाद अहमद शाह शाह जहाँ बेगम और मैयम जया जनैब ने, और साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा बसंत कुमार, अजय कुमार गुप्ता, नन्हे पोती अनविका और तनुश्री गुप्ता ने।

का याग्निक की आवाज़ में आप सुने थे ये गीत, और अरिजीत सिंह की आवाज़ थी इस गीत में। फिल्म थी तमाशा, इस गीत की फरमाइश की थी बेंगलोर से ज्योति शर्मा, अमित शर्मा और प्रणवीर ने। साथ इस गीत की फरमाइश की है पंजाब से बबन मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती ने।

0: मोनाली ठाकुर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दम लगा के हाइसा से। इस गीत की फरमाइश की थी अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम, मोहम्मद सादिक, और गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद ने।
1: नाचन लाग्यो

0: शान और पलक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। इस गीत की फरमाइश की थी मध्य प्रदेश से अरुण कुमार पांडे ने। दोस्तों इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों का सफर नामा ललित जी के साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है अब समाचार होंगे इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोबरधन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही ये विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि की गई। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू केंजरापू ने अकासा एयर और अलायंस एयर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपने विमानों की संख्या बढ़ाने, संचालन को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार कल मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 5 और 6 अगस्त के बीच रात में 10 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मोहाली का एक फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल है। खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है 12:10 और 10 सेकंड। श्रोताओं, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में जो भी पर्सनैलिटी आती हैं, चाहे वो गीतकार हों, संगीतकार हों, गायक हों या कोई और विधा हो, वाकई बहुत ही शानदार उनके बारे में सभी खूबसूरत जानकारियाँ और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत के साथ ये कार्यक्रम होता है। जी हाँ, कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा खूबसूरत अंदाज, लाजवाब बेहतरीन रचना, एक से एक खूबसूरत जो लेखन शैली है, वाकई बहुत ही शानदार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का। आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। आकाशवाणी कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा, गीतकार SH बिहारी। गीत लेखन की बात करें तो बस सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ, और उसके बाद जानकारियों का जो सिलसिला होगा क्रमबद्ध, तो वाकई बहुत ही सुंदर जानकारियों के साथ बेहतरीन खूबसूरत रचना होने वाली है। और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं एक बेहतरीन शानदार गीत के साथ, तो हो जाइए तैयार मेरे साथ। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे इस सावन की घटा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहतरीन आवाज़ में सुंदर रचना। गीत SH बिहारी के और संगीत से सजाया है इस शानदार गीत को शायराना अंदाज़ में OP नैयर साहब ने। साथियों, कुछ जानकारी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। और कुछ लोग अपनी पहचान चेहरे से बनाते हैं तो कुछ अपनी आवाज़ से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पहचान उनके लिखे हुए अल्फाज बन जाते हैं। वक्त बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन शब्द अमर हो जाते हैं। आज की यह महफिल ऐसे ही एक विलक्षण गीतकार के नाम है जिनकी शायरी में मोहब्बत की खुशबू थी, जिनके गीतों में दिल की धड़कनों का संगीत था, जिनके शब्द आज भी सुनने वाले के मन में उतर जाते हैं। आज हम याद करेंगे उस ऐसे खूबसूरत अंदाज के शायर, जी हाँ, शायरे नगमा को, जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को अनेक सदाबहार गीत दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SH बिहारी की, यानी कि शमशूल हुडा बिहारी की। एक बड़ी प्यारी सी मुझे शायरी याद आ रही है, और शुरुआती शायरी यदि हम कहें तो अल्फाज अगर दिल से निकले तो दुआ बन जाते हैं। अल्फाज अगर दिल से निकले तो दुआ बन जाते हैं, सुरों से मिल जाएं तो सदा बन जाते हैं। कुछ लोग उम्र भर नहीं सदियों तक जीते हैं, जब उनके लिखे गीत लोगों की जुबां पर बन जाते हैं। या दोस्तों, आइए मेरे पास, मेरे साथ आरंभ करते हैं उस गीतकार की कहानी जिसने अपने शब्दों से प्रेम, विरह, इंतजार, मुस्कान और जीवन के हर रंग को संगीत का रूप दिया। फिलहाल एक और गीत हमारे कानों में पहले से गूंज रहा है,

मुझे लगता है कि ये गीत जो मैं अभी प्ले करने वाला हूँ आप सभी साथियों को जो सुन रहे हैं, एक और बेहतरीन खूबसूरत गीत है जो मुझे भी बेहद पसंद है और शायद हमारे सभी साथियों को यह खूबसूरत गीत ज़रूर अच्छा लगेगा। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शायराना अंदाज, लाजवाब खूबसूरत गीत अभी आप सुनेंगे और बहुत ही शानदार रचना के साथ बहुत ही आनंदित कर देने वाला शायराना अंदाज में बेहतरीन रचना। फिल्म कश्मीर की कली से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत 1964 प्रदर्शित फिल्म रही है कश्मीर की कली। और आज फिर SH बिहारी, जी हाँ गीत SH बिहारी के हैं और संगीत OP नैयर का है। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन खूबसूरत रचना।

बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, कश्मीर की कली से शानदार बेहतरीन रचना। साथियों, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे SH बिहारी जी का, जी हाँ दोस्तों, वाकई उनके जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो SH बिहारी का पूरा नाम हम बता देते हैं, शमशूल हुडा बिहारी। उनका जन्म 12 जुलाई 1920 को बिहार के आरा में हुआ। बचपन से ही साहित्य, कविता और उर्दू के अदब का वातावरण उन्हें आकर्षित करता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में हुई और आगे चलकर उन्होंने साहित्य के अध्ययन के साथ साथ शायरी लिखनी शुरू कर दी। उनका परिवार शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ था, घर में भाषा और साहित्य का सम्मान था, जिसने उनके व्यक्तित्व को गहराई दी। बचपन में ही उन्हें गालिब, फिराक, जिगर और अन्य महान शायरों को पढ़ने का अवसर मिला। जी हाँ, अगले पड़ाव पर कुछ और जानकारियाँ होंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं। बहुत ही प्यारा गीत है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। प्यार झुकता नहीं फिल्म से शानदार रचना, कविता कृष्णमूर्ति। और जी हाँ, फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है तो हम वही बता रहे हैं, और गीत SH बिहारी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन रचना।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर मार्मिक और बेहद खूबसूरत गीत, वाकई बहुत ही लाजवाब। साथियों, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में बेहतरीन रचना तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। जी हाँ, फिल्म प्यार झुकता नहीं से। श्रोताओं, ये फिल्म वाकई बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट सुपर डुपर फिल्म रही है, सन 1985 की। हालांकि ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार साहब ने भी गाया है, और ये इंडिविजुअल जो गाना है मार्मिक एक बेटे के साथ, तो वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना थी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार एज यूजुअल SH बिहारी। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत रचना थी ये। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत जानकारी के साथ। साथियों, ये तो संघर्ष, इस दुनिया में अगर सफल होना है तो संघर्ष करना अति आवश्यक हो जाता है, और किसी को बिना संघर्ष के ही बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन ऐसे कुछ दिग्गज गीतकार होते हैं जो वाकई बहुत ही संघर्ष के बाद ही उन्हें प्राप्त या खुशियां प्राप्त होती हैं। मुंबई की फिल्मी दुनिया में कदम रखना आसान नहीं था। संघर्ष के दिनों में भी कई निर्माताओं और गीतकारों ने उनके गीतों को स्वीकार

कई बार उन्हें निराशा मिली, लेकिन उन्होंने लेखनी नहीं छोड़ी। उनका विश्वास था, जो शब्द दिल से निकलते हैं वे एक न एक दिन जरूर अपना मुकाम बना लेते हैं। धीरे धीरे उनकी मुलाकात संगीतकारों से हुई और फिल्मी दुनिया ने उनकी प्रतिभा को पहचानना शुरू किया। फिल्मी सफर की शुरुआत 50 के दशक में उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखने आरंभ किए। उनकी भाषा सरल थी लेकिन भावनाएं बेहद गहरी थी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बाद में संगीतकार ओपी नैयर के साथ उनकी जोड़ी ने कई यादगार गीत दिए। फिलहाल एक और गीत सुनवा रहे हैं और ये गीत भी बेहद खूबसूरत है, और सुनवाते हैं ये सुंदर और बेहद लाजवाब अनमोल रचना। और शायद ये गीत भी, हमें नहीं पता कि हमारे साथियों ने ये गीत सुना है या नहीं सुना है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानते हैं ये गीत भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर, बहुत ही खूबसूरत अनमोल रचना। बड़ा ही प्यारा गीत है, लव 86 फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में सुंदर रचना। गीत SH बिहारी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना। महबूब से हमारे इतना प्याम कहना,

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, ये कार्यक्रम दो ये फ्रिक्वेंसी होती है, AIR लाइव न्यूज 24x7 और इंद्रप्रस्थ चैनल पे। आप दोनों ही चैनल पे अपने प्रोग्राम सुन सकते हैं और थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करें कि इस चैनल को और ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत और जो ख्याति प्राप्त हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैक्सिमम जितने प्रोग्राम्स होते हैं इंद्रप्रस्थ और AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल में ही होते हैं। अन्य जो प्रोग्राम होते हैं वो अलग जो स्टूडियोज़ होते हैं वो वहाँ से प्रसारित किए जाते हैं, लेकिन हाँ, AIR लाइव न्यूज़ 24x7 और इंद्रप्रस्थ चैनल में वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, अनमोल रचनाएं सुनने को मिलती हैं। हर प्रकार के गीत, हर प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं। कोशिश कीजिएगा, बहुत प्यार करें इस कार्यक्रम को और जितने भी कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ और AIR लाइव न्यूज़ 24x7 में जो प्ले होते हैं, खूब सराहें, प्यार करें, ताकि हमें और भी ज़्यादा मॉरल बूस्ट मिले और सभी साथी गीत संगीत का आनंद भी ले सकें, है ना? जैसे कि हम बात कर रहे थे SH बिहारी की,

उनकी भावनाएं बेहद गहरी थी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बाद में संगीतकार ओपी नैयर के साथ उनकी जोड़ी ने कई यादगार गीत दिए। इसके अलावा उन्होंने हेमंत कुमार और रवि और उषा खन्ना, बप्पी लहरी सहित अनेक संगीतकारों के साथ भी काम किया। उनके गीतों को आवाज दी भारत के महान गायकों ने। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और मुकेश ने। गीत से पहले एक बहुत ही सुंदर बात है जो हमारे साथी ने हमारे पास एक स्पेशल गीत भेजा है। बड़े ही गीत प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं वाकई। उनकी लेखनी भी बेहद खूबसूरत है हमेशा की तरह। जब अपनी रचनाएं लिखकर भेजते हैं हमारे पास तो सच में ऐसा लगता है कि बस उन शब्दों को आराम से प्यार से पढ़ा जाए ताकि सभी साथियों को भी समझ आए, है ना? अच्छा लगता है ना? जी हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, किसी गीतकार की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं होती कि उसने कितने गीत लिखे हैं, बल्कि यह होती है कि उनके लिखे हुए गीत कितने दिलों में बस गए। SH बिहारी के गीत सुनते हुए लगता है जैसे कोई शायर अपने जज्बात सीधे दिल तक पहुंचा रहा हो, है ना? तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत रचना आ रही है। स्वागत कीजिएगा इस बेहतरीन गीत का भी। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का। बेहतरीन फिल्म कश्मीर की कली। जी हाँ, कश्मीर की कली से शानदार बेहतरीन गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। कश्मीर की कली फिल्म 1964 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत SH बिहारी के और संगीत OP नैयर का। तो आइए सुनवाते हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, लाजवाब, जी हाँ, गीत। हमारे साथी हैं मोहम्मद आलम हाशमी और अर्चना जोशी। सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा शानदार गीत, आइए सुनते हैं।

वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन रचना। यही तो एस एच बिहारी की लेखनी का कमाल था। शब्द इतने सहज कि हर कोई गुनगुना ले, और भाव इतने गहरे कि बरसों के बाद भी वही एहसास ताजा रहे। उनके गीतों में प्रेम था, शरारत थी, इंतजार था, दर्द था, और जीवन की सच्चाइयों का सुंदर चित्रण भी था। या दोस्तों, समय बहुत कम होता है, 50 मिनट का। उसमें सारी की सारी जानकारियां, उसके साथ साथ गीत भी जब हम प्ले करते हैं, ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चला केवल आधा घंटा ही हुआ है या फिर 15 मिनट हुए हैं। कार्यक्रम करते करते सच में हम भी बहुत ही खो से जाते हैं, है ना? लेकिन हाँ, उनके गीतों में प्रेम था, शरारत थी, इंतजार था, दर्द था, और जीवन की सच्चाइयों का सुंदर चित्रण भी था। सुरों का यह सफर अभी जारी है। जी हाँ दोस्तों, अगले पड़ाव में हम जानेंगे एस एच बिहारी के बेहतरीन, खूबसूरत, जो वर्षवार जो गीत होते हैं, उनकी फिल्मों के सफर का, एक सदाबहार गीतों की, संगीतकारों के साथ उनकी यादगार साझेदारी, और कुछ ऐसे रोचक किस्सों के बारे में भी जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बने रहिए आज के सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम में। जी हाँ, सुरों का सफर। साथियों, हालांकि केवल समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम सारी जानकारियों के साथ कुछ गीत भी सुनवाएं, लेकिन हाँ, एक गीत तो हम जरूर जरूर सुनवाएंगे। और बस क्या कहें, बस अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं, और बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति, छोड़े जा रहा हूं एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन रचना के साथ। जी हाँ।

मित्रों का सफरनामा हमेशा हमेशा जवा रहे और खूबसूरत बना रहे, है ना। तो सच में तो सुरों का सफरनामा का सफर अब यहीं समाप्त होता है। गीतकार SH बिहारी, गीत लेखन बहुत ही शानदार अनमोल रहा। 50 के दशक की बात करें हम, बस शीघ्र अति शीघ्र हम बताएंगे कि दशक के बारे से लेकर 50-60 के दशक से लेकर 70 के दशक तक उनकी लेखनी लगातार परवान चढ़ती रही। संगीतकार OP नैयर, हेमंत कुमार, रवि, उषा खन्ना, बप्पी लहरी और कई अन्य संगीतकारों के साथ उन्होंने यादगार गीत की सौगात वर्षवार संगीत यात्रा की। 1954 से लेकर 1956 तक फिल्मी दुनिया में संघर्ष का दौर, शुरुआती फिल्मों के लिए गीत लिखे और अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। 1957 फिल्म प्यासा के लिए लिखा अमर गीत सरजो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए लोकप्रियता का पहला बड़ा पड़ाव था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में यह गीत आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। 1958 की फिल्म 12 o'clock का गीत भी आ जा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचना। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए छोड़े जा रहा हूँ खूबसूरत लाजवाब आज के कार्यक्रम शुरू के सफरनामा की अंतिम बेहतरीन रचना। एक बार फिर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। मिल लेंगे फिर एक और खूबसूरत कार्यक्रम में, जहाँ होंगी बहुत ही प्यारी सुंदर खूबसूरत बातें और शानदार गीत रचनाएं भी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम की अंतिम खूबसूरत रचना सुनवाते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत से समापन हुआ है, बहुत ही शानदार। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अपने संदेशों के माध्यम से बताएं। साथियों, एक बजने को है और अब पहले हिंदी और फिर उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही ये विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए हर संभव सहायता की है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने अकासा एयर और अलायंस एयर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपने विमानों की संख्या बढ़ाने, संचालन को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों की पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह कानून कल से लागू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने 5 और 6 अगस्त के बीच रात में 10 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मोहाली का एक फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल है। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव रुतेंद्र टंडन और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव ल्यूक गोह ने की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। The Union Cabinet yesterday approved Gobardhan, the national circular bioenergy scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, "The decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation." Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. Government has said that 16 Indian nationals, including 10 seafarers, have lost their lives in West Asia and 75 Indians have been injured since the outbreak of conflict in the region. In a written reply in Rajya Sabha, Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, said government extended all possible assistance to the families of the deceased Indian nationals for early repatriation of the mortal remains to India, in coordination with the host governments. The injured Indian national received medical treatment in local hospitals. In all cases involving war, zero incidents under the DGMA Welfare Scheme or Seafarers Welfare Fund Society, an ex gratia compensation of 10 lakh rupees is provided. The amount is disbursed by the government expeditiously to the next of kin of the affected seafarers following due diligence and verification. The centre has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force today, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu Kinjapuru yesterday reviewed the progress of Akasa Air and Alliance Air with their senior leadership teams. In a social media post, the minister said, "India's civil aviation sector continues to expand under Prime Minister Narendra Modi's Udaan vision, with one new airport being added every 45 days and rising passenger demand making the country one of the world's most promising aviation markets." Mr. Naidu said the periodic review meetings aim to encourage airlines to expand fleet capacity, optimize operations, and further enhance safety standards. He also emphasized the need to strengthen grievance redressal mechanisms with a passenger-centric approach to improve the overall passenger experience. Expressing serious concern regarding the suffering of patients across Maharashtra, the Bombay High Court has redirected resident doctors to immediately call off their strike. The court had taken sua motu cognizance of the strike called by resident doctors to protest against the registration of homeopaths under the Maharashtra Medical Council and prescribe allopathic medicines, emphasizing that the court does not want a single person to lose his or her life amid the strike. The court yesterday warned the residents that their wages may be stopped if they fail to report back to work immediately. Pursuant to the court's remarks, the Indian Medical Association and Maharashtra Association of Resident Doctors have agreed the strike would be called off. While being informed that the petition challenging the registration of eligible homeopaths with the Maharashtra Medical Council is still pending, the High Court said the concerned bench shall hear the matter and decide it expeditiously. Bowling in Arunachal Pradesh Siang District is set to host the Asian Rafting Championships 2026 in October. Chief Minister Pema Khandu and Panchayati Raj and Rural Development Minister Ujing Ta Singh, the MLA of Bowling, held separate high meeting with key sports administrators to review preparations for the upcoming tournaments to be held between October 5 and 9. The five-day international event will see Asia's top paddlers compete on the Simang River, a tributary of the Siang River, flowing through the Siang Valley in Bowling. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। साथियों, ये समय बहुत ही खूबसूरत है और वाकई बहुत ही शानदार है। इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, अनमोल, खूबसूरत रचनाएं सुनने को मिलती हैं आप सभी साथियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा, जस्ट लाइक गोल्ड। जी हाँ, गोल्डन एरा इसीलिए कहा जाता है कि एक से एक बेहतरीन, खूबसूरत, जो चाहे वो गीतकार हों, संगीतकार हों, कलाकार हों, अदाकार हों, सभी की बहुत मेहनत होती है। और उस ज़माने के जो गोल्डन एरा इसलिए कहा जाता है कि एक से एक सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, उत्कृष्ट, बेमिसाल रचनाएं सुनने को मिलती हैं। और ख़ास तौर से जितने भी गीत संगीत प्रेमी हैं, मैक्सिमम वो साथी ओल्ड इज गोल्ड गीत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? क्योंकि होता ही वो वैसा ही है, जस्ट लाइक सच्चा खरा सोना। जी हाँ, हम तुलना कर रहे हैं उन गीतों के साथ सोने की। वाकई बहुत ही सुंदर, खूबसूरत कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम गीत सुनहरे, गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। जी हाँ दोस्तों, और वाकई बड़ा ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गीत से शुरुआत कर रहे हैं। और ये गीत अपने आप में बहुत ही प्यारा है, ठंडी हवा के झोंके, बड़ा ही खूबसूरत, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि बारिश लगातार रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम भी बड़ा ही खुशनुमा हो चुका है। तो सोचा क्यों नहीं हम ठंडी ठंडी हवाओं के साथ कुछ ठंडी ठंडी बौछारें भी हम सब पर बिखर जाए तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है वो समा। सुनते हैं आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर रचना।

वाकई दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, ठंडी हवा के झोंके। वाह, बहुत ही शानदार रचना। फिल्म भाई बहन से ये प्यारी सी रचना थी और शमशाद बेगम की आवाज़ में बेहतरीन रचना। भाई बहन फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है और से सजाया है खूबसूरत संगीत से श्याम सुंदर ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत वाकई बड़ा ही प्यारा है, बेहद खूबसूरत है। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना। ये रचना भी अपने आप में बहुत ही प्यारी सी है। साथियों, अभी हम 50 के दशक के हम गीत को चला रहे हैं और कुछ 52 के हैं, 55 के हैं, और फिर धीरे धीरे ये क्रम या फिर वर्षवार बदलता चला जाएगा। जी हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि हम हालांकि हमारे तीनों के तीनों जो प्रोग्राम्स होते हैं 50-50 मिनट के होते हैं। 50 मिनट में जितनी हमारी कोशिश होती है हम उतना कोशिश करते हैं जितना हम कर सकते हैं। अलग अलग दशकों के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, चाहे वो 1931 से लेकर 1965 तक या 60 तक बेसिकली माना जाता है गोल्डन एयर।

उसके बाद तो फिर जो गाने होते हैं बिल्कुल अलग काइंड ऑफ सॉन्ग्स होते हैं, तो कोशिश हमारी रहती है कि लगभग 65 तक के हम गाने चलाएं, ताकि सभी साथियों को सभी प्रकार के सभी दशकों के गीत सुनने को मिलें। हमारा प्रयास यही रहता है। तो एक और खूबसूरत गीत आ रहा है, चंदा की छांव, ये टाइटल है गीत का। फिल्म परछाइयां से शानदार रचना है। फिल्म परछाइयां 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है, लता मंगेशकर की आवाज में शानदार रचना, संगीत से सजाया है सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, ठंडी ठंडी वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा बेहद खूबसूरत दो गीत अभी सुने हैं आपने, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए शानदार बेहतरीन रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, ये गीत भी आ रहा है हाँ हमारे जो सिंगर हैं गायक हैं वो बस यही कह रहे हैं, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। वाकई बहुत ही सुंदर फिल्म दाग से शानदार रचना, तलत महमूद की आवाज़ में बेहतरीन रचना। दाग फिल्म सन 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की तीसरी रचना।

जी हाँ, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे गोल्डन एरा। साथियों, एक बड़ा ही प्यारा गीत आ रहा है फिल्म बाजी से। जी हाँ, फिल्म बाजी। तुम भी ना भूलो बलम, एक अनोखा अनसुना खूबसूरत गीत है। गीता दत्त की आवाज़ में बेहतरीन रचना। फिल्म बाजी 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत साहिर के हैं और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

बेहद खूबसूरत गीत, अनसुना लाजवाब गीत। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। एक बड़ा ही प्यारा गीत आ रहा है फिल्म दीवाना से, मुकेश की आवाज़ में शानदार रचना है और संगीत शंकर जयकिशन के हैं। दीवाना फिल्म 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत कादर प्रोडक्शन के बैनर तले ये खूबसूरत रचना है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

बहुत खूब, बहुत ही प्यारा, लाजवाब गीत, बेहद खूबसूरत। साथियों, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। रात रंगीली और चमके तारे। जी हाँ, बाप रे बाप। जी हाँ, ये फिल्म का नाम है बाप रे बाप, और आशा भोसले की आवाज़ में शानदार रचना है। फिल्म बाप रे बाप 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को ओपी नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की, बहुत ही प्यारी खूबसूरत रचना।

क्या बात है, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, अनमोल, खूबसूरत रचना। जी हाँ, रचना, हम रचना की बात कर रहे हैं, अर्चना की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अर्चना जी सुन रही हैं प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रही हैं। और हमारे साथ ही बाकी बहुत ही गीत प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं, और अभी तक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, ये बड़ी बात होती है ना। और हमें नहीं पता कि आज का जो कार्यक्रम है कौन कौन साथी सुन रहे हैं। यदि कोई भी साथी सुन रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि हाँ, हम कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो अच्छा लगता है हमें भी और शायद आपको भी। साथियों, जो अगला प्रोग्राम होने वाला होगा वो होगा गीत बहार, जो नॉन स्टॉप होता है वो कार्यक्रम, जिसमें किसी प्रकार का भी बाध्यता नहीं है, किसी प्रकार की भी, और लगातार गीत प्ले होते हैं। उसमें ज़्यादा ज़्यादा नहीं बोले जाते हैं, जो हम डिटेल्स बताते हैं इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई जाती हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि नॉन स्टॉप होता है तो बीच बीच में यदि हम उसे रोकेंगे तो फिर नॉन स्टॉप का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। तो 2 बजे तक जो प्रोग्राम होते हैं, 12 से 2 बजे तक, उसमें हम पूरी डिटेल्स बताते हैं जो हमारे पास उपलब्ध होती हैं। तो बस एक और गीत आ रहा है, एक सुंदर बेहतरीन गीत है, बहुत ही खूबसूरत है गीत। सुनहरे के जितने भी गीत हैं एक से एक लाजवाब हैं, तभी उसे गोल्डन कहा जाता है। और ऐसा नहीं है केवल गीत सुनहरे ही अच्छे होते, नहीं, गीत संगीत सभी अच्छे होते हैं, चाहे वो किसी भी विधा का हो, है ना। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत गीत, आ रहा है आपके पास, तो हो जाइए तैयार एक सुंदर बेहतरीन रचना के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे, जिसमें आज आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर पुराने यानी कि बहुत ही खूबसूरत उत्कृष्ट बेमिसाल रचनाएं। साथियों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत बड़ा ही प्यारा, सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत है फिल्म सीमा से, जो 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है। फिल्म सीमा लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में शानदार रचना है और बहुत ही खूबसूरत, जैसे छोटी बच्ची को जैसे कि बहला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। सुनो छोटी सी गुड़िया की नन्ही कहानी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत। इस गीत को सजाया है अपने संगीत से शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं बेहतरीन रचना।

0: बात सुनी रात सुहानी सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी।
1: बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। वाकई बहुत ही कमाल और बहुत ही मार्मिक सा और थोड़ा सा खुशी देता हुआ शानदार प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है जिस देश में गंगा बहती है। बड़ा ही खूबसूरत लाजवाब गीत है, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सुंदर सा नगमा। जी हाँ दोस्तों, साथियों ये गीत आज के कार्यक्रम की, जैसा कि हम समझ रहे हैं, तो अंतिम या सेकंड लास्ट प्रस्तुति होगी और उसके बाद 2 बजे हिंदी और फिर उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक और खूबसूरत रचना। साथियों जिस देश में गंगा बहती है, टाइटल सॉन्ग है, मुकेश की आवाज़ में शानदार रचना है। ये फिल्म है 1960 की। गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गीत जिस देश में गंगा बहती है।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, 2 बजने को हैं और एक छोटा सा गाना हम ज़रूर सुनवाएंगे। उसके बाद हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत हम पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन हाँ, समय बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और 2 बजने को हैं। बस अब कुछ कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ, रूट, थ्रेड, ऑल डायड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आपने जो है भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल वैश्विक पहचान मिल सके।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी संचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार कल मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा

0: the MLA of Bowling held separate high-level meetings with key sports administrators to review preparations for the upcoming tournament to be held between October 5 and 9. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 2:10 और 10 सेकंड। साथियों, ये कार्यक्रम होता है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, फ्री फॉर्मेट, बेहद खूबसूरत रचनाएं। जी हाँ, चाहे वो 65 की हों, 70 की हों, 80 की हों, सभी प्रकार के गीत प्ले होते हैं, वो भी नॉन स्टॉप। ख़ास बात यह है कि उसमें हमें बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नॉन स्टॉप का मतलब ही यही होता है कि बस एक बार आपने शेड्यूल किया, बस उसी तरीके से ही एक एक रचनाओं के साथ ऑटोमेटिकली वो गीत होते हैं। लेकिन हाँ, जो हमें जो लिखना होता है वो हम ज़रूर लिखते हैं। लेकिन फ़िलहाल सुनवा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। उससे पहले आज मैं हूँ आपके साथ, आपका होस्ट, आपका दोस्त ललित कुमार। या दोस्तों, कार्यक्रम गीत बहार के अंतर्गत एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत रचना के साथ आ रहे हैं हम। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत, फिल्म धरती से, जो 1970 प्रदर्शित फिल्म रही है। और ये अलबेली प्यार की राहें बहुत ही खूबसूरत रचना है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में प्यारी सी रचना। गीत राजेंद्र किशन के हैं और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत बहार की पहली सुंदर खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, पवित्र, एक तरीके से कहा जाए तो पवित्र गीत है। और भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही अनमोल होता है। बहनों को कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही भैया को चाहिए, लेकिन हाँ जो प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, बहनों को कुछ भी तो नहीं चाहिए, ना कभी मांगती हैं ना वो कहते हैं, है ना। वाकई इतना सुंदर रिश्ता जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, पवित्र रिश्ता होता है। और ख़ास तौर से राखी का त्यौहार जब होता है, चाहे वो भाई दूज का त्यौहार हो, चाहे वो राखी का त्यौहार हो, बहनें आती हैं, इतना अच्छा लगता है ना जब बहनें आती हैं घर पर राखी के त्यौहार पर, तो सच में ऐसा लगता है कि बस हमारी बहन हमारे पास ही रहे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, बहनें निस्वार्थ होती हैं, प्रेम की भूखी होती हैं बस, और हमेशा अपने भाइयों के लिए तत्पर तैयार रहती हैं, चाहे वो कितनी परेशानी हो, लेकिन हमेशा प्यार करती हैं, प्यार करती रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो बस इसलिए हमने सोचा कि क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में ही

त्यौहार आता है, हमने सोचा कि चलिए एक गीत सुनवा ही देते हैं, है ना। तो वाकई दोस्तों मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भाई बहन का प्रेम का रिश्ता जो होता है पवित्र और अनमोल रिश्ता होता है, क्या बोलते हैं, सही है ना। तो चलिए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है। तो आइए सुनते हैं एक और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास।

0: दोस्तों ये गीत वाकई बहुत ही अच्छा है, ये वादा भूल न जाए। जलते बदन से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना है और ये रचना सन 1973 की है। इस गीत को सजाया है अपने संगीत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रचना।
1: छुट्टियों में मेरा इंतजार करोगी ना?
2: देरम देरम सर, मगर जल्दी आना। हाँ, सुना शहर की लड़कियाँ बड़ी गोरी गोरी खूबसूरत होती है। हाँ,
1: तुमको कौन बोलो? मुझे तुम जैसी काली कलूटी पसंद है।
2: छोटे कुंवर, यहाँ तुम्हारे बिना सब सुना सुना लगेगा।
1: मेरा भी दिल नहीं लगेगा कमला।
2: चलिए भैया राम राम कह रहे हैं। चलिए भैया जल्दी सुनाना करो ना। चलो
1: हमने तुम्हारे बाद तुम्हारे गले में डाल दी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत गीतों की सुरमाला, वाकई बहुत ही शानदार रचनाएं अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। बड़ा ही प्यारा और बहुत ही शानदार गीत आ रहा है, सन 1975 का। जी हाँ दोस्तों, सन 1975 का गीत सुनवा रहे हैं अब।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बड़ा ही प्यारा गीत था। और साथियों, समय इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, और इस वक्त जो समय है 2 मिनट बाकी हैं 3 बजने में, और अगर हम कोई गीत सुनवा भी पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीच में थोड़ा आधा अधूरा सा गीत, वो ठीक भी नहीं लगता है ना। ये गीत वाकई अपने आप में बहुत ही अनमोल रहा है। ये मौसम आया है कितने सालों में, बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत फिल्म आक्रमण से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में सुंदर रचना थी। आक्रमण फिल्म सन 1975 रिलीज फिल्म रही है, और गीत फिल्म कुंज बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड बैनर के तले ये खूबसूरत गीत लिखे हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। तो साथियों, ये था आज के कार्यक्रम गीत बहार, जी हाँ, जिसमें आज आप सुन रहे थे अलग अलग दशक के बेहतरीन खूबसूरत गीत। साथियों, गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको यह है प्रोग्राम यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, और बस मुझे दीजिए अनुमति आज के सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम गीत बहार से। साथियों, 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में पहले हिंदी और फिर उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल को वैश्विक पहचान मिल सके।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वेरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि हुई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को पहचान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गराका भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi has urged

0: अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गज़लें, और इस गज़ल में साथ दिया आशा भोसले ने। और लीजिए अब प्रस्तुत है उस्ताद अहमद की आवाज़ में ये गज़ल, ये ना थी हमारी।
1: आप पेश खिदमत है कलामे मिर्ज़ा गालिब।

0: इस गजल के साथ ही आज गजलों का ये कार्यक्रम यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगी सुधा रघुरमन। आपने प्रस्तुत किया है रागम कंबोजी। संगीत दिया है मधुस्वामी दीक्षितर ने। वर्णन पर संगत किया है KVS विनय ने और मृदंगम पर साथ दिया है एंथूर जैन पी दास ने। तो लीजिए प्रस्तुत है सुधा रघुरमन का गाया राग कंबोजी।

कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे। गायन कलाकार थी सुधा रघुरमन, आपने प्रस्तुत किया रागम कंबोजी। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। साथियों अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। पाँच बजकर 20 मिनट का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 12:30 बजे 5:30 बजे सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक का द्रुपद गायन। छः बजकर 10 मिनट का समय रहेगा भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। आज आप सुनेंगे गीता में योग का बहुआयामी अर्थ, इस विषय पर चिंतन। 6:45 का समय रहेगा रामचरित मानस से पाठ का। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 10। 7:10 आज आप सुनेंगे स्नेहा चंद के गाए भजन। गीतों भरी गुड मॉर्निंग ये सुन सकेंगे आप 7:30। 8:45 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राकेश पाठक का गाया राग शुद्ध सारंग।

9:15 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। आज आप सुनेंगे वार्ता महात्मा गांधी से जुड़ी विभिन्न पत्र पत्रिकाएं और संस्थाएं। मिट्टी दी महक कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30। पंजाबी कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी हरजीत कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 का समय रहेगा। लाइव कार्यक्रम का

0: बजकर 10 मिनट पर सुनिएगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। साथियों, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वो 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को निर्धन बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप

0: मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने, इससे संबंधित एक वीडियो बनाने और इस वीडियो को देश विदेश में साझा करने का आग्रह किया, ताकि भारतीय शिल्पकारों के कौशल और शिल्प को वैश्विक पहचान मिल सके। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के आदिवासी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और अक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी आज तेज वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारे कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं।

0: 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं, इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें। दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें, अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें, अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5:30 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं प्रभाकर नारायण पाठक का ध्रुपद गायन। आपने प्रस्तुत किया है राग भैरव।